मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, सवेरे के 5:56 होने को है। हमारी आज की प्रथम सभा मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ क्षणों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करें।

0: वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 6:05 हुए। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

प्रेम भक्ति ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में ही परम सुख है। पल पल सुमरो नंद कुमार।

प्रभु की कृपा के बिना कोई चिंता मिट नहीं सकती। जो इस संसार में पैदा हुआ उसका पालन पोषण भी वही करता है।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कलाकार थे लता मंगेशकर, किशोरी अमोनकर, साजन बाबू, मन्ना डे और नितिन मुकेश। वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम आज का चिंतन। आज इस कार्यक्रम का विषय है अंतःकरण।
1: मनुष्य जाति पर पात्रता के नियम 3 प्रकार से लागू होते हैं। एक उत्साह और स्फूर्ति भरी श्रमशीलता, दूसरी तन्मयता तत्परता भरी अभिरुचि, तीसरी उत्कृष्टता के लिए गहरी लगन और ललक। ये तीनों चीजें जहां कहीं भी सम्मिलित रूप से प्राप्त होंगी, समझना चाहिए कि सफलता दौड़कर जा पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ। पात्र तो पानी से न सही, हवा से भी भर जाएगा। खाली रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ईश्वर की अनुकंपा भी ऐसे ही लोगों पर वर्षा करती है। उच्च पदों पर नियुक्ति उन्हीं की होती है जो निर्धारित स्पर्धाओं में बाजी मारते हैं। वैसे ईश्वर के लिए सभी समान एवं प्रिय हैं, परंतु उनके साथ बेइंसाफी भी तो नहीं की जा सकती जिन्होंने अथक परिश्रम करके अपनी योग्यता का परिचय दिया है। प्रतिभावान व्यक्ति जहां तहां मारे मारे नहीं घूमते, गुणवानों प्रतिभावानों को कभी खाली बैठा नहीं देखा जाता। इस पर भी ये आपत्ति काल है। गरज कारीगरों को उतनी नहीं पड़ी है।

0: से ढूंढे जा रहे हैं। विशेष अनुदान और उपहार भी उन्हीं को अविलंब प्राप्त होने वाले हैं। औसत स्तर के लोगों से लेकर प्रतिभावानों तक को इस अभिनव सृजन में भाव भरा योगदान प्रस्तुत करने के लिए समुचित अनुदान उदारतापूर्वक दिए जाने हैं। सामान्य और औसत दर्जे का मनुष्य भी यदि सामान्य चाल और धीमी गति से प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहे तो इसका परिणाम भी ऐसा हो सकता है जिससे उज्जवल भविष्य का स्वप्न साकार होते देखा समझा जा सके। प्रतिभाशालियों का समुदाय इसके अतिरिक्त है जिनमें शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक साहसिकता और अंतःकरण में उमंग भरी रहती है। वे परिस्थितियों की दृष्टि से सामान्य होने पर भी इतना कुछ कर सकते हैं जिसे अद्भुत कहा जा सके। जटायु जैसे अपने आदर्शवादी उमंगों के आधार पर इतना कुछ कर सके जितना कि हीन मनोवर वाले तरुण और बलिष्ठ भी नहीं कर सके, ऐसी कृतियाँ सदैव स्मरण की जाती हैं। अष्टावक्र जैसे टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े शरीर वाले ने भी इतिहास की रचना की जिनका स्मरण करने मात्र से ही मन उल्लास से भर जाता है। लक्ष्मीबाई जैसी तेजस्वी वीरांगना लड़कियां शत्रुओं के दांत खट्टे करके अपने पौरुष का परिचय दे सकती हैं। भामाशाह की थोड़ी सी पूजी ने राणा प्रताप की हारती बाजी को जिता दिया। संसार ऐसी प्रतिभाओं की कथा गाथा से अटा पड़ा है। प्रायः देखा गया है कि ऐसे विभूतिवान भी मात्र लिप्सा, लालसा, तृष्णा, वासना और संकीर्ण स्वार्थपरता जैसे हीय प्रयोजनों में ही अपनी उन उपलब्धियों को खपा देते हैं जिनका उपयोग यदि लोक कल्याण के लिए हो सका होता तो निर्माण की दिशा में इतना कुछ बन पड़ा होता जितनी कीर्ति गाथा चिरकाल तक गाई जाती और उनका अनुसरण करके कितने ही लोग अनुकरणीय आदर्श उपस्थित कर सके होते। मनुष्य की कृपणता, कायरता, संकीर्णता ही ऐसी अभिशाप है जो उसे समर्थ रहते हुए भी कुछ करने नहीं देती, कठिनाइयों के जैसे तैसे बहाने गढ़ लेती है। इसी को धिक्कारते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इस हृदय की क्षुद्रता कृपणता से कोई अपना पीछा छुड़ा सके तो आदर्शवादी उदारता उसके ऐसे पुष्ट आधार को बना देती है जिसके बलबूते वह महामानवों की पंक्ति में बैठ सके और अपने साथ अन्यों को भी खुशहाल बना सके।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम आज का चिंतन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 6:25 हुए। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज जानकारी का विषय है बदलती जीवन शैली और नींद की समस्या। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विशेष कुमार।
2: सभी का स्वागत है। आज हमारा एक विशेष टॉपिक है बदलते जीवन शैली और नींद की समस्या, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विशेष कुमार जो कि वरिष्ठ फिजिशियन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं जनपद रामपुर में। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत है।
3: धन्यवाद। देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा चौड़ा होकर देखें जी तो पहले ये तय करें कि जीवन क्या है।
2: जी
3: जीवन एक व्यवस्था का नाम है, एक नाम है हमारे अनुशासन का, उसी से हमारा जीवन सही चल सकता है। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें शुरू से ही 3-4 बातों के बहुत जोर दिया गया है
2: जी।
3: आचार, विचार, व्यवहार, आहार, ये क्या है, ये हमारी दिनचर्या के अंग हैं। हम कैसे रहें, कैसे बोलें, क्या करें, क्या न करें और किस तरीके से संतुष्ट रहें
2: जी।
3: वही हमको सही जीवन की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप देखेंगे तो प्रकारांतर से सभी धर्मों में सभी जगह एक ही तरीके की कुछ चीजें बताई गई हैं। इसलिए जीवन को ठीक रखने के लिए हमको उन चीजों को फॉलो करना चाहिए। अब जहां तक नींद की समस्या का सवाल है, मेरा कहना यह है कि नींद क्यों आती है
2: जी?
3: नींद नहीं आना चाहिए, लेकिन नींद तो आती है ना। नींद इसलिए आती है क्योंकि जब हम दिन भर के अपने कार्यों से थक जाते हैं, हमारा शरीर थक जाता है, तो उसे भी विश्राम चाहिए। वो विश्राम सिर्फ लेटने से भी हो सकता है, लेकिन नहीं, हमें नींद चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी तंत्रिकाएं हैं, हमने दिमाग से काम लिया है, उन्हें एक रेस्ट चाहिए। उसके लिए हम सो जाते हैं, दोबारा से फिर सुचारू रूप से कम्युनिकेशन शुरू होते हैं, तंत्रिकाएं काम करते हैं और हम अगले दिन फिर से फ्रेश होके अपने काम में लग जाते हैं
2: जी।
3: अब नींद की समस्या का मुख्य कारण आजकल हम देख रहे हैं, कुछ बीमारियों को छोड़ दें जिनकी वजह से नींद चली जाती है, तो हमारा आहार मतलब खाना, हमारा आचार व्यवहार, उठना

0: बैठना, काम करना, बोलना, चालना और ये सब चीजें जो हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, उनका कारण यही है कि हमारे शरीर में भगवान ने कुछ हार्मोन बनाए हैं, कुछ सिस्टम बनाया है। एक मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ, अपने मरीजों को भी देता हूँ, कि चिड़िया शाम को सो क्यों जाती है? उन्हें तो कोई नहीं कहता कि बेटा सो जाओ। वो सुबह 4 बजे उठ क्यों जाती है? उन्हें कोई जगाता नहीं है कि बेटा उठो अब स्कूल जाना है, मगर उठ जाती है। तो ये हमारा हार्मोन से रेगुलेटेड है। जब शाम होती है, धुंधलका होता है, तो हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, उसका स्राव शुरू हो जाता है, जो हमसे कहता है कि अब अंधेरा हो गया है, ये सोने का वक्त है। सुबह को वो हार्मोन खत्म होने लगता है शहर में, अब उठ जाइए, अब काम का वक्त हो गया है। तो हम जब इस प्राकृतिक नियम के अनुसार चलते हैं तो हमें नींद आती है, तभी हमें परेशानी नहीं पैदा होती है। मुख्य कारण हमारा आहार, मैं कहना चाहता हूं जितना जंक फूड है, भारी खाना है, कचौड़ी, पूड़ियां, पराठे, समोसे, जितनी चीजें भी हैं जो भारी खाना है, उनका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपके स्टमक पर प्रभाव पड़ेगा। उसका प्रभाव पड़ेगा तो उसको पचाने के लिए जिन हार्मोन की जरूरत है, उसके लिए मस्तिष्क की संवेदनाएं जोर लेंगी, वो फिर परेशान करेगा। तो हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल संतुलित हो, न हमारा पेट ओवर हो जाए, जरूरत से ज्यादा भर जाए, न हम भूखे रह जाए। दूसरा, आचार और विचार। हम जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारे इंद्रियों पर पड़ता है। इसकी वजह से हम संतुष्ट या असंतुष्ट होते हैं। अच्छी बातें हो रही हैं, हमारा मन शांत है, हमारा मन खुश है, तो हमें नींद आती है। हम बिस्तर पर जाते हैं और असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं हर वक्त, तो सोते वक्त बजाय इसके कि हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क किसी आराम पे आ जाए, दोबारा फ्रेश होने के लिए तैयार हो जाए, उसको नींद नहीं आती। हम करवट बदलते रहते हैं, क्योंकि दिन भर हमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो हमें संतुष्ट रख सके। तो मेरे हिसाब से तो जो मुख्य कारण है वो हमारी जीवन शैली पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है,
1: भागदौड़ भरी जिंदगी है।
0: जी
1: जी, डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सूरज ढलने के बाद शाम होती है और इशारा करती है कि अब आराम का वक्त है, सोने का वक्त है। ग्रामीण अंचलों में देखा जाए तो ये उचित लगता है, सही लगता है, लेकिन शहरों में क्या होता है, ऐसा लगता है कि रात कभी होती नहीं है। तो यही कारण है कि शहरों में लोग देर से सोते हैं। इसके अलावा लेट नाइट पार्टीज है, लेट नाइट वर्क है, घूमना फिरना है, इसका जीवन पे क्या असर पड़ता है और नींद पे क्या असर पड़ता है?
0: देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर रात को लेट नाइट पार्टी आप कर रहे हैं, बहुत देर से आप सो रहे हैं, जब आप 11 बजे 12 बजे खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है जब लेटेंगे आपको तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि खाना कायदे से रात को सोने से कम 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि खाना पचना शुरू हो जाए। हम लेटते तब हैं जब खाना स्टमक में पहुंच के भरा हुआ होता है, हमारी नींद उड़ जाती है। लेट नाइट पार्टी से हम लौट के आते हैं, उसके बाद मोबाइल देखते हैं, फिर हम टीवी देखते हैं, फिर हम और कुछ करते हैं। हम अपनी नींद को अपने ये मान लिया है जैसे ये बेकार की चीज है। नींद बहुत काम की चीज है। अगर आप चाहते हैं कि ठीक रहना तो नींद बहुत काम की चीज है।
1: अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज
0: मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज।
1: डॉक्टर विशेष कुमार, आप हमारे स्टूडियो में आए और एक विशेष वार्ता पर आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुनी जानकारी डॉक्टर विशेष कुमार से बदलती जीवन शैली और नींद की समस्या विषय पर। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:45 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग का समय रहेगा प्रातः 7 बजे। फिल्मी गीतों के इंफरटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे आप तक पहुंचेगा प्रातः 7:31 पर। नए फिल्मी गीतों का प्रोग्राम 102.9 मॉर्निंग हिट्स आप सुन सकेंगे 8:45 पर। 9:25 पर सुनिएगा कार्यक्रम गौरव भारत देश के। उर्दू प्रोग्राम नशर किया जाएगा प्रातः 9:30 पर। श्रोताओं के अनुरोध पर पसंदीदा फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर आप सुन सकेंगे प्रातः 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग प्रसारित किया जाएगा 10:30 पर। कार्यक्रम धरोहर का समय रहेगा प्रातः 11 बजे। श्रोताओं की शब्दावलियों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन का समय रहेगा प्रातः 11:30। ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत आपके नाम आप सुन सकेंगे 12:10 पर। दोपहर 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम धरती गाती है। आज कलाकार होंगे लालमन चित्रकार। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडिया वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं इस समय हमारी प्रथम सभा के प्रसारण। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रामचरितमानस गान।
3: एपिसोड नंबर 304 304।

मंदोदरी के लाख समझाने पर भी रावण को सद्बुद्धि नहीं आती। श्री राम की शरण में न जाकर वो अपनी प्रभुता और पराक्रम का गान करने लगता है। मंदोदरी को अपना सुहाग अचल रखने की चिंता है, किंतु रावण की मदांधता बहुत अधिक हो गई है। वो सोचता है कि जब मैंने वरुण, कुबेर, पवन और यमराज को ही नहीं बल्कि काल को भी जीत लिया है, तो मेरा अहित अब भला कौन कर सकता है। मंदोदरी को विश्वास हो जाता है कि उसके पति पर अब काल सवार है, अन्यथा इतना अभिमान उसे क्यों कर होता। सभा में मंत्रणा के नाम पर मंत्रीगण उसकी ठकुर सुहाती करते हैं। ये देख रावण का विवेकवान पुत्र प्रहस्त पिता को एक बार फिर समझाने का प्रयास करता है। कहता है, एक ही वानर आकर सोने की लंका जला गया। हे प्रभु, इन मंत्रियों की सम्मति सुनने में तो बहुत प्रिय लग रही है, किंतु इनकी बात मानकर चलने में आगे दुख उठाना पड़ेगा। जगत में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो सुहाने वाली बातें कहते हैं, सत्य और प्रिय कहने वालों की संख्या कम होती है। मुझे कायर और भीरु न समझ, मैं जो कहता हूं उस पर ध्यान दीजिए और नीति के अनुसार दूत भेजकर श्री राम से सद्भाव स्थापित कर लीजिए।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान। कलाकार थे रविंद्र साठे और कविता कृष्णमूर्ति। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमं अन्तिमं प्रचरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायाञ्च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च द्विसहस्राब्दस्य सप्तविंशतितमं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण

अभी आपने सुने मुस्कान अलवी के स्वर में कुछ लोकगीत। लोक रंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर की प्रथम सभा के प्रसारण।

बंदूक से निकली गोली का कोई नाम, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। जब ये गोली लगती है किसी इंसान को, तो घायल होती है मानवता। छूट जाता है एक बचपन, वीरान हो जाता है किसी का जीवन, टूट जाती है किसी के बुढ़ापे की लाठी, बुझता है एक दीपक उम्मीद का। अपने इस देश में बारूद का ढेर नहीं, फूलों का चमन महकाएं, जीवन के हर रंग से इंद्रधनुष बनाएं।

0: ऐसा कार्यक्रम जिसमें महकते हैं जज्बात,
1: खिलता है आशाओं का सावन,
0: श्रोताओं की शब्दावलियों पर आधारित
1: वो कार्यक्रम है मन भावन।
2: मन भावन हर रोज दिन में 11:30 पर सुनिए आकाशवाणी रामपुर से मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: कौमों को नाज है वतन पर मर मिटने वालों पे।
1: उठकर जरा तो देखो दुनिया का रंग क्या है, रफ्तार क्या जहां की, कौमों का ढंग क्या है।

0: हमारे भारत में सदा एकता का वास रहे,
1: समाज में सदा आपसी प्रेम का आश्वास रहे,
0: देश में सदा भाईचारे और नैतिकता का निवास रहे
1: और हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता में सदा उजास रहे।
0: आइए मिलकर हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें भारतीयता का, मनुष्यता का सदा वास रहे।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्यपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों का सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाने का दिया निर्देश। प्रदेश में स्वगणना का अंतिम दिन आज। कल से शुरू होगी मकानों की गिनती। और राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
3: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री को रोम में सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत समावेशी विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए वैश्विक मंच पर एक सशक्त आवाज बनकर उभरा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में आगामी NEET UG 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में सड़क सुरक्षा को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु देश व राज्य की क्षति है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं अधिकांशतः जागरूकता के अभाव में होती हैं। ऐसे में सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन स्तर पर सड़क सुरक्षा के संबंध में पाक्षिक बैठक कर कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने सड़कों पर स्टंटबाजी, ओवर स्पीड तथा नशे में वाहन संचालन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान परिवहन निगम को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सही फिटनेस वाली बसें ही सड़कों पर चलें। साथ ही चालकों परिचालकों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अल नीनो के प्रभाव के कारण आने वाले वर्षों में फसलों पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य को अभी से खाद्य सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कल लखनऊ में हुई एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर क्लस्टर प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। उन्होंने मंडी कर और मंडी शुल्क प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मंडियों में स्वच्छता, रंग रोगन, त्योहारों के दौरान प्रकाश व्यवस्था, अतिक्रमण हटाना और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। एक रिपोर्ट।
4: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोक निर्माण विभाग की 2026-27 की कार्ययोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, मंत्री और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में मानक, गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास प्रस्ताव तैयार कर एक सप्ताह के अंदर भेज दिया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने कल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर अपना कामकाज संभाल लिया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में MSME की महत्वपूर्ण भूमिका है।
5: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से MSME विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
2: प्रदेश में चल रही स्वगणना का आज अंतिम दिन है। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने आज भी लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में कल से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को कल खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी।
6: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 60 फ्लाइटों का आना जाना है और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही है थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आने जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि झेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से झेवर जाएगी। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समय शेड्यूल में प्रोग्राम है।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कल 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने राज्य में कुछ स्थानों पर कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में रात में भी उमस भरी गर्मी पड़ने की आशंका है। भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है, जबकि कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा आज 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 3,66,700 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, यह भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्यपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों का सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष अभियान चलाने का दिया निर्देश। प्रदेश में स्वगणना का आज अंतिम दिन, कल से शुरू होगी मकानों की गिनती। और राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं इस समय हमारी प्रथम सभा के प्रसारण। प्रातः के 7:31 हुए। आप प्रस्तुत फिल्मी गीतों का इंफरटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे।

श्रोताओं, एक नई उम्मीद, प्रेरणा और उत्साह से भरी सुबह के साथ कीजिए कबूल आपकी रेडियो दोस्त जवीरिया का नमस्कार। श्रोताओं, यूं तो हर दिन एक नई ताजगी के साथ आता है और यूं ही दिन के बाद दोपहर और फिर शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, फिर दूसरे दिन सवेरा होता है और यूं ही बरसों का सफ़र तय हो जाता है। ठीक इसी तरह आकाशवाणी ने भी अपने इस सफ़र को तय किया है और 90 वर्षों के सफ़र को तय करने जा रहा है। यूं ही सदियों से

प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अरशद रिजवी, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, रजा पीजी कॉलेज। मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ और डिपार्टमेंट का हेड हूँ। आकाशवाणी से मेरा बहुत पुराना एक ताल्लुक रहा है, आकाशवाणी और दूरदर्शन। मैं लखनऊ आकाशवाणी से भी न्यूज पढ़ता रहा हूँ, इलाकाई खबरें। और जब रामपुर में 2000 में आया तो उसके बाद यहाँ जो आकाशवाणी है उससे भी मेरा एक ताल्लुक हुआ। मनदीप कौर जी थी और बहुत से लोग थे, इसके जो प्रोग्राम थे वो बहुत उम्दा थे। यूं तो जो ऑल इंडिया रेडियो है उसके जो प्रोग्राम हैं वो बहुत कहा जाए कि दिलकश हैं और लोगों को पसंद आते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की एक 90 साल खिदमत हैं जो समाज के मुख्तलिफ तबकों को, मुख्तलिफ समाज के मुख्तलिफ हिस्सों को जिन्होंने मुतासिर किया है, लोग आकाशवाणी से जुड़ते रहे हों, चाहे वो उसके प्रोग्राम हों, युवाड़ी हो, सुबह सवेरे हो, या फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम हो, या जो उर्दू प्रोग्राम है ऑल इंडिया रेडियो से भी और खुद रामपुर रेडियो या लखनऊ आकाशवाणी से, तो उससे सब वाबस्ता रहे और आसपास की जो खबरें रही हैं, आसपास क्या हो रहा है, समाज में जो तब्दीलियां हैं, उन टॉपिक्स पर, उन मौजूदात पर बहुत ही सैर हासिल तबसरे और बहसें आकाशवाणी से अक्सर आती रही। तो इस तरह से समाज के हर तबके को आकाशवाणी ने मुतासिर किया है, अपर जो आला तबका है उससे लेकर के और निचले तबके तक, सबको, सब तक रसाई है। एक तरह से कहा जाए, मेरी अपनी एक तहकीक भी है आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर समाचार, एक तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें मैंने बात कही कि आकाशवाणी की रसाई बहुत दूर तक है। अगरचे दूरदर्शन विजुअल है लेकिन इसके बावजूद आवाज का जो जादू है वो आकाशवाणी ने बहुत दूर तक पहुंचाया है। और जो उस जादू को बिखेरने वाले जो लोग हैं वो बड़े अहम है। मैं रामपुर के हवाले से बात करूं तो सुधांशु नंदन जी हैं, चंद्रमोहन सक्सेना साहब हैं, मोहम्मद अली मौज साहब जो रामपुर की एक तरह से कहा जाए कि बहुत जबरदस्त पहचान थे, इसके अलावा सरवत उस्मानी साहब यहाँ रहे, मनदीप कौर जी ने बड़ी लंबी खिदमत और वो यही आकाशवाणी रामपुर से रिटायर हुई और बहुत ही उनकी अपनी पूरी जो सर्विस रही उसमें उनकी जो खिदमत मुख्तलिफ आकाशवाणी पर रही, लेकिन रामपुर बिलखसूस मनदीप कौर जी के लिए बहुत अहम रहा। वहाँ उनकी जो काविशें और कोशिशें रही उसने आकाशवाणी को बहुत बुलंदी अता की, बहुत ऊंचाई पर ले गई। इसके अलावा असीम सक्सेना साहब अभी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी बेहतरीन जो आवाज है और बेहतरीन अंदाज है उसके सभी कायल हैं। इसके अलावा मेरे एक दोस्त सुरेंद्र राजेश्वरी जो लखनऊ से वाबस्ता रहे और उनकी बेहतरीन आवाज, उनको मुख्तलिफ और दूसरे प्रोग्राम में बुलाया जाता था क्योंकि वो आवाज का ऐसा जादू था, भारी भरकम आवाज और उनका अंदाज, वो जो लोग भी सामे होते थे उनको बांध लेती थी अपने आप में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये आकाशवाणी के लिए बहुत अच्छी चीज थी कि ऐसे ऐसे लोग आकाशवाणी से वाबस्ता रहे। मैं लखनऊ आकाशवाणी से वाबस्ता रहा, फिर रामपुर से हो गया, दूरदर्शन से भी मेरा वास्ता रहा, मैंने 10 साल वहां खबरें पढ़ी दूरदर्शन लखनऊ पे, और इसके अलावा आकाशवाणी पे खबरें पढ़ता रहा। तो मुझे एक दिली लगाव भी आकाशवाणी से भी है, दूरदर्शन से भी है। आकाशवाणी से यूं है कि आकाशवाणी से मेरी आवाज गांव और कस्बे, जब टेलीविजन दूर दूर नहीं पहुंचा था तब तक वहां तक भी मेरी आवाज ही पहुंचती थी। इसी तरह ये जो नाम मैंने लिए उन सब की आवाज लोगों को बहुत ही, जो बहुत दूर दराज के गांव हैं और कस्बे हैं वहां तक ये आवाज पहुंचती थी। इसलिए कहा जाए कि आकाशवाणी की जो रीच है वो बहुत बड़ी है और बहुत दूर तक है, बहुत ही ब्रॉड उसमें अगर देखा जाए तो आकाशवाणी ने अपनी खिदमत अंजाम दी है। और ऑल इंडिया रेडियो है वो तो पूरे हिंदुस्तान या पूरे भारत को अपने प्रोग्राम में बांध लेता है। इस तरह से ये 61 साल आकाशवाणी रामपुर को हो गए हैं और 90 साल ऑल इंडिया रेडियो को अपनी खिदमत पेश करते हुए हो गए। मैं अपनी नेक ख्वाहिशात आकाशवाणी रामपुर को और ऑल इंडिया रेडियो को देता हूँ कि वो इसी तरह से बहुत दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव जो प्रोग्राम है वो पेश करता रहे और लोगों को आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो से जोड़ता रहे। लोग बड़े दिल से जुड़ते हैं और इसीलिए आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम भी, जो लोग भी वहाँ हैं वो सब के सब बहुत दिल से उसे पेश करते हैं। मैं अपनी नेक ख्वाहिशात ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी को पेश करता हूँ। मैं अपनी नेक ख्वाहिशात के साथ आकाशवाणी और प्रसार भारती को ये बात कहना चाहूंगा कि अभी तो 90 साल का जश्न

मनाया जा रहा है और इंशाल्लाह 100 साल का जश्न भी जल्द ही मनाया जाएगा और उससे आगे भी ये बहुत बुलंदियों तक जाएंगे। तो बुलंदियों तक पहुंचना ये कोई बहुत कमाल नहीं होता। शायर कहता है कि मैं शेर से अपनी बात को खत्म करूंगा कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। और मैं देख रहा हूं कि ये आकाशवाणी और जो ऑल इंडिया रेडियो है प्रसार भारती के साये में बुलंदियों पे ठहरा हुआ आधा वर्ष, और मैं इस हवाले से अपनी बात खत्म करता हूँ।

अभी आपने सुनी डॉक्टर सैयद अरशद रिजवी से उनकी जज्बात व एहसासों की कहानी, रेडियो से जुड़ी उन्हीं की जुबानी। श्रोताओं, यूं तो आज टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोग रेडियो को सुनना बहुत पसंद करते हैं। अब से पहले का तो वो क्या ही दौर था जब घरों में रेडियो खुलता था और एक आवाज़ गूंजती थी, ये आकाशवाणी है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता था, सबके कानों को इंतज़ार रहता था खबरों का, नाटक व अन्य मनोरंजक कार्यों को सुनने का, साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों के प्रोग्राम जिनमें लोग अपने नामों की फरमाइश को सुनने के लिए बेताब होते थे। और आज भी कहीं ना कहीं श्रोताओं का प्यार और जुड़ाव रेडियो के प्रति जागरूक और स्नेह भाव बहुत गहरा है, ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। आज भी लोग इसे सुनने के लिए बेकरार होते हैं। 9 दशकों का दौर जो कि 8 जून को पूरा होने जा रहा है, आगे भी यूं ही अपने दशक पूरा करता रहेगा।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, अब जानते हैं 21 मई के इतिहास को, क्या क्या हुआ आज देश दुनिया में खास। सुष्मिता सेन, जो कि भारत की एक मशहूर अभिनेत्री हैं, इन्होंने 21 मई सन 1994 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। 21 मई सन 1881 को क्लोरा बार्टन में न्यूयॉर्क के डॉन्सविले में अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना की थी। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना भी 21 मई सन 1904 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। 21 मई सन 1994 को दक्षिणी यमन ने खुद को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन के रूप में स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। श्रोताओं, इसी के साथ जानते हैं 21 मई के इतिहास में जन्मी महान व्यक्तियों के बारे में। मालयालम फिल्मों के 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय करने वाले मोहनलाल विश्वनाथन का जन्म भी आज ही के दिन 21 मई 1960 को हुआ था। 21 मई सन 1971 को भारतीय प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, निर्माता और स्क्रीन राइटर आदित्य चोपड़ा का जन्म भी हुआ था, जो कि दिग्गज फिल्मकार यश चोपड़ा के बेटे और यशराज फिल्म के चेयरमैन हैं। अमेरिकी हिप हॉप इतिहास के सबसे प्रभावशाली रैंपर्स में से एक नोटोरियस BIG यानी क्रिस्टोफर वॉलिस का जन्म भी 21 मई सन 1972 को हुआ था। श्रोताओं, आगे जानते हैं 21 मई के इतिहास में देश दुनिया को अलविदा कहने वाली महान हस्तियों की जानकारी। भारत के महान पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा का निधन भी 21 मई सन 2021 को हुआ था। इन्होंने वनों की कटाई को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक संघर्ष किया था। 21 मई सन 1960 को गामा पहलवान यानी रुस्तम हिंद का निधन भी हुआ था। श्रोताओं, ये तो था आज का इतिहास। इसी के साथ आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। और इसी दिन को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी नेशनल टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और नागरिकों को आतंकवाद और हिंसा के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना और शांति बनाए रखना है। देश को आतंकवाद मुक्ति बनाने की प्रतिज्ञा लेना है। आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की चुनाव प्रचार के दौरान एक आत्मघाती हमले में मृत्यु हो गई थी, जो कि एक महिला हमलावर द्वारा किया गया था, एक जानलेवा हमला था। इस दिन शोक की लहर छा गई थी और प्रत्येक वर्ष राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी जी को एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने भारत को 21वीं सदी की ओर ले जाने का सपना देखा था। उनकी सोच थी कि भारत तब आगे बढ़ेगा जब युवा आगे बढ़ेंगे। आज भी तकनीक, शिक्षा और संचार के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया जाता है। युवाओं के सपनों को दी जिसने नई उड़ान, भारत को आधुनिक सोच की पहचान दी। ऐसे दूरदर्शी नेता श्री राजीव गांधी जी को शत शत नमन और श्रद्धांजलि।

श्रोताओं, आज 21 मई को विश्व चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त इस दिन का उद्देश्य चाय के इतिहास, इसकी संस्कृति, आर्थिक महत्व और इसके उत्पादन से जुड़े किसानों व मजदूरों के कल्याण के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। सादे पानी के बाद चाय ही दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला पेय है, जो कि करोड़ों किसानों और मजदूरों, विशेषकर महिलाओं के लिए आजीविका और रोजगार का

मुख्य स्रोत है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। चाय की खोज चीन में 2737 ईसा पूर्व हुई थी। एक किंवदंती के अनुसार चीनी सम्राट शेनक के उबलते पानी में अचानक जंगली पत्तियां गिर गईं, जिससे इस स्वादिष्ट पेय का जन्म हुआ। भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक भावना है जो लोगों को आपस में जोड़ती है। चाय पर चर्चा से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक यह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इंफरटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडिया वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 8 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग

0: का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिक बेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
5: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट और कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
0: जी जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सोलहवीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल चार बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
6: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की चार दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ चार मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक, भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के पांच देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश है और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग श्वांगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Phalta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
9: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
8: More from our correspondent.
1: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant events and engagements. He called on Italian President Sergio Mattarella, held delegation-level talks with Prime Minister Giorgia Meloni, focusing on enhancing cooperation between India and Italy. The visit to the Food and Agriculture Organization was to strengthen India's commitment to multilateralism and global food security, where he was honored with the prestigious UN Agricola Medal. Both sides also decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have the century-old cultures develop a dialogue and make them more and more connected. He also met enthusiastic Indian diaspora and Italian artists who welcomed him on his arrival in Rome. This is Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
8: India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said, the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive exams, particularly through Telegram channels and anonymous online groups. The meeting was crucial ahead of the re-examination of NEET UG 2026 on 21st of June. Officials noted that several such channels become highly active in the run-up to major exams, circulating fake paper leak claims, clickbait content and unverified information that trigger panic, anxiety and confusion among students and parents. It was highlighted that many such links redirect users to automated bots and fake groups designed to amplify misinformation. In West Bengal, re-polling has begun for the Falta Assembly constituency in South 24 Parganas district. Voting, which started at 7 a.m., will conclude at 6 p.m. The Election Commission had ordered a complete re-poll in Falta Assembly constituency, scrapping the voting that was held on 29th of April following multiple reports of irregularities, including voter intimidation, unauthorized presence inside polling booths, and possible tampering with voting machines. A total of 6 candidates are in the fray, including 2 independents. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan has announced that he would not contest the election. However, his name remains on the ballot as the deadline for withdrawal of candidature has already passed. BJP's candidate is Dibangshu Panta. Congress has fielded Abdul Razak Molla, while the CPIM has fielded Shambhu Nath Kurmi. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha for the latest update. Kalyan, what's the latest update that you have?
10: Sarah, the latest update is the voting is going on peacefully and no reports of violence or any untoward incident came in. And that this week, this candidate Jahangir Khan declared that he would not contest in the election. And in this situation, the fight is among the candidates of BJP, TMC, BJP, CPIM and Congress. We can expect that peaceful voting trend can continue throughout the day. Sarah.
8: Right. Thank you so much, Kalyan, for that update. Moving on, West Bengal government has begun handing over land to Border Security Force, BSF, for barbed wire fencing along the Indo-Bangladesh border. More from our correspondent.
11: Yesterday, at the State Secretariat Navarno, Chief Minister Shubhendu Adhikari formally initiated the process in the presence of BSF officials. The Chief Minister accused the previous government of obstructing border security through non-cooperation. He stressed that fencing the border is vital for national and state safety, citing issues such as infiltration, smuggling, counterfeit currency, forced religious conversions, and crimes linked to illegal Bangladeshi entrants. West Bengal shares nearly 2,200 kilometers of the 4,000 kilometer India-Bangladesh border, while fencing already covers about 1,600 kilometers. 600 kilometers remain unfenced. Yesterday's handover included the land for 27 kilometers, out of which 18 kilometers for fencing and 9 kilometers for BSF outposts and infrastructure. The Chief Minister assured that more land will be transferred soon, with costs fully covered by the central government and BSF. BSF Director General Praveen Kumar praised the state government, noting that cooperation long needed in border operations is now being received under the new administration.
12: Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
8: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back, you're listening to Morning News. India has called out Pakistan's long-tainted record of genocidal acts at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathineni, said that Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said it is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
13: It is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
8: Mr. Parvathineni's remarks came after Pakistan's representative raised the issue of Jammu and Kashmir at the debate. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that he is looking forward to celebrating America's 250th birthday with partners in India. In a video message shared ahead of his visit, Mr. Rubio said that India is the world's largest democracy and U.S. is world's oldest. So the U.S. looks forward to celebrating it together. U.S. Embassy in India also shared the video. President of Cyprus, Nikos Christodoulides, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai last evening on a four-day official visit to India. In a social media post, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranadhir Jaiswal, said, President Christodoulides' visit highlights the growing momentum of India-Cyprus partnership, and both the nations share time-tested and close relations rooted in shared values and strong people-to-people ties. The state visit comes at a moment when Cyprus holds the presidency of the Council of the European Union. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay will expand his cabinet today. Rajesh Kumar, leader of Congress Legislature Party, and P. Vishwanathan, Melur MLA, will be inducted into the cabinet. This is the first time after 1967 that the Congress members will join the state cabinet. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at their home ground, Eden Gardens, last night to keep playoff hopes alive. Chasing a target of 148 runs in a rain-affected match, Kolkata Knight Riders overhauled the target with 4 wickets in hand and 7 balls to go. Manish Pandey scored highest 45 runs, while Raman Powell contributed 40 runs in the chase. In today's fixture, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already qualified for the playoffs, while Chennai Super Kings are eyeing for the fourth spot in the points table. Inter Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heat wave conditions today at places over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also likely to prevail during the day over parts of Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Vidarbha. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
14: Thank you, Saira. Prime Minister's visit to Italy is widely noticed by the press today, along with developments in US-Iran conflict. Hindustan Times writes, Rome-Delhi dial-up ties during Modi's Italy visit. The paper also carries a picture of Prime Minister Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni at the Colosseum, and a screen grab of the video widely circulated on social media where PM Meloni is thanking PM Modi for presenting her a bag of toffees, Melody, a play on their names. The video has been viewed over 11 million times. The Pioneer writes, PM Modi's Melody gift to his Italian counterpart sends internet into a frenzy. The Asian Age writes, after talks with Putin, Xi calls for immediate end to West Asia war. Hindustan Times headlines, talks in final lap, strikes if no deal, says Trump. Iran says conflict will expand beyond region if US resumes attacks. Financial Express headlines, RBI lines up $5 billion swap to aid liquidity. In the growing market of cosmetics, Central Drug Standard Control Organization has issued an advisory saying cosmetics can only be rubbed, sprayed or sprinkled on body. The newspaper headlines, no cosmetic job with jabs, warns drug regulator. The Indian Express in an exclusive writes, working in my own grave, how workers are training robots that may replace them. The news item writes about workers in factories who are asked to wear smart glasses throughout their day. The exercise reflects a growing global push by AI and robotics companies to gather what's called egocentric data, first-person recordings of human activity that can teach machines how people perform physical tasks. And finally, The Economic Times writes, Google rejigs iconic search box for AI era, adding Google is redesigning its iconic search box and adding new artificial intelligence coding tools in its first step to expand influence in the age of AI. And with that, it's back to you, Saira.
8: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Repolling begins in Falter Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And with that, we end the morning news. Have a great day.
15: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पांच मुल्कों के अपने सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान मुजाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। मरकजी सरकार ने नीट यूजी का इम्तिहान दोबारा होने से कबल अफवाहों और पेपर लीक होने के फर्जी दावों से निमटने के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी की हैं। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हल्के में दोबारा पोलिंग हो रही है। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। इससे कबल कल भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को खसूसी कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने का ऐलान किया, जो बाहमी ताल्लुकात में एक अहम कदम है। दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इनमें ज़राअत, अहम मादनियात, आयुर्वेद, साइंस, टेक्नोलॉजी और भारत से भारतीय नर्सों के इटली जाने में सहूलत पैदा करना शामिल हैं। दोनों मुल्कों ने टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने की रोकथाम से मुतालिक मुफाहिमत नामों पर भी दस्तखत किए।
8: रोम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुश्तरका अखबारी बयान में कहा कि इटली दुनिया भर में डिजाइन और दुरुस्तगी के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की पहचान अपने हुनर, सलाहियत और कम खर्च इख्तिरा के एक पावर हाउस की है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली डिजाइन तैयार करने और दुनिया के लिए मुहैया कराने के उसूल पर आगे कदम बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और इटली के दरमियान दिफाई सनती खाके के तहत साजो सामान कर तैयार करने की राह हमवार हुई है।
9: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
8: पेश है एक रिपोर्ट।

0: अखबारात ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान दिए गए इस बयान को अहमियत दी है कि जनूबी कोरिया के साथ स्ट्रेटजिक शराकतदारी और होगी मजबूत।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पांच मुल्कों के अपने सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान मुज़ाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। मरकजी सरकार ने नीट यूजी का इम्तिहान दोबारा होने से कबल अफवाहों और पेपर लीक होने के फर्जी दावों से निमटने के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी की हैं। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग हो रही है। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से शिकस्त दी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर की प्रथम सभा के प्रसारण। प्रातः के 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का प्रोग्राम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

0: कार्यक्रम का पहला गीत भूमि त्रिवेदी के स्वर में, गीत के बोल लिखे सिद्धार्थ और गरिमा ने, संगीत निर्देशन है संजलीला भंसाली का, फिल्म का नाम है गोलियों की रासलीला रामलीला।
1: डॉन राम भाई, और आप जानते हैं कि डॉन का मनोरंजन एक खास सॉन्ग की पेशकश करो।

कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल। गीत के बोल लिखे शबीर अहमद ने, संगीत है मीत ब्रदर्स का और गायक कलाकार हैं अल्तमश फरीदी और पलक मुच्छल।

आप सुनिए अरिजीत सिंह, बादशाह, जोनिता गांधी और नकाश अजीज को। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है प्रीतम का, फिल्म का नाम है ऐ दिल है मुश्किल।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह, जोनिता गांधी और रणवीर सिंह को। फिल्म का नाम था रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत था प्रीतम का। आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दिल धड़कने दो से। गायक कलाकार हैं सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, यशिता शर्मा, मनीष कुमार, टीपू और फरहान अख्तर। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत है शंकर एसॉन लॉय का।

अभी आपने सुना यो हनी सिंगार सिमर कौर को? फिल्म का नाम था सोनू के टीटू की स्वीटी। 102.9 मॉर्निंग हिट्स का अगला व अंतिम गीत फिल्म ये जवानी है दीवानी से। गायक कलाकार हैं रेखा भारद्वाज और विशाल ददलानी।

अभी आप सुन रहे थे नए फिल्मी गीतों का प्रोग्राम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 9:15 होने को है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और सुल्तानपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
1: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9000 से बढ़ाकर 17000 प्रतिमा किए जाने के अवसर पर आगरा में अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर और माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह एवं चेक वितरण कार्यक्रम का लखनऊ से सजीव प्रसारण को जनप्रतिनिधि अधिकारियों और अनुदेशकों द्वारा देखा गया। इस अवसर पर जनपद के 226 अंशकालिक अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि शिक्षक केवल नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार होता है। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में स्वर्णिम दुग्ध अमृत संवाद समागम थीम पर आयोजित डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। डेयरी कॉन्क्लेव का शुभारंभ पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कॉन्क्लेव में आगरा और अलीगढ़ मंडल के पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी विशेषज्ञ उद्यमी निवेशक किसान और गोपालकों द्वारा भाग लिया गया। डेयरी कॉन्क्लेव में स्वदेशी नस्ल संरक्षण और आधुनिक डेयरी तकनीक योजनाओं की जानकारी गोपालन पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था डेयरी और क्षेत्र में रोजगार और निवेश की संभावनाओं पर मंथन किया गया। कॉन्क्लेव में निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित निवेशकों द्वारा अपने स्टॉल के माध्यम से दुग्ध उत्पादन नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए एक माह में ही भुगतान करने का काम करेगी। विगत दिनों आगरा में भारत और न्यूजीलैंड के बीच बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। इस बिजनेस मीट में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और न्यूजीलैंड सरकार के व्यापार और निवेश मंत्री टाड मैकल की मौजूदगी में व्यापार निवेश औद्योगिक साझेदारी के नए अवसरों का अन्वेषण करना और उन्हें बढ़ाने की ठोस रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए बिजनेस मीट में भारत और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधियों, उद्योग जगत के प्रमुख हस्तियों और नीति निर्माताओं ने सहभागिता कर दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देने पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया जिससे व्यापारिक संबंधों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आगरा आने वाले समय में निर्यात के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे और इसी के तहत आगरा में भी एक इंडस्ट्रियल पार्क लगाने की योजना प्रस्तावित है। आगरा में उद्योग बढ़ने से बेरोजगारी दूर होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ताजमहल के साथ साथ अन्य चीजों के लिए भी आगरा पहचाना जाएगा।
2: बहुत ही विस्तार से बड़ी सार्थक चर्चा आगरा के उद्योग जगत के साथ आज करने का सौभाग्य मिला। जो बेहतरीन काम आगरा में हो रहा है अलग अलग व्यापार में, चाहे वो चमड़ा का उद्योग हो, कपड़ा का उद्योग हो, मसालों का उद्योग हो, कि हम कैसे

0: पे आगरा के उद्योग के लिए क्या नई योजनाएं, क्या नए प्लान्स कर सकते हैं।
1: धर्मवीर छत्रपति सामाजी महाराज की 369वीं जयंती पर छावा भारत क्रांति मिशन द्वारा राष्ट्रीय जन्मोत्सव समारोह 2026 के तहत महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुई राष्ट्रीय गौरव यात्रा के विगत दिनों आगरा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आगरा किला के सामने हनुमान मंदिर पर आयोजित संभाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल, छावा भारत क्रांति मिशन के चीफ कोऑर्डिनेटर विजय काकड़े पाटिल द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। छावा भारत क्रांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बिलास पंगारकर ने बताया कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर 10 मई को महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुई राष्ट्रीय गौरव यात्रा संभाजी नगर, इंदौर, चित्तौड़गढ़, भीड़भाड़ा होते हुए जयपुर से आगरा पहुंचे और यहां से जयपुर होते हुए नर्मदा के खलघाट पहुंचकर संपन्न होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कहा कि धर्मवीर संभाजी महाराज का जीवन और उनका संघर्ष आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है।
2: जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की चूलें हिला दी थी और औरंगजेब का दक्कन जीतने के सपने को कभी महाराज से आगे नहीं बढ़ने दिया था और हिंदवी स्वराज की स्थापना उन्होंने की थी और उनकी वजह से भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और सनातन संरक्षित रहा था। ऐसे महापुरुषों के चरणों में मैं आगरा की तरफ से प्रणाम करता
3: हूँ। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन साहू का।
4: जिले में बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। पिछले एक सप्ताह से पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। निरंतर बढ़ती गर्मी के कारण पेयजल की उपलब्धता को लेकर जिला प्रशासन बेहद संवेदनशील है। भीषण गर्मी व हीट स्ट्रोक से जिले के अस्पतालों के ओपीडी कक्ष में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई है। जनपद में नवागत जिला अधिकारी इंद्रजीत सिंह व पुलिस अधीक्षक चारू निगम के कार्यभार संभालने के बाद जन सुनवाई के मामलों में दिखाई गई गंभीरता के बाद जन शिकायतों का कुशलता पूर्वक निस्तारण कर रहे हैं। जिले की तस्वीर को बदलने के लिए प्रयासरत जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि
5: तो ये सारे जो हमारे कोर इश्यूज हैं, एक डे टू डे है, एक लंबे हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिवाइड करके पूरी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है डिपार्टमेंट वाइज उस पर वर्क करेगी। हर डिपार्टमेंट से हमने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी ले चुके हैं 50% हम लोगों से और बाकियों की भी ले रहे हैं। फाइनल करके हम पब्लिक भी शेयर करेंगे, हमने साइट्स पे भी डालेंगे कि ये चीजें जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे।
4: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जनपद के किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। आर्थिक सहायता से खाली खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी है और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। योजना ने छोटे व सीमांत किसानों को खेती के लिए आत्मनिर्भर बनाया है, जिससे प्रधानमंत्री का किसानों की आय बढ़ाने का सपना साकार होता दिख रहा है। जनपद सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कुल पात्रों की संख्या 4,51,600 है, जिनमें से 13 मार्च को 22वीं किस्त के रूप में 3,97,442 किसानों के खातों में योजना की धनराशि भेजी जा चुकी है। जिन किसानों को धनराशि नहीं आई है उनकी कमियों को ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर दूर किया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी ने बताया कि
6: फार्मर रजिस्ट्री हमारी लगातार चल रही है और ये 31 मई तक चलेगा। इसमें लगातार निराकरण चल रहा है और आगे के दिनों में इन किसान भाइयों का जिसका किसी कारण से वंचित रहे हैं इनको प्राप्त होगा। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई अपने फार्मर रजिस्ट्री का जो कैंप चल रहा है उसमें अपना फार्मर रजिस्ट्री कराएं।
4: सत्र संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। भारतीय सत्र संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के पर्यवेक्षक विद्यासागर ने बताया कि कुड़वार के रवनिया गांव के निकट गाटा संख्या 198 की नीलामी होगी। 11 जिलों में सत्र संपत्ति नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। शहर के लोक निर्माण विभाग, सिविल लाइन व गभड़िया में भी कीमती संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में जनगणना 2027 को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रारंभिक सर्वे, मकान सूचीकरण और डिजिटल डेटा संकलन की प्रक्रिया शुरू करा दी है। जनगणना प्रक्रिया को मीडिया कार्यशाला के माध्यम से स्थानीय पत्रकारों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। जिला जनगणना अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि नगर क्षेत्र के वार्डों में कर्मचारियों और सुपरवाइजरों की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक चिन्हित कर घर घर सर्वे की रूपरेखा बनाई गई है। जनगणना कर्मियों को डिजिटल एंट्री और मोबाइल आधारित डाटा फीडिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशासन QR कोड आधारित पहचान प्रणाली और ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। 16 मई 2026 से घर घर सर्वे और स्वगणना अभियान शुरू हो चुका है। रेलवे, बैंक और सरकारी संस्थानों में सेल्फ एलिमिनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जनगणना 2027 को प्रमुख अभियान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रशासनिक स्तर पर इसकी निगरानी लगातार हो रही है। प्रथम चरण में 22 मई से 20 जून तक जनगणना का कार्य कर्मी घर घर पहुंचकर मकानों की गणना करेंगे। सुल्तानपुर जिले में आगामी वृक्षारोपण अभियान को लेकर वन विभाग सक्रिय हो गया है। प्रभागीय वन अधिकारी अमित सिंह ने इस वर्ष व्यापक जन भागीदारी के साथ विशेष पौधरोपण अभियान चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी, घटते भूजल स्तर और पर्यावरणीय असंतुलन को देखते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
3: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की हलचल।
8: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं इस समय हमारी प्रथम सभा के प्रसारण। प्रातः के 9:25 हुए। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव भारत देश के। हमारे आज के गौरव हैं सूफी संत निजामुद्दीन।
9: हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जिनका जन्म 1238 में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रमुख सूफी संतों में से एक थे। वे चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे और अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं और मानवीय प्रेम के लिए जाने जाते थे। निज़ामुद्दीन औलिया ने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद उनकी माँ उन्हें दिल्ली ले आईं। दिल्ली में ही उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद से दीक्षा ली और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। बाबा फरीद के मार्गदर्शन में वे आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। उनकी शिक्षाओं का मुख्य केंद्र मानवता, प्रेम और करुणा था। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को समान रूप से महत्व दिया और हमेशा दूसरों की सेवा और सहायता करने पर जोर दिया। उनके कथन "सभी से प्रेम करो, घृणा किसी से नहीं" ने कई लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें एक महान संत के रूप में प्रतिष्ठित किया। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन क्षेत्र में स्थित है और यह स्थान आज भी उनके अनुयायियों और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उनके यहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों, और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। उनके शिष्य, विशेषकर अमीर खुसरो ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और सूफी संगीत तथा कव्वाली के माध्यम से उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। निज़ामुद्दीन औलिया ने 1325 में इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी लोगों को प्रेम और करुणा की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया का जीवन और उनका कार्य यह सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता और धार्मिकता मानव की सेवा है। उनकी शिक्षाएं और उनका जीवन हमें प्रेम, शांति और करुणा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं। उनके द्वारा स्थापित मूल्यों ने न केवल अपने समय में बल्कि आज भी लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव डाला है।
8: अभी आपने सुना गौरव भारत देश के। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

फिल्मी गीत सुनना हुआ अब और भी आसान, ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप के भी संग। हर रोज शामिल हो जाइए अपने नाम और एड्रेस के साथ दिन में 12:10 पर। हम करेंगे गीत आपके नाम।

देश के हो आप किसी भी शहर, गांव या इलाके से, झट उठाइए अपना मोबाइल और टाइप कीजिए अपना नाम और शहर, भेज दीजिए हमारे मेल एड्रेस पर गीत आपके नाम airrampur@gmail.com और व्हाट्सएप वही आपका जाना पहचाना नंबर 9410087876। याद रखिए, दिन में 12:10 पर गीत आपके नाम।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:30 होने को है। अब पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: रेडियो एक ऐसा जरिया जो हर दौर में लोगों की तफरी और अहम मालूमात का बेहतरीन साथी रहा है। तफरी के साथ साथ अहम मालूमात फराहम कराने में रेडियो ने हर दौर में अहम किरदार अदा किया है। कदीम दौर में जब टीवी, इंटरनेट वगैरह मौजूद नहीं था, तो रेडियो ही एक ऐसा वाहिद जरिया था जिसने तमाम दुनिया की खबरें लोगों तक पहुँचाईं। हर घर में रखा रेडियो इसकी अहमियत को मजीद बढ़ाता था। घरों के अलावा दुकानों, होटलों वगैरह पर बजते इसके प्रोग्राम, ड्रामे, गाने, खेलों की कमेंट्री, तालीमी प्रोग्राम, खेती किसानी से जुड़े प्रोग्राम हर खासो आम को मुतासिर करते थे और ये सिलसिला आज भी जारी है। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद रेडियो अपनी जगह पूरी आबोताब के साथ कायम है। FM रेडियो के जरिए नौजवानों में इसकी मकबूलियत और बढ़ी है और मौजूदा दौर में मोबाइल पर रेडियो ऐप सुनने से इसके सामीन में और इजाफा हुआ है। ये कम खर्च का आसान जरिया है जो हर तबके तक पहुंचता है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा दौर में रेडियो में क्या तब्दीली हुई है, इसके शायकीनों में कितना इसका क्रेज़ बढ़ा है या कम हुआ है और इसमें इसके सामीन क्या बदलाव या इजाफाई तब्दीली देखना चाहते हैं, इसी मौजू पर हमने आज अपने स्टूडियो में एक मुबाहसे का इनकार किया है। मौजू है गवाह हर दौर का रेडियो। इस मुबाहसे में शिरकत करने वाले मेहमान हस्तियां जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके इस्माई ग्रामी हैं जनाब नासिर हुसैन, जनाब हिलाल अकबर और जनाब रईस अहमद। आप सबका मेज़बान बज़ मारे खुशनूद की जानिब से खैर मकदम है।
2: शुक्रिया।
1: सबसे पहले मेरा सवाल रईस अहमद साहब आपसे है कि रेडियो को हर दौर का साथी क्यों कहा जाता है?
3: जैसा कि मौजू से ही जाहिर है, हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है गवाह हर दौर का रेडियो। सामईन, ये जुमला सुनने में छोटा सा है मगर अपने अंदर एक तारीख समेटे हुए है। सामईन, आज मैं आपको एक ऐसी दौलत के बारे में बताना चाहता हूँ, या यूँ कहीं बता रहा हूँ, जो हमारे साथ तकरीबन 100 साल से ज़्यादा से हमारे साथ है, हमारे मुल्क के साथ है, जो ना तो कभी थका और ना कभी रूठा। आज के दौर में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और AI जैसे जदीद आलात मौजूद हैं, लेकिन बहुत साल पहले एक डब्बा होता था जो बोलता था
1: जी,
3: जिसे हम रेडियो कहते हैं। बात उस वक्त की है जब 1920 में पहली बार रेडियो की आवाज़ गूंजी तो इंसान ने पहली दफ़ा हज़ारों मील दूर बैठे हुए शख्स की आवाज़ सुनी। और सामईन, उस वक्त ये किसी चमत्कार और मौजूद से कम ना था।
1: बिल्कुल।
3: रेडियो सिर्फ लकड़ी और लोहे का एक डिब्बा नहीं है, ये वक्त का सबसे खामोश मगर सबसे सच्चा गवाह है। इसने हमारे मुल्क के हर दौर को अपनी आँखों से देखा और अपनी आवाज़ को हम तक पहुँचाया है, इसलिए रेडियो को तारीख की जबान भी कहा जाता है।
1: मेरा अगला सवाल नासिर साहब आपसे है कि इंटरनेट और टीवी के बावजूद रेडियो की मकबूलियत क्या अब भी बाकी है, इससे आप कितने मतलब इत्तेफाक रखते हैं?
4: ये सच्ची बात है, इंटरनेट या दीगर चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन जो रेडियो की मकबूलियत है या जो रेडियो को एक पहचान है, जो रेडियो

0: दिया, चाहे वो तालीमी हवाले से हो
1: जी
0: या किसानों को उनके मुतालिक जानकारी देने का हो या बच्चों में गीत गाने इस तरह के बहुत सारी चीज़ आई हैं, कव्वालियाँ आई हैं और बहुत सारे प्रोग्राम रेडियो के ज़रिए हमने सुने और सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे हमेशा। ये एक बहुत अहम और ज़रूरी है। इंटरनेट अपनी जगह काम कर रहा, रेडियो आज भी अपनी जगह काम कर रहा और हमेशा करता है।
1: हिलाल साहब, आप रईस भाई की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और साथ ही ये बताइए मुझे कि जो देहाती इलाके हैं उसमें रेडियो किस तरह आज भी अपनी जो एक मौजूदगी है वो पूरी तरह कैसे कायम करे हुए है।
2: जी, मैं इनकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। आज के समय में हम देखते हैं कि रेडियो अपनी जगह, अपनी पोजीशन पूरी तरह से बनाए हुए है। हमें याद है कि जब हम छोटे थे
1: जी
2: तो खेत खलिहानों में किसान अपने खेत के साइड से रेडियो रखकर अपना काम करते थे। रेडियो पर कार्यक्रम चलता था और देश विदेशी समाचार हो गए और मनोरंजन हुआ। रेडियो ने अपनी जगह को एक ऐसे बनाया कि वो दिल पर राज करता आया है।
1: जी
2: आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी बदलती रही लेकिन रेडियो की आवाज़ आज भी लोगों के दिलों में पहुंच रही है। रेडियो का इजाद 19वीं सदी के आखिर में हुआ। रेडियो संचार को डेवलप करने का क्रेडिट गुगल एल्मो मार्कोनी को दिया जाता है। उन्होंने 1895 ईस्वी में तार के पैगाम भेजने में कामयाबी हासिल की। बाद
1: जी
2: में 1901 ईस्वी में उन्होंने अटलांटिक महासागर के पार रेडियो संकेत भेजकर इतिहास रचा।
1: जी
2: हालांकि रेडियो तकनीक के डेवलप में निकोला टेस्ले, जेम्स क्लर्क, मैक्स बेल और हाइरिक हर्ड जैसे वैज्ञानिकों ने भी खास किरदार रहा।
1: मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हमारे देहाती इलाके हैं उसमें रेडियो किस तरह से साबित कदम रहा है और किसानों को इससे कितना फायदा होता है, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे
0: हाँ,
1: में कई साहब?
3: ये बहुत ही अच्छी बात आपने सवाल आपका है कि रेडियो गांव की ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज हुआ। तो देखिए, मैं इसमें कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब नासिर हुसैन साहब, कि वक्त बदला, गांव की ज़िंदगी आज भी रेडियो के बगैर अधूरी मानी जाती
0: अधूरी मानी
3: है।
0: जाती है।
3: किसान सुबह खेत में जाते हुए अक्सर रेडियो अपने साथ ले जाते हैं। मौसम का हाल हो या बीज की मालूमात या फिर मंडी का भाव,
1: जी
3: ये सब कुछ रेडियो से उसे मालूम होता है। जब सैलाब आता है या फिर कोई तूफान, बिजली चली जाती है या मोबाइल बंद हो जाता है, तब भी रेडियो के सिग्नल चलते रहते हैं। मुसीबत के वक्त हुकूमत की हिदायत हम तक रेडियो ही पहुंचाता है। इसलिए गांव का आदमी आज भी कहता है कि रेडियो सबसे सच्चा दोस्त है। खेत खलिहान जैसे प्रोग्रामों ने अनपढ़ किसान को भी मौसम, बीज और मंडी के भाव सिखाया है। रेडियो ने हर दौर में गांव के मजदूर, किसान और माओ की तन्हाई को दूर की है। ये अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं करता। चाहे सैलाब आए, जलजला आए या बिजली चले जाए, जब कुछ ना करें तब भी रेडियो के सिग्नल चलते रहते हैं। इसलिए कहते हैं, मुसीबत में सबसे वफादार साथी रेडियो होता है।
1: जी रईस भाई, आपने सही कहा, और इसी सिलसिले से मैं सवाल लेना चाहूँगी कि हंगामी हालात में रेडियो की क्या अहमियत होती है? नासिर साहब, आप बताइए।
0: देखिए, जब हमारे मुल्क या किसी भी मुल्क पे या कहीं और भी ऐसे मामला पैदा होते हैं जो हालात गैर हालात हो जाते हैं, उसमें रेडियो हमें वहाँ की खबरें, क्योंकि लोग गुमराह करते हैं उससे बचाने के लिए
1: प्रोपेगेंडा
0: रेडियो।
1: से
0: हाँ
1: भरा जाता है
0: भाई,
1: इसलिए।
0: बैनुल अक्वाम पे कोई मामला हो जाए तो हम तो जा नहीं सकते। तो वहाँ पे जब रेडियो के ज़रिए सच और सच्ची बात सामने आती है, जिस पर बाद में लोग तस्करा आपस में करते हैं, ऐसे नहीं और ऐसे है, आमतौर से लोगों में गलत फहमियाँ हो जाती हैं, तो वो सब दूर रेडियो ही करता हमारे लिए।
1: जी अच्छा, ये तालीमी मैदान में किस तरह से अहमियत रखता है? आजकल के नौजवान हैं उनको किस तरह से बेदार करता है रेडियो, इसके बारे में
0: हाँ,
1: बताइए।
0: रेडियो तालीम की बेदारी में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। रेडियो ने तालीम रेडियो के ज़रिए हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलता है। बहुत सारी जानकारियाँ जो हमें और आपको घर बैठे नहीं होती हैं, वो एक रेडियो ही पहुँचाता है। उसके ज़रिए लोग अब मुख्तलिफ जगहों पर पहुँचते हैं, अप्लाई करते हैं, जगहें निकलती हैं। कुछ किसानों को रोज़गार मिला, उन्होंने बीज क्या बोना, ये तमाम मौसम, बहुत सारी जानकारियाँ रेडियो के ज़रिए मिलती हैं, जिससे कि रोज़गार भी मिलता है और नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका
1: यानी
0: मिलता
1: कि
0: है,
1: उन्हें अहम मालूमात हासिल
0: मालूम
1: होती है जो
0: है।
1: मार्शे में जो
0: हाँ,
1: कुछ हो रहा
0: और
1: है।
0: तालीम में इजाफा होता है,
1: जी
0: नई नई बातें वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट

0: लोग आते हैं, वो बताते हैं, सीनियर टीचर्स आते हैं, वो जानकारी देते हैं, वो तालीम से मुतालिक बहुत सारी बच्चों तक पहुंचती है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में रेडियो साबित होता है।
1: जी बहुत अच्छे आपने कहा डॉक्टर साहब। और अक्सर लोग कहते हैं भाई अब तो ये मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, एआई का ज़माना है, अब इसमें मोबाइल रेडियो की क्या अहमियत है? तो मैं कहना चाहता हूँ ये कि आज के दौर के अंदर जो आज का जदीद तरीके याफ्ता दौर है उसमें रेडियो की अहमियत बहुत ज़्यादा है। देखिए हम कह रहे हैं कि आज जब सुबह सवेरे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ऑन करते हैं या दुकान पर जाते हैं, खेत पर रेडियो साथ ले जाते हैं अफराद। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म आली जनाब इज़्ज़त मआब नरेंद्र मोदी साहब मन की बात का जो प्रोग्राम शुरू करते
0: जी
1: हैं तो वो प्रोग्राम करोड़ों भारतीयों तक रेडियो के ज़रिए सुना जाता है।
0: सुना जाता।
1: और मैं ये बताना चाहूँगा नासिर साहब, देखिए कि जो पुराने लोग हैं वो जब कमेंट्री सुनते थे इस पे रेडियो पर, तो आज भी उनका जो कमेंट्री में रेडियो पर सुनने का मज़ा है वो एक अलग ही
0: अलग
1: अंदाज़,
0: ही
1: एक
0: है
1: अलग ही
0: जी।
1: लुत्फ़अंदोज़ होता है। मोबाइल की स्क्रीन बंद हो सकती है, इंटरनेट की दुनिया ख़त्म हो सकती है, मगर हवा में तैरती हुई आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होती।
0: ये
1: इसलिए कहा गया है
0: एक, यहाँ मैं कहना चाहूँगी, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है सामीन का और रेडियो का, जो सिर्फ समातों पर मबनी है,
1: जी
0: और हमारी ये दुआ है कि ये रिश्ता हमेशा कायम
1: हाँ
0: रहे।
1: कायम रहे।
0: आप इसके बारे में आप बताइए हिलाल साहब। और
1: देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आपातकालीन के दौर में भी
0: जी
1: रेडियो ने हमें बहुत साथ निभाया है। जैसे मान लीजिए कोई कहीं जाना है और कहीं मान लो जंग चल रही है
0: जी
1: तो आदमी नहीं जा पाता है और नहीं कहीं खबर नहीं पहुंच पाती है। मान लो कोई खत आ रहा है लेकिन खत नहीं आता, लेकिन रेडियो की आवाज़ आ जाती है
0: जी
1: तो सूचना हमें और जो खबर है वो रेडियो के माध्यम से मिल जाती है। और देश की जो आबादी आधी आबादी है यानी कि महिलाएं, जैसे आज के समय में आप देखते हैं कि महिलाएं स्थिति लिखती हैं सीरियल,
0: जी
1: लेकिन एक वक्त वो होता था जब रेडियो पे आते थे
0: ड्रामे आते थे।
1: कार्य तो वो भी ध्यान से सुनती थी। एक समय होता था, एक टाइम होता था, एक वक्त ऐसा होता था कि उस समय कार्यक्रम आएगा तो महिलाएं घर की सारा काम निपटाया और फिर रेडियो ऑन करके बैठ गईं। तो वो दिलचस्पी पहले भी हुआ करती थी, लेकिन आज भी रेडियो अपनी आवाज़ के जरिए लोगों के दिलों पर राज कर रहा है और यही वजह है कि रेडियो ने अपनी मकाम को बनाए रखा है।
0: नासिर साहब आप ये बताइए कि माशरे में शऊर की बेदारी करने में रेडियो कितनी अपनी अहमियत रखता है, यानी कि लोगों में शऊर बेदार करने के लिए क्या इसकी अहमियत है?
1: देखिए हमारा माशरा जो है उसमें मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ कौम हैं, मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले हैं, सबका अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, लेकिन रेडियो की सोच जो वो एक होती
0: एक
1: है,
0: ही है।
1: एक ही है, जो मैसेज आएगा वो सबकी नियत आएगा। माशरे में मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग ख्यालात के होते हैं, अलग अलग जहन के होते हैं, अलग अलग धर्म के मज़हब के भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, लेकिन रेडियो एक ऐसा है जो हमारे माशरों को एकजुट करता है। जो सही पैगाम, जो सही मैसेज है, जो सही खबर है वो
0: वही
1: रेडियो के
0: पहुंचाता
1: जरिए
0: है।
1: हमारे तक आती है, उससे हमारे माशरे में जो गंदगी फैल रही है उसे दूर किया जाता है। जब लोग सुनते हैं और आगे मैसेज जाता है कि भाई वो तो ये बता रहे हैं बीबी से लंदन ने बताया या वहाँ से ये खबर आई या उस रेडियो स्टेशन से ये आई, तो उसको सामने रखते हुए जो हम झूठी मनगढ़ंत खबरें थी उससे बचते हैं और माशरे की जो गंदगी वो ख़त्म होती है और जो सही मैसेज है वो आ जाता है वहाँ पर हमारे
0: जी
1: पास।
0: और अभी हाल में ही हमने जब कोरोना का दौर चल
1: कोरोना
0: रहा
1: कॉल
0: था,
1: में
0: कोरोना
1: जी
0: के दौर में, तो उस टाइम पे भी रेडियो ने बहुत अहम
1: बहुत अहम भूमिका निभाई।
0: भूमिका निभाई थी। और जब तफरी के सारे जरिए ख़त्म हो चुके थे हमारे
1: तमाम
0: तक,
1: चीज़ें खत्म हो
0: तो
1: चुकी,
0: एक रेडियो ही एक ऐसा वाहिद जरिया था जिससे हमें सही
1: सही
0: खबरें
1: मैसेज, सही पैगाम आ रहा था
0: पहुंच
1: हमारे
0: रही
1: पास
0: थी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे ऐसी वक्त होता है जिसमें आपातकालीन जिसे कहते हैं इमरजेंसी वाला वक्त, उसमें रेडियो बहुत अच्छी
1: बहुत
0: तरीके
1: मददगार साबित
0: से
1: होता है।
0: ये फायदेमंद। आप बताना चाहेंगे इस बारे में कुछ?
1: आपने सही कहा, कोविड-19 के महामारी के दौरान भी कई राज्यों में रेडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा दी गई थी, क्योंकि उस वक्त एक रेडियो ऐसा माध्यम था जो आसानी से अपनी आवाज़ अपनी पैगाम को पहुंचा
0: लोगों तक पहुंचा रहा था।
1: रहा था। आप देख रहे थे कि पूरी तरह से कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन था, लगा था और देश में अफरा तफरी थी और सब जगह पर दिक्कतें आ रही थी, लोग पद यात्रा कर रहे थे और उन्हें रोका जा रहा था और क्वारंटाइन करा जा रहा था। तो ऐसे दौर से भी हमारा रेडियो गुजरा है और अपना पैगाम उसने दिया है, ये एक बड़ी बात है।
2: शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो का अहम किरदार रहा है
3: जी।
2: अब इसके अलावा मनोरंजन क्षेत्र में भी
3: जी
2: अपनी जगह अच्छी बनाई है, क्योंकि पुराने गीत हो गए, लोक संगीत हो गया, नाटक, कविताएं और श्रोताओं से जुड़ी लाइव बातचीत लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। एफएम रेडियो ने युवाओं के बीच नई लोकप्रियता हासिल की है। रेडियो समाज को जागरूक करने का भी एक अहम रोल अदा करता है। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, मतदान और सामाजिक एकता जैसे विषयों पर रेडियो कार्यक्रम लोगों को जागरूक करते हैं। इस प्रकार तकनीक के लगातार बदलते दौर में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता बनाए हुए है।
3: यानी कि जैसी कि हंगामी कोई सूरत हाल है, उसमें भी रेडियो अपनी जगह पे कायम है और अपनी अहम रोल अदा करता है। और
1: मैडम, मैं कहना चाहूँगा सिर्फ रेडियो से भी बात चल रही है कि COVID-19 का जो दौर था उसमें रेडियो का किरदार बहुत मुसल्लम रहा। तो सिर्फ ना कि COVID-19 के पीरियड में, बल्कि उससे पहले हम देखें आज़ादी के वक्त में भी रेडियो ने एक बहुत ही अच्छा रोनुमा किरदार अदा किया है। मुझे ध्यान आ रहा है कि जब हिंदुस्तान हमारा मुल्क गुलाम था और आज़ादी की चिंगारी को हवा देने के अंदर रेडियो का बहुत बड़ा किरदार रहा है। और मैडम, जब 15 अगस्त
0: बोस ने भी रेडियो में ही के जरिए एक नारा दिया था जो बेदारी पैदा करने का था, वो बेदारी रेडियो के जरिए हुई है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
1: और 15 अगस्त 1947 की रात को जब आज़ादी की खबर पूरे मुल्क में फैली तो उसका वाहि जरिया, सबसे पहला जरिया रेडियो था, और रेडियो ही हम तक आज़ादी की आवाज़ तक पहुँचाने का गवाह बना। और मैडम, मुझे ध्यान आ रहा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि उस वक्त चौपालों पर, चौराहों पर, छप्परों के अंदर एक रेडियो के इर्द गिर्द लोग बैठकर जमा हो गए और अपने बदलते हुए मुस्तकबिल को बहुत बगौर सुन रहे थे।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा कि अभी जैसे बात की धीराल साहब ने कि टीवी है, इंटरनेट है, AI है, तो मुझे बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन याद आ रही है। टीवी हमें दिखाता है
3: जी।
1: और मोबाइल हमें उलझाता है, लेकिन रेडियो हमें महसूस कराता है।
3: बिल्कुल और ये हकीकत है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो कभी कभी वो भी
0: गलत
3: होता है, लेकिन जो हम रेडियो के जरिए सुन रहे हैं वो हमें उम्मीद होती है कि हम तक सही
0: पैगाम आएगा।
3: क्योंकि अब रेडियो के भी अब 90 साल हमारे उसके पूरे होने वाले
0: हैं, जा रहे हैं।
3: तो मुस्तकबिल में हम रेडियो का क्या मकाम देख रहे हैं, आप बताइए।
0: देखिए, रेडियो का मकाम पहले भी ऊपर था माशाल्लाह, और आज भी ऊपर ही है। और मैं ये मानता हूँ अपने तौर से, चाहे कितनी भी चीज़ें आ जाएँ, जो रेडियो का मकाम पहले था वही और इजाफा हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी, लेकिन डाउन नहीं होगा, क्योंकि लोग इसे पसंद करते हैं। हाँ, इसकी सच्चाई पे यकीन रखते हैं
3: जी। और अभी इसका एक जरिया ये भी है कि हम मोबाइल में भी अपने रेडियो ऐप
0: FM के जरिए
3: सब कुछ रेडियो ऐप के जरिए भी
2: और मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं।
3: तो मतलब हर घर में, यानी कि हमारे हाथ में रेडियो आ गया।
0: हर घर में आ गया। अगर घर में 5 लोगों के पास मोबाइल है तो 5 रेडियो घर में मौजूद है,
2: हर जगह रेडियो है।
3: आप इत्तेफाक रखते हैं इससे?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जहाँ सिर्फ ये बात चल रही है FM या मोबाइल के अंदर रेडियो की, तो जहाँ रेडियो ने मुख्तलिफ मैदानों के अंदर अपना किरदार अदा किया है, तो वहीं एक सबसे बड़ा किरदार जो मुझे महसूस हुआ वो ये, ख़ास उम्र के अंदर एक लोगों की अल्जाइमर की, तो जो लोग, जो पुराने लोग हैं हमारे, जो बुज़ुर्ग हैं, तो ये रिसर्च से भी साबित हो चुका है कि उन लोगों को, जो लोग रेडियो से वाबस्ता रहे, रेडियो को सुनते हैं, तो उनकी जहानत के अंदर कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है और वो बीमारी दूसरे लोगों की बनिस्बत कम हुई है। इसकी वजह यह है, जब हम कुछ रेडियो सुनते हैं तो हमारे जो जहन है उसके इस मुतालिक तखयलात, उससे मुतालिक मुसविरात और तस्वीर बनाना शुरू कर देता है, जो यकीनन इंसान की जहानत को में इजाफा करती है।
3: यानी कि जहन में हम उस तरीके की एक
1: बिल्कुल वो बच्चे
0: तस्वीरें
3: तस्वुर
0: कर लेते हैं।
3: हाँ,
1: दिमाग में कहीं ना कहीं वो है ना,
0: तस्वीर तस्वुर करके सामने आ जाती
2: है, तस्वीर बना लेते हैं,
1: तो इससे जो है यकीनन जो है जहानत में इजाफा होता है, उसकी मैना IQ बढ़ती है। तो जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि रेडियो का मुख्तलिफ अंदाज में किरदार, तो सिर्फ जैसे भी मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि मुल्क की आज़ादी के अंदर रेडियो ने अपना एक बहुत ही अच्छा किरदार और गवाही का सबूत दिया, तो न सिर्फ मुल्क की आज़ादी के वक्त, बल्कि जब हम देखें 1965 में चीन से हमारे मुल्क की लड़ाई हो, या फिर 1971 की जंग हो, उस वक्त जब हमारे देश के सपूत, हमारे नौजवान सरहद पर लड़ाई लड़ रहे थे, तब उसमें एक उनके अंदर जो एक मायूसी पैदा हो गई थी, उस मायूसी को दूर करने के लिए जो हुब्बुल वतनी के और जज्बाती नगमात थे, मसलन के ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जैसे नगमात रेडियो पर सुना

0: तो सामयीन किताबें जल सकती हैं, वीडियोस जो एक हमारे स्टोरेज का बहुत बड़ा सरमाया है वो डिलीट हो सकता है, लेकिन
1: कहूँगा कि जैसे रेडियो में कार्यक्रम आते हैं, जैसा आप होस्टिंग करते हैं, तो हमने कई बार बच्चों को देखा है उनकी मिमिक्री करता हुआ, जैसा आज के समय में सुनील ग्रोवर हैं,
0: जी
1: मिमिक्री करते हैं, चाहे कोई भी एक्टर हो उसकी ऐसे टू कॉपी करते हैं मिमिक्री। तो रेडियो के जो होस्ट होते थे उनकी आवाज़ को कॉपी करते हुए मिमिक्री करते
0: सारे
1: थे,
0: जो बहुत काफी दुनिया में मकबूल मशहूर हुए
1: तो
0: हैं
1: बच्चे भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ को
0: और
1: लेकर
0: बच्चे
1: के,
0: उनकी कॉपी करते
1: कॉपी करते
0: हैं।
1: हैं, कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसे ही सीखते हैं। तो ये एक तहजीब है, जैसे देख रहे हैं वैसा सीख रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा और बच्चों को मैंने थोड़ा सा मोटिवेट किया कि आप जो है लगे रहो, आगे बढ़ते रहो।
0: यानी कि उनकी
1: उसने,
0: सीखने की सिंफ में इजाफा
1: हाँ,
0: हुआ होगा।
1: उसने हमें सुनाया कैसे पढ़ते हैं उर्दू रेडियो पे, हेलो, तो अच्छा लगा इस तरह से। थैंक यू।
0: सामीन, अभी आपने हमारे सारे मेहमानान की जो राय थी, जो मशवरा था रेडियो से मुताल्लिक, वो सुना, और इसके नतीजे के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रेडियो हर दौर का सच्चा साथी है। इसने इंसान को इल्म, तफरी, शऊर दिया है। जदीद ज़राए होने के बावजूद तफरी के, रेडियो की अहमियत कम नहीं होगी, बल्कि आज के भी लोगों के दिलों में रेडियो कायम व दायम है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी ये मकबूलियत हमेशा कायम रहेगी। आप सभी मेहमानों का, जनाब हिलाल अकबर साहब, जनाब रईस साहब, जनाब नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी राय से हमारे सामीन को नवाजा। शुक्रिया। अब अपनी मेज़बान मारिया खुशनूत को इस मुबाहिसे को ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए।
2: अभी आप सामात फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से नशर किया जा रहा था। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10 बजने को है। अब प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर।

कार्यक्रम का पहला गीत सुनने से पहले कीजिए कबूल आपकी रेडियो दोस्त जवेरिया का प्यार भरा नमस्कार। फरमाइश करता नरेन नेताम कुसुम नेताम गिरांग बंगबुडवा पथरिया से, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी, सर्वोच्च कमरावती महाराज से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शुएब खान, मुश्तफा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधी भाग अकोला से रमेश कटनकर और विशाली कटनकर, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, मेन रोड तेलारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रिहान, समरीन, माहनूर, बीज नमूरा दवा से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान, डॉक्टर हुकुम सिंह और राजेश सक्सेना जी।

आज अलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल वर्मा, ज्योति अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। गांव विट्ठल उमर खीर से गंगाधर पोपलवाट, सम्यंग पोपलवाट, प्रियंका पोपलवाट, लक्ष्मी पोपलवाट, सौरीत पोपलवाट, उत्तम जमधांडे, वाकोडीकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा दास साहू, मनकारा मंदिर बीरिय कॉलोनी करगेना बरेली उत्तर प्रदेश से बैनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितीश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, रौनक शगुन सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथक। सरगुजा मेन पट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, अल्लाह आसमा बेलदार। आप सभी ने अनुरोध किया है मोम की गुड़िया का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के अनुरोध पर जातुका किशनपुर से आलम दिलकश शबाना नास रिजवान राही इमरान राजा आलम शेख चांदनी नास मौला बारादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफा साहब सईद भाई मंसूरी राशिद भाई मंसूरी फौजिया रोशनी असद भाई बहन फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार योगेश मालाकार सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार झंझोरिया गीता रानी झंझोरिया गगनदीप झंझोरिया और बेबी आरजू झंझोरिया मुताला महाराज से विजय सुरलकर रतनमाला आरती गोरी ओम वांडी खाम गांव से अंता वांडे और रमेश्वर वांडे बिलराम गेट कासगंज से अहम असलम सैफी जेबुन्निसा बेगम अक्रम सैफी और आबाद खान कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी मोहम्मद फरहान इदरीसी परी महल कासगंज से आबाद खान नबील खान आरिफा खान इल्मा खान असलम सैफी गंज जुडवारा से शमसुल कमर और इरफान खान बेरिंडी से हुकुम करमरकर सुनीता करमरकर हार्दिक करमरकर प्राची करमरकर और तनु करमरकर खमरिया बिलासपुर से साबित खान सावित्री देवी धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान आजिया खान सिमरन खान रूमा खान बॉबी खान शमा खान विक्की खान बुशरा खान और आसिम खान जिला अस्पताल के पास से गजल खान शमी परवीन शमशद अली अजम गुलफशा शहनाज बाबू अंसारी रजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर को फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का

आप सुन रहे इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है आरजू। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का। फरमाइश करता आप सभी ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रूट मालपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद, नीतू वेद, जिला हिंगोली महाराज से शाजी बोट के, श्रीमती नंदा बोट के, हनुमान सारिका, सुरेखा कुमारी, अरवी तन्वी और समझ बोट के परिवार, वकोंडी ता कट्ठमपुरी महाराज से उत्तम जमधाड़े, सौरा जमधाड़े, आत्माराम असोले, ललिता असोले और समस परिवार, ग्राम हरनगला मंदिर के पास स्वार से नब्बन खान, इब्बन खान, नाजिम खान, सलमान, शाहरुख खान और आरिश खान, पटियाली रोड गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से पप्पू भाई बिजली वाले, अफसाना बेगम, मेजबी शेख एम फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम और मिर्ज़ा नसरीन बेगम, ग्राम घाटमपुर से राम भजन सैनी, हरप्यारी सैनी, राजीव सैनी, संजय सैनी, मुकेश सैनी, आशा सैनी, पूजा सैनी, अंशिका सैनी और राम प्रकाश सैनी, छत्रपति सभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, ढाड़की रोड उमर खेर से भाई रज्जा खां, शबाना बेगम, आसमा परवीन, जावेद खां और आसिया परवीन, जिला मुरादाबाद बस्तूर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय आंचल, आकांक्षा, आकाश, विक्की, छवि, दक्ष, रुद्र सैनी और हीरावती देवी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजबीय, राधिका गजबीय, बेबी अनिष्का तमनवीय, तेलंगाना भोगीर से मोहम्मद बहारुद्दीन, यूसुफुद्दीन, फजान फहीम, आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है आरजू।

आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर से आपके अनुरोध पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त जवेरिया। कार्यक्रम का अगला गीत फरमाइश करता आप सभी जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान, इंशा खान, मेहरनगर उमर खीर महाराज से अभिजीत गवड़कर, राय श्रीमती सरिता गवड़कर, प्रिंस एकाश गवड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धार्थ गवड़कर और प्रणीता गवड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवड़कर, श्रीमती वैशाली गवड़कर, श्वेता सुमित गवड़कर, कुमारी धोनी गवड़कर, एरोड्रम थाना वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्जे, संजना परी खर्जे, ललिता नारायण खर्जे, इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहाँ, डब्लू नूरजहाँ, सईद नूरजहाँ, वसीम नूरजहाँ, वलीउल्ला नूरजहाँ, राजनाथ गाँव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और अदीबा तिवारी, ग्राम चौहलदा बागपत से संजय डिंगड़िया, नमन मुस्कान और कुणाल, रहमतनगर छप्परवाली मस्जिद मुरादाबाद से बाबू अंसवारी, शहनाज अंसवारी, आफरीन अंसवारी, सुमैया अंसवारी, मेरीन सिमरा, अब्दुल रहमान, हाजी गफ्फार खां, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता।

कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत सुनने के फरमाइशमंद हैं आप सभी। करुला मुराद आवाज से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नवेद खान, सिंधोली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, मैसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख, कोआद बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, नूर महल मैसौल से हुमेरा नास, सुमेरा नास, अभिया नास, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुसम्मिल बाबू, जापरूनता अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजनन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, कुमारी साध्वी जोशी, मौला अफगानान शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम अब्दुल गनी, अलमीर जन्नत, आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है दोस्त।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के अनुरोध पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम। आपके अनुरोध पर ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 10:30 हुए हैं। आप प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित

0: होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अक्ती तिहार के पावन दिन मा उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
0: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
0: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
0: विलेज तहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
0: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में, और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
0: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
0: जी,
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
0: जी,
1: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
0: जी,
1: तो शुरू करें?
0: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
1: जी
0: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
0: जी,
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
0: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
0: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
0: जी,
1: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
0: जी,
1: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओं, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष

0: किसे कहते हैं?
1: 800-400-5559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश,
0: लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता।
2: क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
3: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर।

0: रंग बिरंगा सुंदर मोर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी
0: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: खुशियां बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
5: हाँ।
6: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू। इसे काट।
7: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक

0: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे।
1: अरे अटकू भाई, वो देख, कटहल का एक पेड़।
2: अरे वाह, क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
0: वो उसे काटने लगे।
3: काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
2: अच्छा ठीक है,
1: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
0: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
4: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
1: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
0: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
5: अरे वाह अटकू मटकू,
0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
6: पेड़ हमारे
1: दोस्त हैं।
6: जीवन में हरियाली लाओ,
7: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
8: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार।
10: उमंग उमंग उमंग उमंग।
11: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है और इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं प्रथम सभा के कार्यक्रमों को। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज रहे हैं और ये समय है हमारे अगले कार्यक्रम धरोहर का। इन दिनों आप तक पहुंच रहा है धारावाहिक जिंदगी के आईने में। आज सुनिए इसकी कड़ी संख्या 8 का प्रसारण।
1: जिंदगी के आईने में सभी श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। जिंदगी सांसों की सरगम पर एहसासों की रवानी, कुछ पाने कुछ खोने की कहानी। समय इंसान को बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ हाथों से फिसल भी जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम कुछ पल ठहरते हैं। जिंदगी के आईने में बीते हुए लम्हों को निहारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लबों पर कभी मुस्कुराहट थिरकती है तो कभी आंखों की कोर से आंसू भी झांकते हैं।

0: श्रोताओं, आज आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से हम कराने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रामपुर का नाम उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अपनी शायरी के जरिए रोशन किया है, पहचान बनाई है रामपुर की। और जब जब रामपुर का जिक्र आता है, अजहर इनायती साहब का नाम हर फील्ड में बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। अजहर साहब आज हमारे साथ हैं, ये खुशकिस्मती है हमारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो पर आप अपनी शायरी के जरिए हमारे श्रोताओं से मुखातिब होते रहे हैं अजहर साहब, आज बात आपकी अपनी जिंदगी की और आपकी अपनी शायरी की हम श्रोताओं के लिए करेंगे आपसे। शायरी का शौक किस उम्र से हुआ?
1: असीम साहब, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और ऑल इंडिया रेडियो का भी कि उसने मुझे यहाँ आज मधु किया इंटरव्यू के लिए। मैं तकरीबन 15 अप्रैल 1946 में
0: जी
1: रामपुर के एक मुअज्जज़ घराने में पैदा हुआ। मेरे वालिद सफदर अली खां और मेरे दादा महमूद अली खां का शुमार अपने वक्त के पढ़े लिखे लोगों में
0: जी
1: और शहर के शरीफ लोगों में हुआ करता था। 1964 में मैंने रजा डिग्री कॉलेज रामपुर से बीए किया। उसके बाद मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चला गया और 1966 में मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। यहाँ रामपुर यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद एक बहुत बड़े मशहूर क्रिमिनल साइट के एक वकील थे, असलम खान साहब, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, उनके जूनियर की हैसियत से यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन तकरीबन 2 साल ही प्रैक्टिस कर पाया था कि उसके माहौल में मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। वो झूठ बोलना जो वहाँ जरूरी था वो मेरे बस का नहीं था,
0: एडजस्टमेंट नहीं हो पाया।
1: और मेरी शायराना तबीयत भी वहाँ ज्यादा साज नहीं कर सकी। इसलिए 2 साल के बाद मैंने वकालत के पेशे को अल्लाह हाफिज किया और अब साबिक वकील की और साबिक एडवोकेट की हैसियत से मैं हूँ, शायरी है और मुशायरे हैं। मैंने ये भी अर्ज कर दूं कि शायरी का आगाज 12 साल की उम्र से किया और ये 1958 की बात है जब मेरी उम्र 12 साल की थी। उस वक्त मेरे अंदर का
0: शायर बेदार हुआ
1: वो, और उसने कुछ कहने पे मजबूर किया। और उस वक्त रामपुर की फजा बड़ी अदबी और यहाँ का माहौल बड़ा इल्मी माहौल था। बड़े बड़े लोग उस वक्त जिंदा थे, मिसाल के तौर पे मौलाना अर्शी
0: जी,
1: इसाकुन नबी खान साहब, मौलाना वजीउद्दीन खान साहब, मौलाना दायम जलाली साहब, ये बड़े बड़े अकाबिर लोग उस वक्त मौजूद थे। शायरों में शादारफी साहब, मशर इनायती साहब, राजदानी साहब, जलील रामपुरी, नामानी साहब, सहर साहब जैसे लोग मौजूद थे। तो इस पूरे माहौल ने मुझे शायरी की तरफ मुतवज्जो किया और आज तक उस जुनून में मुब्तला हूँ।
0: अच्छा, जब वो शुरुआती दौर था अजहर साहब आपका, तो फैमिली में उस तरह का कोई शायराना तबीयत का था शख्स या फिर उसको पसंद करने वाले लोग थे? आपकी तरबियत फिर उसी तरह से आगे हुई?
1: असीम साहब, मेरे पापा और मेरे दादा इन दोनों में से कोई शायर नहीं था, लेकिन मेरे परदादा नियाज अली खान जब्त, जो स्टेट के जमाने में यहाँ मौजूद थे, वो शायर जरूर थे। तो मुझे बाप दादा से शायरी वर्षे में नहीं मिली, परदादा से मिली।
0: तो आपने जब पहली बार शायरी की, घर से कैसा रेस्पॉन्स मिला, कैसा इनकरेजमेंट मिला?
1: पापा ये चाहते थे कि मैं पहले पढ़ूं, बड़ी डिग्री हासिल करूं और उसके बाद शायरी की तरफ आऊं। तो वो मेरी शायरी से कुछ ज्यादा खुश नहीं रहते थे। और हमेशा ये तकाजा होता था, कोई अगर बुलावा आ जाता था किसी मुशायरे का शहर से, तो वो उसको बुरा भला कह के वापस कर देते थे कि यहाँ कोई शायर वायर नहीं रहता है। मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है, बड़ा आदमी बनाना है, शायर नहीं बनाना है। क्योंकि उनके जहन में ये था उस वक्त कि अगर शायरी में पढ़ गए तो ये पढ़ाई भी इनकी पूरी हो सकेगी और ये बेकार से आदमी होकर रह जाएंगे। अब मुझे जब मैंने डिग्रियां हासिल कर ली और शायरी में भी एक मकाम हासिल कर लिया तो मुझे पापा की बहुत याद आती।
0: एक सुनहरा दौर था उस वक्त जब आपने शायरी शुरू की अजहर साहब, तो 12 साल की उम्र के बाद ये शायरी का सफर किस तरह से परवान चढ़ता गया?
1: जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फिक्र में, सोचने के अंदाज में तब्दीलियां आती चली गईं। यहाँ बड़ी तहरीकें, बहुत बड़ी तहरीक आईं, एक तरक्की पसंदों की तहरीक और एक जदीदियत की तहरीक। इसने बहुत कुछ उर्दू शायरी को दिया। तरक्की पसंदी की तहरीक में बड़े बड़े लोग पैदा किए और उसने नज़्म के सिलसिले में बहुत बड़ा काम किया। गज़ल को तो उस दौर में कोई ज़्यादा फ़रोग नहीं मिला, गज़ल के वो एंटी तहरीक थी और कम्युनिज्म के की फसील से वो एक आवाज़ उठी थी और वो उसने उर्दू को जिंदगी से करीब करने का और गरीब लोगों से जुड़ने का उर्दू अदब को और उर्दू नज़म को सुनहरा मौका दिया। उसमें बड़े बड़े नाम भी सामने आए। फिर इस तहरीक के ख़त्म होने के बाद उस दूसरी तहरीक ने बड़ी ने जन्म लिया, जदीद तहरीक। उसने गज़ल के दामन को थामा और गज़ल को एक पूरे पैरहन को और उसके डिक्शन को तब्दील कर दिया और एक नया लहजा और एक नया अंदाज जो गज़ल की फरसूदगी थी उसको दूर कर दिया। तो मैंने तकरीबन इन दोनों तहरीकों के मंजर वो देखे और इनसे कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश की है।
0: आपने अपने नाम के साथ इनायती जोड़ा है और जाहिर सी बात है कि उस्ताद और शागिर्द की परंपरा रिवायत कविता में भी है और शायरी में भी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: मैंने जब 1958 में अपनी शायरी की इब्तिदा की तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि एक बड़ा नाम था शायरों में यहाँ के एक मुसलिम सबूत उस्तादों में महशर इनायती साहब, वो मेरे रिश्ते में बहनोई भी होते थे। तो मैंने उनकी शागिर्दी इख्तियार की और उन्हीं के जेर साया रह के शायरी मेरी परवान चढ़ी। वो दाग स्कूल की एक सुनहरी कड़ी थे, जबान बयान के बड़े पारक और जानने वाले थे, तो उनसे बहुत कुछ हासिल करने का मौका मिला। और ये असातिज़ा के यहाँ साथ रहने से एक बड़ी तरबियत होती है उन नई नस्ल की। और महशर साहब के जेर साया बहुत से लोगों ने शायरी में आगे बढ़ने का उनको मौका मिला।
0: आप हमारे साथ हैं, एक खास अंदाज के लिए आपकी पहचान है और लोग बड़ी इज्जत करते हैं आपकी। हम चाहेंगे कि अपनी मनपसंद कोई गजल आप हमारे श्रोताओं की नजर करें।
1: मैं पेश करता हूँ जिन शेर, मुलाहिज़ा करें कि सादा सी गजल जो मेरी पहले की की गजल है, उससे फिर मैं आऊंगा कि कैसे कैसे बतजीज इर्तिका हुआ शायरी का। कोई मौसम ऐसा आए उसको अपने साथ झुलाए।
0: क्या बात है।
1: कोई मौसम ऐसा आए उसको अपने साथ झुलाए, मुझे सुने कि हाल है दिल का जुगनू जैसा जलता जाए बुझता जाए।
0: हाल है दिल का जुगनू जैसा जलता जाए बुझता जाए।
1: लोगों से तारीफ सुनी है उससे मिलकर देखा जाए। पांव है जिनके वो गिरते हैं बादे सबा क्या ठोकर खाए। शेर ये भी खास तौर से मुलाहिज़ा करें कि बीते लम्हे कुछ ऐसे हैं खुशबू जैसे हाथ ना आए। आज भी दिल पर बोझ बहुत है, आज भी शायद नींद ना आए। कोई मौसम ऐसा आए उसको अपने साथ जुलाए। अब मैं आपको उस एक और अंदाज की गजल सुनाता हूँ कि जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ती है शायरी की,
0: सफर आगे बढ़ता है।
1: मतलब करें कि फिक्र में हैं हमें बुझाने की आंधियां मीर के जमाने की। मेरा घर है पुराने वक्तों का, उसकी आंखें नए जमाने की।
0: क्या बात है, क्या खूब।
1: मेरा घर है पुराने वक्तों का,
0: उसकी आंखें
1: नए जमाने की। एक मंजर था याद रखने का एक तस्वीर थी बनाने की। उसे सुने कि अपने अंदर का शोर कम तो हुआ खामोशी में किताब खाने की।
0: बहुत खूब।
1: अपने अंदर का शोर कम तो हुआ खामोशी में किताब खाने की। और अगले लोगों के साथ खत्म हुई वो जो एक रस्म थी निभाने की। एक खंडर था मेरी विरासत में, एक अफवाह थी खजाने की।
0: क्या बात है।
1: एक खंडर था मेरी विरासत में, एक अफवाह थी खजाने की। जागने में गुजार दी अजहर वो जो रातें थी नींद आने की।
0: अक्सर कभी ऐसा हुआ है अजहर साहब कि कोई बात जहन में चल रही हो और नींद आपकी आंखों से बहुत दूर हो।
1: ये शायरी में
0: अक्सर होता है,
1: फिक्री शेर में अक्सर ही होता है। तुम बेशतर रात ही गुजर जाती हैं इसमें, और हम लोगों का जो मुशायरों से वाबस्ता रहे हैं, शायरी से वाबस्ता रहे हैं, उनकी जिंदगी में तो सोना रातों को बहुत कम नसीब होता है।
0: बिल्कुल,
1: इसी ये शेर जो मेरा है ये उसी का अक्कास है। जो अभी मैंने ये मक्ता पढ़ा कि जागने में गुजार दी अधर, वो जो रातें थी नींद आने की।
0: मुशायरे के सिलसिले में आपका हिंदुस्तान में तो लगभग हर जगह जाना हुआ है, आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी बहुत गए हैं, उसके बारे में अगर न जाना जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। सर सर,
1: 1970 से मैंने हिंदुस्तान के मुशायरों में शिरकत शुरू की, और एक वक्त ऐसा गुजरा कि हिंदुस्तान का कोई बड़ा मुशायरा ऐसा नहीं होता था कि जिसमें मेरी शिरकत ना हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उसके बाद तकरीबन 1980 से मेरा फॉरेन कंट्रीज का जाना शुरू हुआ, और ये वो दौर है कि जब हिंदुस्तान से शोरा के उंगलियों पे गिने हुए चंद लोग फॉरेन गए थे। मैं तकरीबन 4 मरतबा अमेरिका का सफर मैंने किया और हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन किया। पाकिस्तान 3-4 मरतबा में गया, मस्कत, बहरेन, दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया, अबूजहबी, शारजा, अलैन, तमाम ममालिक जो थे जहाँ जहाँ उर्दू तकरीबन बोली जाती है, समझी जाती है, और जहाँ
0: पसंद करने वाले
1: और शेर सुनने वाले बैठे हुए हैं, वहाँ वहाँ मुझे मौका मिला जाने का और अपने मुल्क का नाम साथ ले जाने का और अपने शेर सुनाने का।
0: असर साहब, बड़ा अच्छा लगता है जब आपको किसी चैनल पर पढ़ते हुए देखते हैं, सुनते हैं आपकी शायरी को। एक अलग खास अंदाज है आपका और एक अहम मुकाम है आपका। आपने क्या महसूस किया है कि मुशायरे की जो रिवायत थी पहले, किस शान के साथ मुशायरे हुआ करते थे, एक अदब होता था, एक तहजीब होती थी, वो कहीं खोसी गई है?
1: ये बिल्कुल सही बात असीम साहब आपने फरमाई। हम तो बरसों से मुशायरों में शरीक हो रहे हैं। अभी मुझसे पहले इंटरव्यू हो रहा था, वो साहब ने भी वो बात कही, और जितने भी हम सीनियर लोग हैं वो इस बात को बहुत शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो दौर देखा है, वो लोग देखे हैं, वो माहौल देखा है कि जिसमें पूरी तहजीब के साथ मुशायरों में बैठा जाता था, मुशायरों में अदब के साथ बैठा जाता था और अपना कलाम पढ़ा जाता था। अब मुशायरे जो हैं वो तफरी गाह बन गए हैं और वो तहजीब रफ्ता रफ्ता सब खत्म होती चली जाती। उस जमाने में जीनवन फनकार, जीनवन शायर, सचमुच के शायर जिसे मुशायरों में शरीक हुआ करते थे, अनाउंसमेंट भी जिसका होता था तो वो भी बहुत समझ बूझ के होता था। ये नहीं होता था कि किसी मामूली शायर के लिए, जैसे अब होता है, ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाए जाते हैं और उसकी तारीफ में क्या क्या कुछ कहा जाता है, जबकि वो कुछ भी नहीं होता। तमाम रात, अब फन ये है निज़ामत का कि वो तमाम रात नाज़िम बैठ के शायरों के सिलसिले में झूठी बातें कहता रहता है, झूठी तारीफें करता रहता है। उस ज़माने में जीनवन लोग होते थे, जीनवन फनकार होते थे और उनका उसी अंदाज से तारुफ करवाया जाता था। वो कोई ड्रामा नहीं करते थे, कोई कवाली के अंदाज से पढ़ना या गाने का उनका अंदाज नहीं होता था। जो तरन्नुम से पढ़ने वाले होते थे उनका प्योरली मुशायरे का तरन्नुम होता था। जैसे जिगर साहब थे, खुमार साहब थे, शमीम साहब थे, ये लोग मुनफरिद पढ़ने वाले थे, कैफ भवाली थे। अब तो अजीब अजीब अंदाज है, अजीब तरीके से ड्रामे किए जाते हैं, वहाँ पे काला जादू दिखाया जाता है मुशायरों में।
0: अजहर साहब, 1970 से जब से आप मुशायरों में पढ़ने लगे, कोई ऐसा यादगार मुशायरा जो आपके जहन में अभी भी हो, जो आप अपने लिए एक उपलब्धि मानते हो, एक अचीवमेंट मानते हो?
1: मैंने मुशायरों में बहुत दाद ली, बहुत मुशायरे लूटे भी एक ज़माने में, और वो तकरीबन सब बड़े लोगों के साथ और मुशायरों में शिरकत करने वालों के साथ गुजरते हैं। जैसे कैफ भोपाली थे, खुमार साहब थे, ये शमीम साहब थे, ये वो लोग थे कि जो मुशायरे की कामयाबी के बाइस हुआ करते थे, इनसे मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत हुआ करती थी। आज भी कुछ लोग मौजूद हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा दाद मिली वो मुझे जिंदगी में याद रहेगी, ह्यूस्टन का मुशायरा
0: अच्छा,
1: था जी। मैं 90 में पहली मरतबा अमरीका गया था और यहाँ हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, तो ह्यूस्टन में मैंने मुसलसल 7 गजलें पढ़ी और उसके बाद एक मंजिल ये आई कि और की आवाजें आती थी और पूरा मुशायरा, जितने लोग बैठे थे पूरा हाल क्लैपिंग करता हुआ वो खड़ा हो गया।
2: क्या बात है।
1: तो बड़ा बड़ा वो एक अच्छा यादगार मंजर अब तक मेरी आंखों के सामने आता है, तो अपनी कामयाबी पे फख्र भी होता है और बड़ा अच्छा सा महसूस होता है।
0: तरन्नुम से अजहर साहब से अब हम कुछ सुनना चाहेंगे, वो जो उनके दिल के बहुत करीब।
1: मैं आपके हुक्म की तामील

0: मैं कुछ शेर पेश किए देता हूँ। मुलायदा फरमाए के अब ये मेयारे शहरी यारी है,
1: क्या बात है।
0: अब ये

0: बहुत खूब। श्रोताओं, ये खास अंदाज है अजहर इनायती साहब का, जिन्होंने अपनी शायरी के जरिए उर्दू अदब की बहुत खिदमत की है। आपकी कुछ किताबें रजा लाइब्रेरी से शाया भी हुई हैं, उन किताबों के बारे में और जो और आपके मजमूए आए हों उनके बारे में।
1: असीम साहब, मेरा पहला शेरी मजमुआ 1980 में
0: जी
1: खुद कलामी के नाम से आया।
0: अच्छा।
1: व्हाट यू कॉल मोनोलॉग, अपने आप से बातें करना। उसके तकरीबन 9 साल के बाद 89 में अपनी तस्वीर के नाम से दूसरा मजमुआ आया।
0: किस कैफियत की उसमें शायरी रही?
1: उसमें मेरा जो अपना मखसूस अंदाज
0: अच्छा।
1: है वो आपको मिलेगा, पढ़ने वाले उसे जानते हैं।
0: जी,
1: उसके
0: जी,
1: बड़े
0: जी।
1: बड़ा अदबी हलकों में उस पर बड़ा अप्रिसिएशन हुआ।
0: अच्छा,
1: उस पर
0: अच्छा।
1: कितने ही मुझे अवार्ड्स मिले, उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश से भी,
0: अच्छा।
1: बंगाल उर्दू एकेडमी से भी, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अदबी हलकों में बहुत उसको पसंद किया गया। उनके तकरीबन 2004 में फिर झोंका नए मौसम के नाम से एक मजमुआ आया, और 2004 ही में डॉक्टर शहजाद अंजुम ने मेरे शायरी और मेरी शख्सियत के हवाले से एक किताब तरतीब दी, अजहर इनायती एक सुखनवर के नाम से। वो खासी तकरीबन 400 पेजेस पे वो किताब है, और उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बड़े बड़े लिखने वाले शामिल हैं जिन्होंने मेरी शायरी और मेरी शख्सियत से मुतालिक उसमें

हमारे श्रोता सुन रहे थे धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत धारावाहिक जिंदगी के आईने में की 8वीं कड़ी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। अब सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम मन भावन। आज का मन भावन होगा आप श्रोताओं की शब्दावलियों पर आधारित।

तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती है आपकी आज की रेडियो होस्ट सुरिंदर कौर। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अगर आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, आपके दिल में कोई ऐसी बात छुपी है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो लिखकर हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@gmail.com। तो सिलसिला शुरू करते हैं कार्यक्रम की। ये पहली शब्दावली हमें प्राप्त हो चुकी है। आप हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली के हमारे श्रोता लाल मोहम्मद अंसारी साहब। बहुत खूबसूरत सा मैसेज आपने लिखा है कि नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। इंसान की सोच होती है वैसी ही जैसी उसके साथ उसके हित के फैसले होते हैं। इंसान अगर अच्छा सोचता है तो उसके साथ अच्छा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ बुरा सोचता है तो उसके साथ वैसा ही होता है जैसा वो दूसरों के बारे में सोचता है। इंसान अपने आप को कितना भी बड़ा इंसानियत का पुतला बना ले, मगर उसकी सोच उसके किरदार को जाहिर कर देती है। हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को अच्छा रखें, अपने किरदार और अपने अखलाक को ठीक रखें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें और सबके साथ हुस्न सलूक करें ताकि हमारे हित में ईश्वर की तरफ से अच्छे फैसले उतरें। गर्मी के इस मौसम में खुद भी पानी पिएं और मुसाफिरों को भी पानी पिलाएं, पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत सी शब्दावली हम तक भेजने के लिए।

वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ बचपन

ये अगली शब्दावली हमें प्राप्त हुई है बीसलपुर मेहंदी वाले घर से। आप हैं पूनम सक्सेना और विनोद गोबल वाले। आप लिख रहे हैं कि जब हम अपने कामकाज से थके हारे घर लौटते हैं तो कुछ पल शांति से गुजारना चाहते हैं, पर ध्वनि प्रदूषण की वजह से हमारे तन मन को आराम नहीं मिल पाता। शोर से एकाग्रता भंग होने के साथ मानसिक तनाव भी पैदा होता है। प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लाउडस्पीकर की ध्वनि को भले ही निर्धारित कर दिया हो, फिर भी कुछ लोग इसे अनदेखा करते हुए शादी विवाह, जन्मदिन, जागरण जैसे आदि अवसरों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर देर तक बजाते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है। और सरकार को चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक सिर्फ शहरों तक ही नहीं बल्कि गांवों में भी लागू की जा सके। एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या की ओर आपने इशारा किया है और समय समय पर हमारे श्रोता इस ओर इशारा करते हैं, तो हम सभी को मिलकर इस ओर गंभीरता से सोचना होगा। कभी कभी बेमकसद आवाज़ें हमारे कानों तक पहुंचती रहती हैं जो हमारे सुकून को बर्बाद कर देती हैं। हमारे सुनने वालों तक हमारी आवाज़ पहुंच ही रही है और आज के दौर में जहां शांति और सुकून की कमी है, तो ज़रूर से ज़रूर इस विषय पर सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि कुछ सार्थक कदम उठाने होंगे। और देखिए, हमारे आसपास बहुत कुछ अच्छा है जिसे हम सुन सकते हैं और हमें सुनना भी चाहिए। कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जिनको हमें ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए।

कार्यक्रम में ये अगली शब्दावली हमें प्राप्त हुई है मुंबई से। आप हैं अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा। आप लिख रहे हैं, जिनके भीतर धैर्य का समुंदर होता है वो हर तूफान में भी अडिग रहते हैं। जिनके पास ताकत, त्याग की ताकत होती है, उन्हें किसी पद या पहचान की जरूरत नहीं होती। सदियों से एक कहानी चलती आ रही है, वह बोलता रहा, वह सुनती रही। उसके हिस्से आई मर्यादाएं, जिम्मेदारियां और अनगिनत त्याग, पर उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वे जानती थी उसकी चुप्पी भी एक शक्ति है और उसकी ममता भी एक क्रांति है। जब दुनिया ने उसे कमजोर समझा, वह दुर्गा बनकर खड़ी हुई। जब समय ने उसकी परीक्षा ली, वह सीता की तरह धैर्य बन गई। जब प्रेम की बात आई, वह मीरा की तरह समर्पण बन गई। और जब नई सृष्टि की बात आई, वह मां बनकर जीवन का सबसे सुंदर चमत्कार बन गई। नारी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि सृष्टि की सबसे पवित्र शक्ति है। बहुत ही खूबसूरत सा आपने ये संदेश हम तक लिखकर भेजा है। आप मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत से मैसेज लिखने के लिए। वाकई नारी शक्ति एक बहुत ही बड़ी शक्ति है और उसके ऋण को हम कभी भी चुका नहीं सकते।

हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर से मन भावन कार्यक्रम के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा भेजी हुई कुछ शब्दावलियां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मन भवन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आप सुन रहे हैं सुरेंद्र कौर के साथ मन भवन कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगली शब्दावली हम तक पहुंची है जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम के हमारे श्रोता तौफीक अहमद सिद्दीकी साहब और अतीक अहमद मोहम्मद दानिश और हमजा सकलैनी, साथ में हैं गुलशन साहिबा। जिंदगी के बारे में आप कुछ लिख रहे हैं। मन भावन के अंतर्गत आप लिखते हैं कि वो सामने था और हम पलकें उठा ना सके, वो सामने था और हम पलकें उठा ना सके, चाहते थे मगर पास उसके जा ना सके, ना देख ले वो अपनी तस्वीर हमारी आंखों में, बस यही सोचकर हम उससे नजरें मिला ना सके। वैसे तो इस ज़िंदगी में बड़ी शिकायतें और बड़े शिकवे और गिले हैं, लेकिन ये सब कुदरत का करिश्मा है कि वो जिस हाल में रखेगा उस हाल में हमको रहना है। ज़िंदगी है जनाब, जीना तो पड़ेगा, चाहे खुशी हो या गम। ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ कुछ दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन फिर भी इंसान अपने मन को शांत करके इस ज़िंदगी और भीड़ भरी दुनिया में अपने आप को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मजबूत बनाता है। मानो दोस्तों, ज़िंदगी जीने का सबसे आसान तरीका और सबसे सरल उपाय, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि इस किस्मत का और इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी की भी ताला खोल देती है, इसलिए दोस्तों भरोसा रखें, निरंतर प्रयास करते रहें। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ज़िंदगी हर हाल में हंसी और खुशी के साथ बिताएं, एक ना एक दिन ये किस्मत चांद तारों की तरह चमकेगी। बिल्कुल ज़रूर चमकेगी, हमारी कोशिशें ज़रूर रंग लाएंगी, हमें लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

कार्यक्रम में ये अगली शब्दावली हमें प्राप्त हुई है ईदगाह गेट मुरादाबाद शफी अहमद अंसारी साहब और रईस दूला अंसारी साहब की। आप लिख रहे हैं कि मतलब के रिश्ते भी अजीब होते हैं, लोग इंसान से नहीं उसकी हैसियत से मिलते हैं। जब तक पैसा हो तब सभी साथ देते हैं और जब खाली हो तो सब दूर हो जाते हैं। हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है, मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता, अपने साए भी वक्त पर बदल जाते हैं। सच यही है कि दुनिया मतलब की है और हमारा भी इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। वाकई अल्लाह के सिवा हम सभी का कोई नहीं है, ज़िंदगी इसी का नाम है।

कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमें प्राप्त हो रही है त्रिलोकीनाथ राठौर, विजय राठौर, विनय राठौर, विकास राठौर, आकाश राठौर और साथ में हैं शिवांशी राठौर जी। नमस्कार, आप करते हैं और आप लिख रहे हैं तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से। आप लिख रहे हैं कि दर्द कितना खुश नसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। यूँ तो ज़िंदगी में कई लम्हों को जिया है हमने, पर जिसमें सुकून मिला वो बचपन था। जी हाँ, ज़िंदगी इसका भी नाम है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12:05 हो चुके हैं।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है और इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं हमारी प्रथम सभा के प्रसारणों को। कार्यक्रमों की श्रृंखला का हमारा अगला कार्यक्रम है आप सभी श्रोता साथियों का पसंदीदा लोकप्रिय फरमाइशी कार्यक्रम गीत आपके नाम।

कार्यक्रम में आप सभी श्रोता साथियों का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है आपकी रेडियो साथी सुरिंदर कौर। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और आपके बहुत सारे मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं और कृपा करके आपसे अनुरोध यही है कि एक बार में बस एक ही मैसेज कीजिएगा और कार्यक्रम के शुरुआत से साथ में बने रहिएगा, साथ निभाइएगा ताकि आप अपने नाम को सुन सकें और आप अपनी फरमाइशी गीत को भी सुन सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की। फरमाइश हमें लिख भेजी है जलालाबाद वेस्ट के हमारे श्रोता सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने। ग्राम नथाना पंजाब के हमारे श्रोता हरजिंदर जिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। और ये मैसेज आदर्श नगर मलोट पंजाब से हमें प्राप्त हो रहा है। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और साथ में है निवान शर्मा जी। पूना जंक्शन के हमारे श्रोता मस्तानपुरा से लिख रहे हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत। और ये मैसेज मारहरा दरवाज़ा एटा से हमें प्राप्त हुआ है नवी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, साथ में नवेद हसन अब्बासी, राशिद वारसी, सुहेल हसन, अनम और यशव जी का। और इनके साथ में ही मैसेज हम तक पहुंचाया है, नमस्कार और खैरियत पूछते हुए आप हैं सिकंदरा राव के हमारे श्रोता मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश के हमारे श्रोताओं ने, विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त और साथ में हैं चेतन नाटा जी। प्रणाम के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। नमस्कार के साथ आप हैं वारली मुंबई के हमारे श्रोता नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान साहब। गुन्नौर यूपी से हरवेश कश्यप, अर्जित कश्यप, दिव्यांश कश्यप और साथ में हैं गायत्री कश्यप। आपने भी प्यारा सा नमस्कार हम तक पहुंचाया है जी, आपको भी बहुत प्यार भरा नमस्कार। अनारकरी बाजार जगराऊं से आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गाव्या मल्होत्रा। सुबह की राम राम आपने लिख भेजी है जी। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है चंडीगढ़ सिटी के हमारे श्रोता सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी ने। अभिनंदन करते हुए आपका ये मैसेज हम तक पहुँचा है। और ज़िला कासगंज यूपी से जुड़े हैं योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और बेटा सुशांत नायक। राजद्वारा रोड मीठा कुआं रामपुर के हमारे श्रोता आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभय, रिया, आरुष और फिरासत इस कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं। और ये अगला मैसेज ग्राम जाखौत के हमारे श्रोताओं का हम तक पहुँचा है, शंभू दयाल खटक, बिमला देवी खटक, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक जी का। और ये खूबसूरत सा मैसेज नमस्कार के साथ लिख रहे हैं कि आपका पल खुशियों से भरा हो। और अगला मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता है भोपालगढ़ राजस्थान के श्रोता, नमस्कार के साथ आप भी लिख रहे हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा,

आकांक्षिपा और पूजा परिहार जी का ये मैसेज हम तक पहुंचा है। ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के हमारे श्रोता मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह हमें मैसेज कर रहे हैं। और ये अगला मैसेज खैरियत पूछते हुए आप हैं सनाबत के हमारे श्रोता शेख मूसा मोहसिन। और ये अगला मैसेज कोरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से हमें प्राप्त हुआ है। पवन साहू, पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और साथ में हैं दीपिका साहू, नमस्कार के साथ भी आपने इस मैसेज को हम तक पहुंचाया है। और आप हैं बाजार रोड मुगीसापुर के श्रोता मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरुल निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी साहब इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है खैल बाजार पानीपत के श्रोताओं का, नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। भावना मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और इनके पापा जी नानक चंद मल्होत्रा जी, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से आप ही के साथ पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक और साथ में हैं आपके परिवार के सभी सदस्य। तो आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है कार्यक्रम का ये पहला खूबसूरत सा गीत जिसे आप सभी ने पसंद किया है खिलौना फिल्म से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बोल हैं सनम तू बेवफा के नाम से।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए आप सभी की फरमाइशें हमें लगातार मिल रही हैं और आप हैं पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी साहब, आपका हमेशा की तरह एक मैसेज है, सदा खुश रहो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है शाहू नगर यवतमाल के हमारे श्रोताओं ने, राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। और ये मैसेज वैष्णव कॉलोनी सनावत से हमें प्राप्त हुआ है। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री और आपके साथ मिलकर ये मैसेज किया है। जामा मस्जिद रोड गोगावा के हमारे श्रोताओं ने, हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी साहब ने। गांधी समाधि रोड से जुड़े हैं हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मदिया खान, सुभान खान और फिरोज़ खान। और ये मैसेज भटिंडा रोड बंडी डब्वाली से हमें प्राप्त हो रहा है, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग जी का। ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात के हमारे श्रोता रमेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया और कमलेश कठेरिया साथ में हैं, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया और वेद बाबू कठेरिया। और ये मैसेज तुलसी मस्कीन साहब ने हमें पहुंचाया है। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, आप लिख रहे हैं गोवर्धन विहारी कॉलोनी शाद्रा दिल्ली से। और आपके साथ हैं चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशुर इदान खुराना जी। और ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी जी का। नेहरू चौक पैठण से आप हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल, सिया और साथ में जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव जी का। नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता राजा हसन और शाहिद आदिल हुसैन, और आप लिख रहे हैं इस मैसेज को चौराहा गोविंदपुर खुर्द ज़िला मुरादाबाद से। नमस्कार के साथ आप हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हमारे श्रोता राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा और साथ में हैं युवान और आर के राजा जी। और ये मैसेज हम तक पहुंचाया है शाहजी नगर देगलूर ज़िला नांदेड़ महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने, संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे जी ने। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं कार्यक्रम के साथ मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून साहिबा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से कार्यक्रम को सुन रहे हैं और नमस्कार के साथ अपना मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं पीएस हानकर, निर्मला हानकर, विशाल हानकर और आपके साथ मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोहेकर। और ये मैसेज हमें पहुंचाने वाले श्रोता सुरेवाड़ी औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं, आपने ये मैसेज किया है, छत्रपति संभाजी नगर से सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, अंशुमन और ओवी।

जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और हमजा सकलैनी, साथ में हैं गुलशन साहिबा। तो आप सभी श्रोताओं के नाम कार्यक्रम का ये अगला गीत जानी दुश्मन फिल्म से आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं।

कार्यक्रम की अगली गीत की फरमाइश आप सभी श्रोताओं की हमें प्राप्त हुई है। ये मैसेज हमें भेजा है उत्तम नगर दिल्ली के हमारे श्रोताओं ने। कमला रानी बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश हमें लिख रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से। और ये मैसेज है

जसपुर उत्तराखंड के हमारे श्रोताओं का, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिना नूर जी का। आप हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर के हमारे श्रोता अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा और साथ में दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपनी फरमाइश हम तक लिख भेज रहे हैं। और ये मैसेज हमें भेजने वाले श्रोता छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं, पीपर लोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ये अगला मैसेज छत्रपति संभाजी नगर से सूर्यवाड़ी औरंगाबाद के हमारे श्रोताओं ने एक बार फिर मैसेज ये किया है। नमस्कार के साथ सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद, विराज, अंशुमन और ओवी। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपनी फरमाइश हम तक लिख भेज रहे हैं। बैरड़ी से मध्य प्रदेश से कार्यक्रम को फरमाइश लिख भेजी है हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर और प्राची तनु करमरकर ने। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले के साथ हैं अवंतिका येले। नमस्कार के साथ आपने ये खूबसूरत सा मैसेज हम तक पहुंचाया है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज और सरफराज, फरदीन, सुहान, अरबाज, अजान और साथ में हैं अबान अब्बासी। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी कार्यक्रम में मैसेज कर रहे हैं और ये मैसेज रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमें प्राप्त हुआ है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। तो आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत, लैला मजनू फिल्म से आपने सुनना चाहा है लैला मजनू, और गायक कलाकार हैं आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। वाइट फील्ड बेंगलुरु से नमस्कार के साथ आपने इस मैसेज को हम तक भेजा है। आप हैं भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है सप्रेम नमस्ते के साथ सप्तरंग श्रोता परिवार, कुमार गली श्री रामपुर के हमारे श्रोता, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सनिका दले, पुणावने पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से कार्यक्रम को सुन रहे हैं शारू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, साथ में है मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। और ये अगला खूबसूरत सा मैसेज खंडवा रोड सनावत से हमें प्राप्त हुआ है। आदाब के साथ आपने इस मैसेज को हम तक पहुंचाया है शाहबाज अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर और डॉक्टर मोइन शेख। साथ में हैं खंडवा से योगेश गुजराती, आनंद जोशी और दुर्गा प्रसाद सैनी जी। दतरंगी से कार्यक्रम को सुन रहे हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। करणवीर हाउस बुचो कैचिया भटिंडा पंजाब से नमस्कार के साथ प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दवन और अभिजोत इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से जुड़े हैं, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। और ये मैसेज कलानौर से हमें लिख भेजा है प्यारे से नमस्कार के साथ नरेंद्र शर्मा और किरण शर्मा, साथ में है नितिन और मयंक शर्मा जी। शिवाजी नगर वडली देशमुख से आप हैं राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंद्राबाई छकुली, ताईश खोबरखेड़े और साथ में हैं खांडवी बुल्डाना से दीपाली राजधाड़े और स्वराज राजधाड़े जी। थिलौरी दरियापुर से आप हैं सुनैना पवन भोंडे और साथ में तनुज पवन भोंडे। और ये अगला मैसेज बगेरा दुर्ग से हमें प्राप्त हुआ है संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव जी का। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से आप हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और साथ में छत्तीसगढ़ रायगढ़ से जुड़े हैं मोहम्मद इमरान, इसरत परवीन और मोहम्मद हसनैन रजा, साथ में हैं गौसिया फातिमा और इनके परिवार के सभी सदस्य। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप सभी ने पसंद किया है मस्ताना फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से और आपके साथ है आज सुरिंदर कौर। कार्यक्रम की अगली फरमाइश में नाम जुड़ रहा है गोकुल चौक गंगजला सहसा बिहार के हमारे श्रोताओं का। राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, साथ में है राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी साक्षी और अच्छे लाल बुल्की वाली और फलना झा। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद के हमारे श्रोताओं ने। श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख और साथ में हैं कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख।

और कल्पना देशमुख और इनका समस्त राजे जाधव देशमुख और वायाल परिवार के साथ आपने इस मैसेज को हम तक पहुंचाया है। सहारनपुर से सोनाली नारंग और आशा नारंग, साथ में हैं सुरेश नारंग और ये अगला मैसेज खुर्जा उत्तर प्रदेश से सप्रेम नमस्ते के साथ हमें प्राप्त हो रहा है। तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ये मैसेज हमें लिख भेज रहे हैं। और अगला मैसेज बरवट बकाल बुल्डाना से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे जी का हमें प्राप्त हो रहा है। नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुँचाया है। आपका हर पल खुशियों से भरा हो इस मैसेज के साथ आप सत श्री अकाल और नमस्ते के साथ आप हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली के हमारे श्रोता रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। और ये मैसेज रघुवीर नगर से हमें प्राप्त हुआ है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू जी का।

ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंगा छिंदा साथ में हैं, जसवीर जस्सी और सीता और गीता। ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कुमारी क्रिस्टी पटवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत, जिसे हमने लिया है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार, और इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और अब कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप सभी श्रोताओं के नाम वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ इस मैसेज के साथ आप हैं वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली के हमारे श्रोता जिशान वारसी, इमरान शेख, रिहान शेख और करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। और ये अगला मैसेज हमें पहुंचाया है सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान के श्रोताओं ने, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान, साथ में हैं बेबी गर्भी और बेबी बॉय हिमाक्ष। और ये मैसेज हैदराबाद कड़खल से हमें प्राप्त हुआ है कानूगुला गोपाल जी का। और आप हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकॉस्ट्रो, रोजी डिकॉस्ट्रो, पर्ल डिकॉस्ट्रो और विलिस डिकॉस्ट्रो जी। आप सभी श्रोताओं के नाम कार्यक्रम का ये अंतिम गीत गिरफ्तार फिल्म से हमने इसे लिया है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं।

वाकई दोस्तों, धूप बहुत तेज़ है। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखिए। और अब इस कार्यक्रम से सुरेंद्र कौर को दीजिएगा इजाज़त। अगले कार्यक्रम में फिर से बात होगी, मुलाकात होगी, साथ में होंगे कुछ खूबसूरत नगमे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: गीत आपके नाम। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब अपराह्न के 1 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओ यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष

0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 1:05 हुए हैं। आइए अब आपको बता दें, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कार्यक्रम विवरण में 1:15 पर आप सुनेंगे धरती गाती है कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकार लालमन चित्रकार के गाए कुछ लोकगीत। 1:30 का समय है ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम आंचल का। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा गांव की परंपराएं पराएं आज भी कितनी ज़रूरी। इसके साथ ही साथ एक परिचर्चा भी आपको सुनवाई जाएगी। विषय होगा गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल। प्रतिभागी होंगे ममता देवी, ज्योति और रूपा देवी। इनसे बात करेंगी गुंजन। साथ साथ होंगी स्किन की देखभाल के अंतर्गत कुछ हेल्थ टिप्स और लोकगीत। दो बजकर 30 का समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सुनहरा दौर का। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाए जाएंगे 1990 के दशक के कुछ हिंदी फिल्मी गीत। शाम की सभा आरंभ होगी संध्या 4:00 संदेश टू सोल्जर्स के साथ। 5:00 सुनिएगा आज शाम कार्यक्रम और 5:15 पर हम लाएंगे युवा साथियों के लिए उनका कार्यक्रम युव वाणी।

0: 6:10 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत और 6:20 का समय है किसान साथियों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का। 7:00 सुनिएगा विविधा के अंतर्गत परिचर्चा, सोशल मीडिया नए आयाम और स्रोत, जिसमें भाग लेंगे प्रमोद और प्रियांशु। सुगम संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे जुनैद अख्तर की गाई कुछ गजलें। समय हुआ 7:31। रात्रि 8:00 सुनिएगा फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल। 9:30 का समय है सबरस कार्यक्रम का। आज इसमें सुनवाए जाएंगे आला, कलाकार होंगे ओंकार और साथी, प्रतिभागी होंगे मदनलाल, कृष्णपाल, जगदीश और गोकरण लाल। क्षेत्रीय लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 10:00। ये था कार्यक्रम विवरण। अब आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इलाकाई खबरें नशर होंगी।
1: आकाशवाणी लखनऊ है।

0: अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम पर आप श्रोताओं ने ट्यून किया है आकाशवाणी का रामपुर केंद्र। श्रोताओं, समय हुआ है 1:15। आइए अब सुनते हैं लोकगीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम धरती गाती है। आज इसमें कलाकार हैं लालमन चित्रकार।
2: संधि नाच ले ओ द्वारे में बज रही सहनाई।

0: लोकगीतों के आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं लालमन चित्रगार की गाए कुछ लोकगीत। इन्हीं की आवाज में कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।
1: ऐसी हठीली नंदिया।

लालमन चित्रकार के गाए कुछ लोकगीत आप सुन रहे थे लोकगीतों के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम था धरती गाती है। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। समय हुआ है 1:30 और 15 सेकंड। अब ग्रामीण वाले सुने अपना कार्यक्रम आंचल। आज का कार्यक्रम लेकर स्टूडियो में उपस्थित हैं सुमन।

आंचल कार्यक्रम सुननवारी हमारी सभी बहनन को आपकी बहन सुमन की प्यार भरी नमस्कार और राम राम। कैसी हो बहनों? हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हुई और अपनों काम अच्छे से करती हुई। बहनों, गांव में तो वैसे हूँ, बिना काम के हमेशा काम ही रहता है, चाहे ठंड हो या गर्मी। गांव में तो काम कभी ख़त्म ही ना होता। बहनों, पहले के समय में सब लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ के ही काम करते, लेकिन क्या आज के समय में हम लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों को इतना मान सम्मान दे पा रहे हैं या नहीं? हमारे गांव की जो पुरानी परंपरा है वे हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। तो बहनों, आज की हमारी चर्चा को जो विषय है वो है गांव की परंपरा आज भी कितनी ज़रूरी। बहनों, हमारे गांव की पहचान उनकी पुरानी परंपराओं से होती है। जैसे त्यौहार की बात करें तो बहनों, गांव में हर त्यौहार बड़े उत्साह और खुशी के साथ अलग तरह से लोग मनाते हैं। बड़ों को सम्मान, आपसी सहयोग और खेती बाड़ी करने के तरीका, ये सब हमारे गांव की पुरानी परंपराओं को ही तो देन है। बहनों, आज के आधुनिक समय में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन बहनों, हमारी जो पुरानी परंपरा है वे हमारे लिए आज भी उतनी ही ज़रूरी हैं। बहनों, पुराने रीति रिवाज और तरीके जो हमें हमारे बुजुर्गों से मिले हैं, उनको हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहनु हमारी जिम्मेदारी है। हमें ही अपने बच्चों को अपने बड़ों के द्वारा बताए गए रास्तों पे ही उनको चलाने हुए, तभी वे समझेंगे कि पुरानी परंपराएं कितनी ज़रूरी हैं। बहनों, जैसे हमारे गांव में कोई तीज त्यौहार हुए या किसी के घर शादी, हमारे गाँव के सब लोग मिलजुल कर आपस में काम करवा लेते हैं। जो गांव में बड़े बुजुर्ग हैं वे शादी ब्याह के जो रीति रिवाज होते हैं वे लोगों को जाके बारे में उनके बारे में ज्ञान बताते हैं, और जैसे बड़ों को सम्मान और भी बढ़ जाता है, क्योंकि पुराने रीति रिवाज के बारे में बड़े बुजुर्गों से ज़्यादा हम लोग ना जानते हैं। गांव में मिलजुल के काम करना और आपसी सहयोग से ही तो हमारे गांव की पहचान है। बहनों, अगर हम गांव की परंपराओं के महत्व की बात करें तो इसको अलग ही महत्व होता है। बहनों, पुरानी परंपराएं हमारी पहचान होती हैं, अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो हमारे गांव की संस्कृति और पहचान ख़त्म ही जाएगी। बहनों, गांव में लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं, जा भी एक पुरानी परंपरा को ही तो हिस्सा है। परंपराएं हमें अनुशासन, सम्मान और संस्कार सिखाती हैं। बहनों, हमें अपने बालकन को भी अच्छे संस्कार देने होंगे, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो भी घर और समाज में देखता है। बहनों, आज के समय में बहुत से बदलाव देखने को मिलता है, जैसे कि मोबाइल, टीवी और शहरों की जीवन शैली को अपनाने से गांव की कई परंपराएं कमजोर ही रही हैं। बहनों, अब ऐसा क्या है जो लोग त्योहारों को भी बड़ी सादगी से मनाने लगे हैं? आपसी मेलजोल कम ही रहो है, जहाँ लोग गांव के चौराहे पर खड़े ही कह आपसी बातन में घंटों बिता देते, आज भी अपने घर में ही ज़्यादा बातें ना कर पा रहे हैं। पहले बड़े बुजुर्गों की बातन पर बड़ो ध्यान दो जातो, लेकिन अब उनकी बातें कम सुनी जा रही हैं। बहनों, क्या जो बदलाव सही है या हमें संतुलन बनाने हुए आजकल गांव के लोग ही अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाज को ना मान रहे हैं? बहनों, ये समझना जरूरी है कि हर परंपरा सही ना होती है, लेकिन हम खुद इतने समझदार तो हैं कि हम खुद समझ सकें हमारे लिए का सही है और का गलत। इसके लिए हमें हमारे गांव के रीति रिवाज छोड़ने की कोई ज़रूरत ना है। हमें अच्छी आदतों को अपनाने चाहिए, अपने बड़ों को सम्मान करना और अपने घर में सबसे आपस में मिलजुल कर रहनो, और बहनों जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करनो, ये सब हमारे गांव की परंपराओं में ही तो आता है। लेकिन लड़का लड़की में भेदभाव रखनो या फिर अंधविश्वास में रहनो, ये बातें सही ना हैं, इनको हमें छोड़ने हुए। बहनों, गांव की परंपराओं को बचाने में हम महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है। महिलाएं ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं, त्यौहार और रीति रिवाजों को पुराने तरीके से निभाती हैं और अपने घर परिवार को जोड़ कर रखती हैं। इसलिए महिलाओं को जागरूक और समझदार होना बहुत ही ज़रूरी है।

0: बहनों, हमें ना तो पूरी तरह से पुरानी सोच में रहने हैं और ना ही सब कुछ छोड़ देने हैं। बहनों, हमें शिक्षा और डिजिटल ज्ञान बच्चों को दोनों के महत्व को समझाने हुए। परंपरा हमारी जड़ है और आधुनिकता हमारी शाखा। अगर जड़ मजबूत होगी तो पेड़ अपने आप मजबूत रहेगा। इसलिए हमें अपनी अच्छी परंपराओं को बचाकर रखने हुए और इसके साथ आगे भी बढ़ने हुए। बहनों, आगे और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक परिचर्चा, जिसको विषय है गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल। और प्रतिभागी हैं ममता देवी, ज्योति और रूपा देवी, और इसकी संचालन है गुंजन। तो आबो सुन लेते हैं जा परिचर्चा।
1: बहनों, गर्मियाँ दिन भर दिन बढ़ती जा रही हैं, और जब गर्मियाँ बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और ऐसे में ज़रूरत हो जाती है कि हम अपने स्वास्थ्य की अच्छे से देखभाल करें। किस तरीका से देखभाल करें, आज इसी विषय पर परिचर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती ममता देवी, श्रीमती रूपा देवी और श्रीमती ज्योति। आज हम इनसे बात करते हैं कि गर्मियों में हमें किस तरीके से अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार के देखभाल हमें करनी चाहिए। सबसे पहले ममता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मी का मौसम है,
2: हाँ,
1: तो उसमें सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: सबसे पहले हमें सफाई रखना चाहिए घर की, कूड़ा ना रहना चाहिए, और गंदी नाली होती है उसको साफ करना चाहिए, इससे गंदगी ना हो।
1: तो आप सफाई के लिए क्या करती हो?
2: सफाई को झाड़ू लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं, उसमें फिनेल भी डाल लेते हैं।
1: अच्छा,
2: नाली साफ कर देते हैं।
1: अच्छा, कूड़े का क्या करती हो? घर का कूड़ा है, आप गांव
2: घर का
1: तो
2: कूड़ा बाहर धर देते हैं, निकाल के घर में नहीं रखते।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: तो बाहर इसे पहले से निकाल के रख देती है, तो उसमें तो मक्खी मच्छर पैदा ही जाएंगे
2: ना, उसे ढक देते हैं।
1: ढक देती है, कूड़ादान रखे होंगे।
2: सूखा अलग कर देते हैं, गीलो अलग कर देते हैं।
1: जब सफाई कर्मचारी आते होंगे उससे पहले रख देती हूँ या सुबह ही निकाल के रख देती हूँ?
2: पहले रख देते, आवाज गाड़ी की आती है तो वहां से पहले निकाल देते हैं। कूड़ा डाल के अपने हाथों धुल लेते हैं, फिर अंदर जाते हैं।
1: तो जैसे घर अपने खुले भी होता है गाँव में, तो घर आपको खुलो भी हो कि बंद है?
2: खुलो हुआ है।
1: खुलो तो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा आती होगी।
2: हाँ, धूल मिट्टी भी आती है तो सफाई करते हैं, कम से कम 2-3 बार घर में कर देते हैं सफाई।
1: अच्छा।
2: हाँ,
1: रूपा देवी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किन किन बातों का ध्यान रखती हैं?
3: मच्छरों का ही ध्यान रखते हैं कि मच्छर नहीं लगे, तो मच्छरदानी भी लगाना जरूरी है। घरेलू उपचार होते हैं वो ही करते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, मतलब घर में ही कोई चीज ऐसा लगाते हैं जिससे कि वो मच्छर नहीं आए।
1: ज्योति जी, आप गर्मियों में किन किन बातों का ध्यान रखती हैं?
4: घर में बच्चों को सुबह ही नहा के स्कूल भेजते हैं, और फिर स्कूल से आकर गर्मी ज्यादा लगती है तो बच्चों को नींबू पानी भी पिला देते हैं, और स्कूल से आकर फिर कोचिंग की भी तैयारी करता है, फिर नहा धोवा के हल्के ही कपड़ा पहनाता है उन्हें।
1: अच्छा।
4: हाँ, फिर ट्यूशन से आके फिर उसको खाने पीने की भी तो देखभाल सही से रखता है।
1: जैसे आपने बात करी खान पीन की, तो आप गर्मियों में बच्चों को किस तरीके को खान पान देती हैं?
4: हरी सब्जी ज्यादा खिलाता,
1: लेकिन कहता कि गर्मियों में हमें जो है पानी वाली चीजें उनको ज्यादा सेवन करना चाहिए।
4: हाँ, नारियल पानी है और नींबू पानी है, 2-3 बार पिला देता दिन भर में।
1: अच्छा,
4: खीरा है और जे तरबूज वगैरह है गर्मियों में। अच्छा। और जे भी खिलाते हैं।
1: तो बच्चों को साफ सफाई के बारे में आप कैसे समझाती हैं उन्हें?
4: खाने से पहले क्या कहता, हाथ धुलवा देता, उनसे कहता हाथ धो के खाओ खाना पहले।
1: अच्छा,
4: जो भी चीज छूता किचन की वो हम हाथ धो के ही खिलाता हर चीज।
1: रूपा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि साफ सफाई को लेकर जब कहते हैं हमारा जो स्वास्थ्य है वो ज्यादातर निर्भर करता है हमारे रसोई घर से, अगर हमारा रसोई घर साफ सुथरा है तो परिवार को हर सदस्य जो है वो स्वस्थ है, तो साफ सफाई को आप किस तरीके से ध्यान रखती हैं रसोई घर में?
3: पोंछा लगाती हैं, उसमें फिनाइल वगैरह डाल देती हैं, फिर सफाई करती हैं जिससे कि मच्छर उच्छर कोई चीज नहीं आए, उसकी महक आती है तो मच्छर भी नहीं आते हैं।
1: देखो, हमारी रसोई में बहुत सारी चीजें होती हैं, बर्तन है, पानी भी भर कर रखते हैं।
3: हाँ, वो भी ढक के रखते हैं और डिब्बे, मतलब कोई चीज खुली नहीं छोड़ते हैं।
1: ममता जी, खान पान का हमें गर्मियों में क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके का खान पान हमारा होना चाहिए गर्मियों में?
2: खाना ऐसा है, हल्का खाना होना चाहिए। पहले नाश्ता देते हैं उन्हें, नाश्ता में जैसे हरी सलाद वगैरह, फल वगैरह खवा दे।
1: तो क्या क्या बनाती हैं आप खाने में गर्मियों?
2: अगर बच्चे दूध पी रहे हैं तो सुबह में दूध बिस्कुट खिला दिए उन्हें, दोपहर में हरी सब्जी और एक बार दाल बना ली, जैसे चावल भी खाते हैं बच्चे तो थोड़ी हल्की रोटी थोड़े चावल।
1: अच्छा, गर्मियों में ऐसा तो ना है कि बासी खाना जो है?
2: ना ना ना, बासी खाना नहीं, बासी खाना हम रखते ही नहीं।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: ताजा ही खाना खिलाते
2: हैं? ताजा खाना जब बच्चे खाते हैं तभी सेकते हैं।
1: कहते हैं कि ताजा खाना जो गर्मियों में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हमेशा ही खाना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़े हो, ताजा खाना ही

0: में खाना
1: हाँ
0: चाहिए, और पानी भी
1: ताज़ा
0: हमें ताज़ा ही प्रयोग करना
1: पानी
0: है,
1: हम टैंक को नहीं लेते हैं और नल से भरते हैं,
0: ताज़ा पानी भरते
1: ताज़ी
0: हैं।
1: पानी।
0: रूपा
1: हाँ
0: जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जगह जगह क्या होता है कि हमारे यहाँ घर में कबाड़ भरा हुआ है, कभी कोई सामान खराब हो गया, हमने छत पे फेंक दिया, उसमें कहीं ना कहीं मच्छर जो है वो हो जाते हैं, तो हमें गर्मियों के मौसम में मच्छरों से किस तरीके से बचाव करना चाहिए?
1: हमें उस कबाड़ को या तो फेंक देना चाहिए, नहीं तो कबाड़ वाला आएगा तो उसे बेच देना चाहिए, उसे रखना नहीं चाहिए घर पे। कूड़े वाला आता है उस पे फेंक देते हैं, नहीं तो हम बेच देते हैं।
0: अच्छा, घर में गोबर है, डंगरू हो तो देखो अपने यहाँ,
1: हाँ
0: तो उनको किस तरीका से ध्यान रखती हो?
1: सुबह उठ के पहले गोबर उबर सब उठाते हैं, झाड़ू से सफाई करते हैं, फिर नहलाते हैं जानवरों के लिए।
0: ममता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, गर्मियों का मौसम आता है तो सबसे ज्यादा हमारे अंदर क्या होती है कि पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो पाए, अच्छे से हमारा स्वास्थ्य भी तो रहेगा, तो पेय पदार्थों में आप क्या क्या प्रयोग करती हैं?
2: पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, दिन भरे में कम से कम 5-6 फेरा तो पीना ही चाहिए, और नारियल पानी चल रहा होगा आजकल तो नारियल पानी भी पीना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फल भी खाना चाहिए, नींबू पानी आता है वो भी,
0: सिकंजी होती है कई
2: हाँ
0: तरीके की।
2: सिकंजी, गन्ना को जूस है।
0: अगर आपको जैसे गर्मी के मौसम में कोई परेशानी ही जाए तो डॉक्टर वगैरह हैं आपके गांव में?
2: डॉक्टर हैं।
0: ममता जी, आप बताएंगी कि गर्मी के मौसम में अक्सर जो हमारे बच्चे हैं वो गर्मियों में खेलते हैं, पसीना आता है, रैसेस हो जाते हैं उनके, तो उनके लिए आप क्या करती हैं?
1: बच्चों को पहली बात तो बाहर नहीं जाने देते हैं, और बाहर चले जाते हैं तो उनको सबसे पहले ठंडे पानी से उनको हाथ मुंह धुला देते हैं। अगर घमौरियाँ लेकर आती हैं तो मुल्तानी मट्टी होती है, तो वो शाम को बच्चों के लगा देते हैं, सुबह को
0: हाँ,
1: उन्हें नहला देते हैं।
0: घमौरी के बचाव के लिए और क्या क्या करना चाहिए हमें?
1: धूप में नहीं निकल दे देते हैं उन्हें।
0: अच्छा, दोपहर में बच्चों को ना खेलने
1: हाँ
0: देते?
1: हाँ
0: अच्छा।
1: अब जैसे अब 5 बज गए, ठंडो मौसम है वो तो निकल नहीं देते हैं।
0: ज्योति जी, आप बताएं कि जैसे हमारे परिवार के जो बुजुर्ग हैं या जो पुरुष हैं, वे देखो कहीं खेत पर जा रहे हैं या बाजार जा रहे हैं, और हम लोग तो कहाँ, महिलाएं घर में काम कर रहे हैं, धूप से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचा भी जाता है, लेकिन लू की जो चपेट है ना लग जाती है, और गर्मियों में सबसे ज्यादा लू लगन को जो खतरा है सबसे ज्यादा रहता है, तो लू से बचाव के लिए आप क्या करती हूँ?
2: बाहर से आवे तो घर में आराम करें, ज्यादा लू चलती है तो बाहर ना निकलना चाहिए, लस्सी है, नींबू पानी भी ले लेता घर में।
0: अच्छा,
2: हाँ
0: ममता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, लस्सी है, उसके अलावा ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनसे कि हम लू से बचाव कर सकते हैं, हम बाहर जाएं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बाहर जाएं तो हमें सबसे पहले तो चाहिए कि हमारे सिर पर कुछ है नहीं, धूप लग रही है, पानी भी हमारे साथ होना चाहिए। अगर प्यास लग रही है हमें तो पानी पी लें।
0: बिल्कुल।
1: फिर हम अगर घर आ रहे हैं तो थोड़ी देर अपने आराम से ठंडे पानी से मुंह हाथ धुलें, फिर बैठें। बैठने के बाद में हमें दही है, जैसे आम है, आम का जूस है, उसमें चीनी डाल लें थोड़ी तो उसको पी लो। बेल का
0: अच्छा।
1: जूस है, जैसे बेल छीलो और उसमें चीनी डाल ली तो वो पी लो, उससे ठंडक रहती है, उससे
0: अच्छा
1: हमें आराम मिलता है, तो बाहर की जुए लू वगैरह नहीं लगती।
0: ज्योति जी, हम आपसे पूछेंगे बाहर जाते समय गर्मियों के मौसम में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
2: ज्यादा लू चलती है तो घर में ही रहना चाहिए और बाहर ना निकलना चाहिए ज्यादा, और बाहर जाना चाहिए तो अपने सिर पर अंगोछा ले लो, और ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहना चाहिए, बाहर की चीजें ना खाना चाहिए और घर की चीजें ज्यादा यूज करना चाहिए।
0: देखो गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा जो हमारा जो असर होता है वो बालकन पे होता है, कि जो हमारे जो बाली बच्चे हैं वे मांत ना है गर्मी में, दोपहरिया में वो सुना लो चाहो ना तो सोनू ना चाहेंगे, गर्मी के में अपने बच्चों को किस तरीका से उनको बचाव करना चाहिए?
1: तो हमें सबसे पहले तो अपनों गेट बंद करना चाहिए,
0: अच्छा।
1: क्योंकि गेट बंद कर देंगे बच्चा हमारो बाहर नहीं जाए, वो तो घर में ही रहे वो।
3: जब पास में रहेगा तो वो तो वैसे भी सोएगा, जब बाहर निकले ही नहीं देंगे फिर गर्मी लगती है ज्यादा, तो जब वो सो जाएगा फिर बाद में उठेगा तो
0: अच्छा, देखिए बच्चे जो होते हैं वो खान पीने में ना सबसे ज्यादा नानुखुर करते हैं।
3: उनके लिए बना लेते हैं, दलिया वगैरह बना देते हैं, मूंग की दाल, ये हल्का ही खाना देते हैं, पूरी पराठा कम देते हैं।
0: अब जब बच्चे हैं ककड़ी ना खाना चाहता,
3: हाँ
0: खीरा ना खाना चाहता है, तो किस तरीका से गर्मी के मौसम में देखो हमें खास ध्यान रखने होता है बच्चे की सेहत को लेकर, क्योंकि बच्चे में डायरिया बन जाती है, हैजा बन जाता है, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो बच्चे को पकड़ लेती हैं, तो उनसे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए?
3: उनसे बचाव के लिए हमें नींबू पानी है, नमक चीनी का घोल बनाना चाहिए, उन्हें पिलाना चाहिए थोड़ा थोड़ा पानी, बार बार पिलाना चाहिए जिससे कि उन्हें पानी की कोई कमी ना हो।
0: बिल्कुल, कहते हैं गर्मी के मौसम में जो है पानी सबसे ज्यादा
3: हाँ,
0: हमें पीना
3: सबसे
0: चाहिए,
3: ज्यादा पानी
0: पानी की
3: पीना
0: कमी हमारे शरीर में ना होनी चाहिए। अगर हम पानी सबसे ज्यादा पी रहे हैं, भले ही एक टाइम अगर हम खाना ना खा रहे हैं, तो हम जो है गर्मी की चपेट से बच सकते हैं। ज्योति जी, अब डंगर हैं तो वहां पर गोबर भी है, कूड़ा करकट भी है, तो उनके कूड़ा करकट को आप कैसे करती हैं, गोबर वगैरह कहाँ थोपती हैं उनको?
2: खेत में कर लिए जगह तो
0: अच्छा,
2: खेत में डाल देते हैं ले जाकर।
0: साफ सफाई कैसे करते?
2: साफ सफाई तो डंगर इनके नीचे रखता है, जैसे नीम को वो पत्ता है उनसे धुआं कर लेता है, और कर्स होता है वाको तो गोबर को,
1: छोटे
2: वाको
1: छोटे
2: गोबर को,
1: कंडा टूट
2: हाँ
1: जाता
2: हाँ
1: तो उनको
2: गोबर को
1: सुलगा
2: कर्स।
1: देता है। लेटा की वो चल रही है पिंजी, वो भी रख देते हैं, वो
0: अच्छा,
1: धुआं लगता है तो फिर मच्छर जो है वो लगत
3: दूर
1: ना
3: रहते
1: है।
3: हैं।
0: तो मच्छरदानी भी तो आ गई, मच्छरदानी का
1: हाँ,
0: प्रयोग कर लेते
1: मच्छरदानी
0: हैं।
1: लगा
0: हाँ,
1: देता, फिर
3: मच्छरदानी भी आ
1: पंखा
3: गई है।
1: पंखा चला देता,
0: अच्छा, पानी और खान पान
1: फिर
0: तो उनको
1: निभा
0: गर्मी में,
1: देता, खान पान को ध्यान सही रखता उनको।
2: डंगर को
1: अच्छा,
2: 2 फेरा तो नहवा ही देते हैं, सुबह उठ कर नहवाते हैं, पहले
0: अच्छा,
2: नहवाते हैं उसको, और फिर दूध निकालता है, फिर गोबर डारन जाता है।
1: अब जो चरी चल जाएगी, अब बो दी चरी, तो जो चरी चल जाएगी उसकी कुट्टी काट के भूसमा मिला के ज्यादातर मैं हरू चारू खवाऊंगी। हरे चारे से जो है जानवर भी सही रहता है, दूध भी सही देता है।
0: देखो, परिवार में बच्चों की बात हो गई, बड़े बुजुर्गों की बात हो गई, यहाँ तक कि हमारे जो घर में डंगर हैं उनकी भी बात हो गई, कहीं ना कहीं इन सब की देखभाल के चक्कर में हम महिलाएं जो है अपने स्वास्थ्य की अनदेखो कर देंगे। तो हम महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए गर्मियों के मौसम में, ताकि जो है वो चपेट हमें ना पड़े और हमारा परिवार भी खुश रहे और हम भी स्वस्थ रहे।
1: हम ऐसे करते हैं, जल्दी से जल्दी हमने घर की साफ सफाई करी, जानवरों को काम करो, उनकी कुट्टी उट्टी सब खिला दी। टाइम देख रहे हैं कि हमारा कितना टाइम है, वो 12 बज गए। अब 12 बजे हम जल्दी से अपना भी नहा लेते हैं और जल्दी से अब खाना उना खाओ, थोड़ी देर आराम कर लेता, खान पान को भी ध्यान रखता। जैसे अब सलाद है, खाना है हल्को खाना ले लो, मूली है, गाजर है।
0: ज्योति जी, गर्मियों के मौसम में हमें रात का जो हमारा खाना है वो कैसे होना चाहिए?
2: हल्का खाना होना चाहिए,
0: तो आप क्या बनाती हो
2: दालू,
0: अपने घर में जैसे गर्मियों में रात में?
2: हरी सब्जी ज्यादा बनाते हैं, रसीली सब्जी बनाते हैं, जैसे तुरइयां चल रही हैं तो, और लौकी है, साग भी चल रहा हुआ है।
0: तो रात में जैसे रसीली चीजें, पानी
2: हाँ,
0: वाली
2: रसीली सब्जी ज्यादा बनाते, तुरैया
0: खानो
2: लौकी
0: ऐसे
2: भी।
0: भी होना चाहिए कि जो
2: हाँ,
0: हजम ही जाए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में कहीं ना कहीं हमारा जो पाचन तंत्र है वो कमजोर ही जाता है ना
2: एक टाइम
0: खान।
2: रसीली बनाता है, एक टाइम सूखी बनाता सब्जी।
0: अच्छा, हम महिलाओं में जो होता है अक्सर खून की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो ऐसी कौन सी चीजें गर्मियों के मौसम में, जाड़े हैं तो बार टाइम में तो हम ऊपरी खा लेते हैं कि काजू खा लो, बादाम खा लो, और बहुत सी ऐसी चीजें जो जो हमारे खून बढ़ाने के लिए, पालक है, चुकंदर है, ये सब चीजें खा लेते
3: खीरा है,
0: हैं।
3: ये चीजें खाना
0: हाँ,
3: चाहिए
0: तो देखो
3: तभी।
0: हमें अपने खान पान को कैसे ध्यान रखना चाहिए?
1: हमें ऐसे ही है, जैसे अब ककड़ी चल रही है, खीरा चल रहा है, चुकंदर है, चुकंदर ऐसा है खून की जो है पूर्ति करता है। ये चना आते हैं, मक्का चना, गुड़ है, जे भी खून की करता पूर्ति, तो जे भी तो लेना चाहिए। हाँ, और
0: अच्छा, खाना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खाना बनाते समय भी जो है साफ सफाई को
2: हाँ,
0: विशेष ध्यान रखना चाहिए, और गर्मियों में सबसे ज्यादा देखो कहीं चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, ये सब चीजें कहीं, और जरा सा पानी दिखो ना या कोई चीज गिरी ना, चींटी आ जाती है, पानी जरा सा बहुत तो मच्छर आ जाता है। तो हमें खाना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है?
2: रसोई में हम सफाई रखते हैं, जब रोटी सेकते हैं आटो गिर जाता तो रंदी साफ करते हैं।
1: डिब्बा है हमारे, तो हमें उनको दूसरे दिन, हमें तीसरे दिन रोज देखना चाहिए कि कौन से कोई कीड़ा तो ना है। दाल वगैरह है, चावल है, तो इनमें जैसे चावल है तो नमक रख देता तो कोई
0: अच्छा,
1: कीड़ा नहीं पड़ता।
0: पानी वाले बर्तन है, खाना बनाने वाले बर्तन, ये सब
1: हाँ,
0: साफ सुथरे,
3: साफ सुथरे होकर रखना चाहिए,
2: ये सुबह ही मांज लेता
3: ढकने
2: बर्तन।
0: सब्जी
1: हाँ,
0: वगैरह बाजार से लाती हूँ कि
1: हाँ,
0: घर में ही जाती?
3: बाजार से नहीं लाते हैं, ज्यादातर घर पे
1: उगा
3: ही
1: लेते
3: होती
1: हैं।
3: है तो खेती से ही आती है।
0: अच्छा, सही भी है। देखो बाहर की सब्जी में क्या है,
1: दवाई
0: दवाई
1: ज्यादा लग रही
0: मिली भी
1: है।
0: होती है और
1: हाँ,
0: इंजेक्शन लगे भी होता है, तो कहीं ना
1: हाँ,
0: कहीं हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है, और अपने
3: वो
0: गांव में
3: नुकसान
0: देखो
3: देती है
0: घर
3: बाजार
0: में
3: की,
0: जगह भी होती
3: बाजार
0: है,
3: की नुकसान
0: तो
3: देती
0: सब्जी
3: है।
0: वगैरह पहले धो के रख लेती हूँ?
1: पहले धो लेते हैं,
0: बाहर से कोई भी सब्जी या फल लेके आवे
3: तो
0: उनको सबसे
3: धो के ही
0: पहले
3: रखना
0: धो के रख
1: चाहिए, हर
0: लेना
1: चीज
0: चाहिए।
1: धो के ही रखते।
3: हाँ,
1: अगर खाना परस रहा है, बहू को ध्यान रखता कि इस पर कोई मक्खी नहीं बैठे, मक्खी बैठे तो वो गंदो मानो जाए वो।
0: बिल्कुल सही बात है, यही छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनका ध्यान रखें तो हमारा जो परिवार वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, और गर्मियों के मौसम में हम अच्छे से अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर पाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आई ज्योति जी, रूपा देवी जी और ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बहनों, अभी आपने सुनी जा परिचर्चा, जिसको विषय हो गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल। प्रतिभागी थी ममता देवी, ज्योति और रूपा देवी, और इसको संचालित कर रही थी गुंजन। हमें उम्मीद है बहनों, आपको इससे बहुत कुछ सीख जरूर मिली होगी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी आपके साथ हमेशा से है और इसी के द्वारा हमारी बहनें सुन रही हैं हमारा जो प्रोग्राम। बहनों, हमारे घर में ही रखी हुई चीज़ें हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती हैं इसके बारे में हमें पता ना होता है। गर्मियों में हमारी जो स्किन जो धूप में निकलने से लू और धूल से बेकार ही जाती है, इसके लिए हम अपने घर में ही घरेलू नुस्खों से इसे ठीक कर सकते हैं। जाके लिए हमें बाहर से महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदने की कोई आवश्यकता ना है। उसके लिए हम बेसन और हल्दी को फेस पैक भी लगा सकते हैं। ये बहुत पुराना और असरदार नुस्खा है। इसको बनाने के लिए 2 चम्मच बेसन, चुटकी भर हल्दी को थोड़े दूध या पानी में मिला के पेस्ट बना के अपने चेहरे पर लगा लें और 15 से 20 मिनट रखने तक के बाद इसको धो लें। इससे त्वचा साफ और चमकदार बनती है। बहनों, इसी प्रकार से 1 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद मिला के चेहरे पर लगाने से इससे त्वचा मुलायम और नमीदार रहती है। मैंने ताज़ा एलोवेरा जेल बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिसको रात में सोने से पहले चेहरे पर लगाएं और सुबह धो लें। इससे पिंपल कम होते हैं और स्किन ठंडी रहती है। बहनों, अब तो खीरा बहुत चल रहा है, तो खीरा को रस निकाल कर चेहरे पर लगा लें या इसको काट कर गोल गोल अपने चेहरे पर लगा लें। इससे गर्मियों में स्किन को ठंडक और ताजगी मिलती है। बहनों, गुलाब जल को कॉटन से चेहरा पर लगा लें। इसको लगाने से त्वचा साफ और फ्रेश रहती है। बहनों, नारियल तेल को अपनों अलग ही महत्व है। नारियल तेल से हल्के हाथों से लगाने से स्किन की नमी मिलती है और रूखोपन भी दूर होता है। बहनों, कोई भी नुस्खा लगाने से पहले हाथ पर टेस्ट जरूर कर लें और बहनों, धूप में निकलते समय चेहरा ढांक के रखें। ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट कम इस्तेमाल करें और बहनों, घरेलू नुस्खे सस्ते और सुरक्षित होते हैं, बस नियमित इस्तेमाल जरूर करें। प्राकृतिक चीज़ें अपनाएं, अपने त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाएं। और बहनों, अपनी त्वचा के साथ आप अपने शरीर को भी ध्यान रखो, क्योंकि ज़्यादा मोटे कपड़े पहनने से बहुत गर्मी लगती है और साथ में घमौरी भी निकल आती हैं। इसलिए बहनों, हमें गर्मियों में हल्के और सूती कपड़े पहनने चाहिए, जो शरीर को आराम दें और पहनने के बाद कोई दिक्कत भी ना महसूस हो। और बहनों, गर्मी में अपने शरीर को ध्यान अच्छे से रखना हमारी ही तो जिम्मेदारी है। समय समय पर पानी पीनो और ताजे खीरा, ककड़ी, तरबूज अब तो बहुत आ रहे हैं, इन सबको खाने से हमारे शरीर के लिए ये बहुत लाभकारी हैं और हमारे शरीर में पानी की मात्रा भी कम ना होगी। और बहनों, आप हमारे कार्यक्रम को सुनती हो, लेकिन हमें ये कैसे पता लगे? ना तो आपके मैसेज आते हैं और ना ही कोई पत्र। तो बहनों, ये बताने के लिए आप हमें पत्र लिख भेज सकती हैं। उससे पहले कर लेते हैं थोड़ा मनोरंजन और सुन लेते हैं एक लोकगीत। तो बहनों, इसके बोल हैं मांगे ननद रानी कंगना, तो आओ सुन लेते हैं जो लोकगीत।

0: दो, अरे दे दो भाभी रानी कंगना, लालन के हुए का दे दो भाभी रानी।
1: अभी आपने सुनो जो लोकगीत, हम आशा करते हैं आपको जो लोकगीत जरूर पसंद आओ हुए। और बहनों, आपको हमारा आंचल कार्यक्रम कैसा लगता है ये बताने के लिए आप हमें पत्र भी लिख भेज सकती हो। हमारा पता है आंचल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन नंबर 244901। और अब अपनी बहन सुमन को दीजिए अनुमति। राम राम।

अभी बहनों ने सुना अपना कार्यक्रम आंचल मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अपराह्न के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप तक पहुंचेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: visited the Rajiv Gandhi Memorial at Sri Paramatur to pay their respects on his memorial day. The AIADMK faction supporting the government was not present at the expansion event today at Lok Bhavan. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
1: The first session of the newly constituted Keralam Assembly commenced in Thiruvananthapuram today. Pro Tem Speaker G. Sudhakaran administered the oaths to the newly elected members. The election for the Speaker's post will be held tomorrow. The ruling UDF has nominated Thiruvanchur Radhakrishnan as its candidate for the post. The BJP, which has three members in the Assembly, is expected to field B.B. Gopakumar as its candidate, while the opposition LDF is yet to announce its decision on the election. In Jharkhand, 25 CPI Maoist insurgents and two members of the extremist outfit JJMP surrendered before the state police at the headquarters in Dhurwa, Ranchi today. The surrendered ultras also laid down a large cache of arms and ammunition, including an LMG, INSAS and SLR rifles, a pistol, magazines and nearly 3,000 live cartridges. Police said eight of the surrendered Maoists carried a combined bounty of 33 lakh rupees and a total of 426 criminal cases were registered against them. Director General of Police Tadasa Mishra said the state government will ensure rehabilitation of the surrendered insurgents and address their demands under the surrender policy. India has called out Pakistan's long-tainted record of genocidal acts at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border.
2: It is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
1: In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already secured a place in the playoffs, while Chennai Super Kings will be looking to strengthen their chances for the fourth spot in the points table. Meanwhile, Kolkata Knight Riders kept their playoff hopes alive with a 4-wicket victory over Mumbai Indians at the Eden Gardens in Kolkata last night. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. An orange colour warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति. सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया. केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया. पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
5: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
3: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: It is ironic that Pakistan with its long time...
6: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक

0: उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
1: India has recently launched
2: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
4: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
5: चाय, ये चाय।
6: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आप श्रोता जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रामपुर की पहली सभा के कार्यक्रमों से। श्रोताओं, अपराह्न के 2:30 और 38 सेकंड हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके लिए हम लेकर आए हैं 1990 के दशक के कुछ हिंदी फिल्मी नगमे।

आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती है आज की आपकी रेडियो साथी सुरेंद्र कौर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम शुरू हो रहा है और ये पहला गीत आप सभी के लिए हम ले आए हैं सड़क फिल्म से। आवाज़ें हैं अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को, जिसके बोल हैं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है।

ये आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है। संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

ये फिल्म है हम आपके हैं कौन, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरा दौर। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 3 बजने वाले हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों को। अब से लेकर संध्या 4 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के प्रसारण। संध्या 4 बजे अपनी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और एफएम पर आपसे पुनः भेंट होगी। अब मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: ಸಹೇಲಿ
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप
2: चंचल जी? और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के।
1: भी देखिए आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहां अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने,
2: लेकिन इस वजह से वहां पे भी गर्मी होने शुरू हो गई
1: जी।
2: क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
1: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहां रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है,
2: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
1: हाँ,
2: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए।
1: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है।
2: फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है। हर एक को होता है।
1: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे बाद, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई
2: वो उन्हें बताएं अपना।
1: हाँ।
2: बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
1: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राहीबाई सुमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता यानी कि सीड मदर कही जाती हैं, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई, चाय दिवस, चाय की चुस्कियां तो लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते पता ही नहीं पड़ता। और जब भी हम
2: देश ऐसा यही है भारत, जहाँ पे इतनी 50 आप सोच लीजिए कि गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, चाय
1: चाय चाहिए,
2: चाय के बिना गुजारा नहीं है।
1: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहाँ एक पांचवी चीज होती है वो चाय होती है, दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो आपका साथी अगर चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियां जो हैं वो अपना आलम बांध देती हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में बात
2: होगी, बात करेंगे। और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
1: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है
2: जी। और बिल्कुल ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
1: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस। और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा।

भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राही बाई सोमा पोपरे की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे इस स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपरे का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेतीबाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी थी तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती

0: में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राही बाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे, और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राही बाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है।
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान आसुनपण त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल। राहीबाई पोपड़े जो हैं वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4थे साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चेट कर गए। और हैरानी की बात यह थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो, और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल। और वो याद कर, क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती है कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताजा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला। और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की। और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वासपूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
0: बिल्कुल। और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बाभलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2015 में 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
1: जी बिल्कुल। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
0: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राही बाई को धान, हाइसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों का और फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
1: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है।
1: सच में
0: और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की
1: गर्म
0: प्याली
1: से
0: अगर
1: बिल्कुल
0: मिल
1: चाय
0: जाए
1: मिल जाए ना, तो बस ऐसा लगता है कि नहीं, अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने
0: जी,
1: दिमाग को हम ऐसे सोचने में मजबूर, अब चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं
0: और
1: पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े
1: हाँ
0: थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है

0: चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो
1: अरे
0: है ना
1: अगर
0: वो
1: कहीं
0: वर्ल्ड
1: गए
0: फेमस
1: आप,
0: है।
1: अगर आप किसी के घर गए, चंचल जी अगर
0: हाँ
1: आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन
0: जी
1: आप घर गए उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, पता
0: भाई
1: बस चाय नहीं पिलाई, तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: कुछ लोग कहते हैं कि एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहां चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं।
1: बिल्कुल
0: और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जब बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज्यादा चाय एक दिन में पी जाती हैं।
1: सच में बहुत ज्यादा
0: और
1: बहुत
0: पौराणिक कथाएं हैं ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा
1: बिल्कुल।
0: जाता है।
1: और चंचल जी ऐसा है ना कि एक प्यारी चाय अगर दोस्तों के साथ हो
0: हाँ
1: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहां लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले
1: हाँ
0: हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: और वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं,
0: जी
1: चलो एक बार और हो जाए एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है,
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े, सबका हल
0: जी
1: निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, या जैसे मिल जाए अगर समय बात करते करते, तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती हैं फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भीनी भीनी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेलजोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक
1: बिल्कुल
0: गीत भी सुन लेते हैं।

0: हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कहते ना तोहफा हो जाएगी.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में है. साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कब तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं.
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों हो गया आखिर. तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ है, ये तो हम कहेंगे.
0: चाय की बात और भारत की बात ना, ऐसे कैसे होगा.
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे, क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है. दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी.
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की. 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया. और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया.
1: बिल्कुल.
0: और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था. ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई.
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए इस पे. और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है. और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है और रहना ही चाहिए था. तो भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है.
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश है उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं. इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहां भी इनका प्रचलन बहुत है. लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है. अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी प्याली लेकर
1: स्वादिष्ट मिलती है
0: और वहां घंटों बैठकर बतिया सकते हैं.
1: बिल्कुल. और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है. अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं. कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें.
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली
1: जी
0: अंदाज
1: हाँ, जवाब
0: की।
1: कहा था आरती। अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ, तो अब
1: हाँ
0: समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए,
0: जी
1: और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज़ नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं, तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी, जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा नवा,
0: क्या बात
1: वाह
0: है।
1: क्या
0: और
1: बात
0: जैसे
1: है।
0: तुम बता रही थी ना, बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं, जिसमें
1: हाँ
0: अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झींगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना
1: अगर
0: पसंद
1: आप
0: करते
1: चाहते
0: हैं।
1: हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी।
0: जी
1: बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं भाई, चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है, और हाँ मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पत्नी के कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना, मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना दीवाना दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है,
0: चाय के
1: एक
0: प्याले भी
1: कप
0: करवा लिए
1: एक
0: जाते हैं।
1: कप चाय मिल जाने पे।
0: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसपे लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो, सांवला है रंग थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
1: ओहो
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है,
1: है भाई।
0: लिखने का अंदाज ही बड़ा
1: हाँ
0: प्यारा है
1: सच में।
0: इनका।
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है, सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
0: तो वही चलिए गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के द्वारा।

0: भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूंट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षित हैं जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने, आप दोनों बहनों को 2 कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी उन्होंने, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बनाती
0: हमारे श्रोता
1: है।
0: साथी लिखते हैं कि हर घूंट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो
1: वाह
0: आपको भी नमस्कार और
1: बिल्कुल।
0: आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ, और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है, और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात
0: हमारे
1: है।
0: श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन, और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती, और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे

0: लिए बचपन के जो चाय और पराठे की दुनिया थी, ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं, बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं छोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत के प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरे चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है। हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई, संदेश बहुत सारे हैं, लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है, जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और
1: बिल्कुल।
0: बताओ कौन कौन से
1: और बहुत
0: फोबिया
1: से
0: होते हैं।
1: फोबिया होते हैं, जैसे कि किसी को किसी जैसे किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है ना,
0: हाँ
1: ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है
0: जी,
1: अनावश्यक तौर पर, तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है
1: हाँ,
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहां तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए, तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया, जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको। और सोशल फोबिया, जैसे कि सोशल, जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको, वो होता है। और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है, वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहाँ फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, या हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया है ऐसा, तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं, ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: भी देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया, कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा तो ये क्यों ऐसा हो रखा है, फिर उसे उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहां से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते विराज गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते ही, अंधेरा होते ही लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरी अपने आंखों, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
0: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी
2: बिल्कुल जाना है शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर ही इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आंखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा तो वहां आंखें जल्दी सूखती हैं और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल। और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है तो आप धूप का चश्मा जरूर पहनिए।
1: बिल्कुल। और हम सुन लें गाना और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से
1: येल्लो में
0: इजाजत। हाँ
1: चलिए
0: हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आदि श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अभी तक हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण। श्रोताओं, 4 बज रहे हैं, अब मीडियम वेव और एफएम पर हमारी सायंकालीन सभा एक साथ आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में सुनिए दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स, हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके, आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, बहुत अच्छा लग रहा।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत, जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है, उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर 1 रेडियो आपका अपना रेनबो दिल से दिल तक।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का, देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहाँ पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूँ ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो हम अक्सर मूवीज़ में जो देखते हैं सर वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की या वॉर सिचुएशंस की या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं

0: वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड जीरो। तो वो सिचुएशन वहां पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क बीएसएफ को दिया गया था। और बीएसएफ उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीज़ों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं है अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में बीएसएफ के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया, और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर के मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000, 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
0: बिल्कुल
1: जैन के असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
0: जी,
1: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर की सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है, और आज भी वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई, और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े। और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लादेन बन गया, और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में। और उस FIR के बाद तो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जेएनके पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
0: मतलब तो इतना बड़ा आतंकवादी और इतना
1: बड़ा जी
0: कि सब
1: कि भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है, 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है, और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पे हमला करते हैं, जिसपे अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी, और ये मौका मुझको मिला। बीएसएफ के बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था, और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
0: जी।
1: 27 और 28 अगस्त 2003 को एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे
0: जी।
1: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका की कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जैन के पुलिस बीएसएफ का बड़ा अहम किरदार रहा, और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया। लेकिन ज्यों ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
0: जी,
1: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा, और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए, और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके

0: खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। बीएसएफ ने एक जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा, मेरी बटालियन ने, और मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में थर्ड फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
1: जी
0: गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड यूएसए इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
1: जी
0: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा एनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पर गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही। और
1: बिल्कुल
0: बीएसएफ को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात,
1: बिल्कुल बहुत सम्मान की बात है। और ये देश के लिए भी देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब वो जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो वो जो मोमेंट रहा होगा, वो कैसे आप लोगों ने आपकी टीम ने फेस किया, और वो सब जो इंसिडेंट हुआ जब फायरिंग हुई फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
0: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई, जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं ना कहीं
1: कुछ बड़ा करना
0: है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए। और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि पीएम का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसके पकड़े जाने के बाद जो फॉलो अप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया, तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक।
1: बिल्कुल,
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटिन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था, और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं, मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को बनाया था, डिज़ाइन किया था और बड़ा साइंटिफिकली डिज़ाइन किया था। उस ज़माने में हमारे पास वॉकी टाकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट लिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई। अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था, और सारी कोई आवाज़ नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज़ नहीं करेगा, शू की आवाज़ नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले हमारे पर फायर करे, हमारे
1: या वो भागने की कोशिश करे,
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी।
1: अच्छा।
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी एस्केप रास्ता था, और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के जिसमें 2 और अफसर थे
1: जी।
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया ये बेवकूफ बना दिया इन्फॉर्मर शायद, सही जगह नहीं आए, और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के जो

0: कि वॉल में फिट था और
1: अच्छा
0: बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था। नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे। कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं
1: कुछ
0: था।
1: भी नहीं।
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख रहा
0: दबा
1: है
0: देख रहा था, जिसका हमको इल्म नहीं था। तो
1: बिल्कुल।
0: वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था। शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई, जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था, पाकिस्तानी
1: अच्छा
0: टेररिस्ट, दोनों देख रहे थे। उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो
0: तो
1: शायद
0: शायद
1: वो
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता।
1: ओके।
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती थी।
1: ज्यादा होती
0: मार तो हम
1: बिल्कुल।
0: तब भी लेते, लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती। और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे, घर के फरीक।
1: अच्छा
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है। और इस ऑपरेशन में एक चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी। सब सेफ
1: ओके,
0: निकले,
1: मतलब
0: सब सेफ निकले,
1: सविलियन की भी पूरी हिफाजत की
0: पूरी
1: गई और
0: हिफाजत
1: अपने
0: की
1: ऑपरेशन
0: गई।
1: को भी।
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों से,
1: अच्छा
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो दो ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन
1: जी
0: छोड़ना पड़ा। तीन ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई। भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहाँ ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है। अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर
1: जी
0: उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और
1: बिल्कुल
0: उसके बाद वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता। और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती। पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि BSF के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा। और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए,
1: जी
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी। कितनी
1: जी
0: गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा। वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है, आंख
1: यानी कि
0: में।
1: आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया।
0: हाथ
1: आप उस
0: का,
1: वक्त
0: सिर्फ हाथ का
1: सिर्फ
0: अंदाजा
1: हाथ
0: हुआ,
1: का
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता
1: जी
0: नहीं लगा। स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा।
1: जी
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही,
1: पता
0: सर्जिकल टेबल
1: लगा
0: के ऊपर ही OT में पता लगा।
1: जी
0: डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी
0: और
1: सर,
0: चले।
1: हम इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग हुई और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथी लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरीज रही
0: जी,
1: वो बहुत ज़्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी, उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
0: अच्छा।
1: कमेंडेशन
0: जी, जी,
1: मैं
0: जी,
1: अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा,
0: छाती पर लगता है
1: जी जी जी, उस पे कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया
0: जी जी,
1: उसमें ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहाँ क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे दिख रहा था
0: जी,
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
0: जी,
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका खराब ब्लड होता है, बैंक के बाहर आता है। फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहाँ कहाँ चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया
0: जी। आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
1: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
0: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी सात गोलियां शरीर में?
1: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा, क्योंकि हाथ का विजिबल था
0: जी,
1: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि, तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संग यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने एक जीवन रक्षक के तौर पर ड्राइंग रूम में लगा रखा,
0: जिसने आपका दिल बचाया।
1: उसमें यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, सफिशियंट थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशन भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है।
0: अच्छा।
1: फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया
0: फेंट हो जाता है, फिर
1: हाँ कि मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सुबेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने लगते हैं।
0: जी जी जी।
1: बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए
0: जी,
1: जिनका की तुरंत तो आइडेंटिटी नहीं हो पाया, शिनाख्त बाद में हुई
0: जी।
1: और नीचे आए, पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल बीएसएफ मिले मुझसे
0: जी,
1: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू एंड फर्स्ट देवर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो
0: जी,
1: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर से हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग
0: जी,
1: रहा था
0: जी।
1: मैंने कहा सर फॉर व्हाट, बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड, मेन एक्यूज्ड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक एंड होल कंट्री होल नेशन एंड बीएसएफ इज प्राउड ऑफ यू एंड बीएसएफ टीम। तो वो ऐसा रहा ना, सारा दर्द काफू
0: खत्म हो गया, सही
1: तो नहीं लगा कि दर्द में तो हम थे
0: जी,
1: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी पेन अगर है तो महसूस होगा। लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो उसे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट होता है, अगर आप फाइनल फतह कर लेते हैं
0: जी, जी।
1: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना, वो कहीं कहीं उसका पेन कम हो जाता है
0: यस, उसका एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी, कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा।
1: ड्रीम चेज फॉर एवरी फोर्सेस,
0: बिल्कुल
1: हॉट केक इन द वैली।
0: और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो अपने नमूने पेश करता।
1: मोर देन 9 इयर्स वैली में 1994 से 2001 तक ही वाज इन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC-814 हाईजैकिंग, दिस सारीमर किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद जे एन के असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001, 2001। तो उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था, इम्तहा बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: वो भी दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
0: जी,
1: परिंदा नहीं पर मार सकता।

0: तो इतना बड़ा प्लानर
1: इतना
0: था,
1: बड़ा प्लान है, इतना बड़ा
0: पाकिस्तान
1: आतंकवादी
0: से
1: है
0: लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के,
1: जी।
0: लॉजिस्टिक्स वेपन, आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस
1: बिल्कुल
0: और पार्लियामेंट्री स्टाफ की, उन्होंने इतनी बड़े एम्बेरसमेंट से बचाया जान पे खेल के, और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी
1: बहुत
0: थी,
1: बड़ी, बहुत बड़ी सर। यहाँ
0: बहुत,
1: पर
0: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल
0: देश का सब मस्तक ऊंचा हुआ।
1: बिल्कुल। और सर इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है,
0: मैं
1: क्योंकि
0: इसको
1: ये
0: अपॉर्चुनिटी
1: डेयर
0: मानता
1: डेविल
0: हूं क्योंकि
1: जी
0: बीएसएफ एक टीम वर्क करती है,
1: बिल्कुल
0: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर, इसको टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के
1: बिल्कुल
0: उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम
1: सर।
0: जाना
1: मुझे
0: चाहिए।
1: फौजी का जो जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला, देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर
0: क्या है कि
1: जिस
0: जब इस तरह का मिशन होता है
1: जी
0: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे हैं।
1: जी
0: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
1: डगमगाए
0: थर्राए,
1: जी
0: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा।
1: बिल्कुल।
0: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है।
1: तो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से
0: एग्जैक्टली नहीं तो
1: जिम्मेदारी
0: मैं
1: और
0: उस दिन
1: भार
0: बटालियन का हेड था,
1: जी,
0: मेरे
1: आप लीड
0: पास
1: कर रहे थे,
0: लीड कर रहा था, मैं चाहता तो अपने किसी नंबर 2 को भेज सकता था, नंबर 3 को भेज सकता था,
1: लेकिन
0: लेकिन
1: आप फ्रंट पर
0: खुद
1: रहे
0: खुद के रहने से
1: जी
0: मोराल बड़ा अप होता है,
1: बिल्कुल।
0: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस
1: मौत
0: जाता
1: के मुंह
0: है
1: में घुस गया
0: और घुसे वो
1: बिल्कुल।
0: गाजीबाव के माद में घुसना कोई सिंपल
1: और
0: चीज
1: जैसा
0: नहीं
1: आपने
0: थी,
1: बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
0: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं हमको,
1: मिलता नहीं
0: और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी
1: जाने
0: जिंदगी खुद को कोसते
1: बिल्कुल
0: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ दोज मोमेंट्स।
1: दुबे सर। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूं आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम। वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी हैं कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है। दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
0: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया, ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
1: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से। सर आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्स।
0: So great words, because we still remember the bloodshed in Australia, the Bondi Beach very recently by the IC
1: जी
0: by the ISIS cadres। हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन, एंड इन दुबे सर को आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है ये सिलचर असम से।
0: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी
1: जी,
0: तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सल
1: जी
0: एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है, ये
1: बिल्कुल
0: वर्ड उनके थे।
1: अच्छा।
0: उनके बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
1: जी जी
0: अमिताभ बच्चन, हाँ
1: अच्छा जी,
0: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
1: जी,
0: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है,
1: रखी है वो आपकी
0: आप
1: यादगार।
0: यूनिफॉर्म में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी,
1: बिल्कुल।
0: मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके
1: जी,
0: लगाया
1: जी।
0: हुआ है।
1: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको
0: exactly
1: बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
0: फिल्म
1: अनबिलीवेबल
0: काफी उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
1: जी,
0: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है और एक कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती
1: बिल्कुल
0: है।
1: सर एक चीज लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं,
0: होते,
1: लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है।
0: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
1: कुछ नहीं होता,
0: वहां
1: जान जाएगी या जान ली जाएगी,
0: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का,
1: या मरने का,
0: तीसरा कुछ नहीं होता,
1: तीसरा कुछ नहीं, या तो
0: मतलब दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप
1: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं,
0: दो ही कैटेगरी होती है। मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा और आज के तारीख में आपके सामने मैं एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं
1: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ सर। सर एक मैसेज और है, हाय सर मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं अभी क्लास 11 में हूँ सर, ये एकदम बच्चा यंग लड़का है ये कोई, PCM से हूँ, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूँ, मैं आजमगढ़ से हूँ, यूपी से।
0: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है
1: जी,
0: क्योंकि आप PCM से हैं, 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप PCM बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक क्वेश्चन पेपर जो CDS के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफ़ी ज़्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका PCM मजबूत है, आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा, और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना, बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं, प्रिपेयर ऑल द बेस्ट।
1: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है, मैं शबनम हूँ, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही हैं, जय हिंद सर, आपको सुन रही हूँ, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
0: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं जिसके नाम पे बी के दत्त है।
1: जी
0: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है, तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस, थैंक यू सो मच।
1: सर देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं, और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे।

0: सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए BSF में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर बहुत देर से हम बात कर रहे हैं
1: आप इस मौके पर, मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है
0: जी,
1: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा।
0: ये क्या बात,
1: फील्ड सिचुएशन का गाना है, जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला लिखा था बिकम फादर, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई तो वो पहले है,
0: पहले
1: तो हो मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस काम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIGBSF श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब बीएसएफ आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालयन नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए
1: दे दीजिए।
0: अच्छा।
1: तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी, घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज़्यादा था
0: जी।
1: मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में।
0: अच्छा।
1: थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे। जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा, 12वें दिन गाँव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी
0: जी
1: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और एक साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में, और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े ज़बरदस्त नेशनल फरवर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: तो यस, तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो
0: चारपाई
1: पर बैठ के सुनाते अच्छा। थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था, तो हम बस

0: इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसे वैकेंसी निकली, पता लग चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
1: जी,
0: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
1: जी,
0: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाय हो ये तो तब था ही नहीं, ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाय हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी, उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं, कर सकते,
1: नहीं
0: थे,
1: कर सकते थे,
0: और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
1: बिल्कुल, तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरह से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर कोई जाना चाहता है BSF में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है, वो उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
0: BSF में एंट्री के लिए 3 लेवल हैं, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल।
1: जी,
0: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
1: ठीक है,
0: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटेन बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छंटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए, और रिटन की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
1: बिल्कुल,
0: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है।
1: बिल्कुल,
0: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता
1: है,
0: विदेश में जाने का मौका मिलता है।
1: जी सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप ये भी जानना चाहूँगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आप का जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है, और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप USA, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं, इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
0: इस इंजरी के बाद में एक दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया
1: जी,
0: 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर तोयबा की तरफ से
1: जी।
0: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्रिएट हुई
1: जी,
0: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा, और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में सरकारी,
1: तो 25 साल जो सर आपने BSF में दिए उसके अलावा
0: ये 9 वर्ष NIA में,
1: अच्छा
0: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
1: अच्छा
0: मेरे दिल से लगा हुआ है,
1: बिल्कुल
0: मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया,
1: अच्छा।
0: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता हूं।
1: जी सर, आगे बढ़ूंगा मैं, और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर, FM रेनबो की ऑल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से ग्रीश, आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
0: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं।
1: अच्छा,
0: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और आप उसको एंजॉय करिए, बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक।
1: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है।
0: ये सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है
1: जी,
0: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी
1: जी,
0: और बड़ा उन्होंने ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की थी।
1: बिल्कुल,
0: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक एक ट्रेजडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजडी के साये में फिल्म रिलीज हुई थी।
1: ओके।
0: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है
1: जी।
0: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजडी हुई थी देश में
1: जी जी जी
0: कश्मीर में, तो वो एक वजह है। बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
1: जी। सर एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं। यश शिंदे हैं ये। डीआईजी नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल है आप नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप, चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है,
0: क्या बात है,
1: क्या बात। नरेंद्र नाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
0: जबरदस्त आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, आप बड़े जज्बाती हैं,
1: बिल्कुल
0: प्रेमी हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड।
1: और सर यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे, हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है, तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें। जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर अपने
0: युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ पर्पज हैं अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है, आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं, तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, और आप जैसी शख्सियत से बात करना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही है रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।

आज हम बात कर रहे हैं सेवा की। सेवा का अर्थ होता है किसी की मदद करना। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के काम आते हैं उसे सेवा कहते हैं। सेवा इंसान को अच्छा, दयालु और सुलझा हुआ बनाती है। हमारे समाज में सेवा को बहुत बड़ा गुण माना गया है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है उसे सभी लोग सम्मान देते हैं और प्यार करते हैं। सेवा कई प्रकार की होती है। गरीबों को खाना खिलाना, बीमार लोगों की सहायता करना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना और पशु पक्षियों की रक्षा करना भी एक सेवा है। छोटी छोटी मदद भी सेवा कहलाती है। जैसे किसी इंसान को सड़क पार करवाना, प्यासे को पानी देना या दुखी व्यक्ति को सहारा देना, उससे बात करना, उसकी परेशानी को साझा करना, बांटना। साथियों, अगर हम घर में माता पिता की सेवा करते हैं और अपने सभी छोटे बड़ों की इज्जत करते हैं और सिखाते हैं तो परिवार में प्रेम बढ़ता है। स्कूलों में भी हम अपने सीनियर्स की, अपने जूनियर्स की मदद कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई में या दूसरे कामों में। सेवा समाज में भाईचारा और सुकून बढ़ाता है। लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं।

बात कर रहे हैं उस भाव की, उस सेवा भाव की जो इंसान के दिल से खुद निकलता है। यानी इंसान अपने दिल से किसी की मदद करना चाहता है। और हमारे देश

इंसान अपने तरीके से सेवा कर सकता है। सेवा करने के लिए अमीर होना ही बल्कि काफ़ी नहीं है, अच्छा दिल और मदद करने की भावना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस भागती दुनिया में हर कोई उलझा हुआ है। हर इंसान को दूसरे के साथ और मदद की ज़रूरत है। ऐसे में हमें चाहिए कि जहाँ तक हो सके दूसरों का साथ दें और मदद करें, क्योंकि सेवा मानवता का सबसे सुंदर गुण है। यह हमें प्रेम, दया और इंसानियत का पाठ सिखाती है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।
1: बंदूक से निकली गोली का कोई नाम, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। जब ये गोली लगती है किसी इंसान को तो घायल होती है मानवता। छूट जाता है एक बचपन, वीरान हो जाता है किसी का जीवन, टूट जाती है किसी के बुढ़ापे की लाठी, बुझता है एक दीपक उम्मीद का। अपने इस देश में बारूद का ढेर नहीं, फूलों का चमन महकाएं, जीवन के हर रंग से इंद्रधनुष बनाएं।

0: कौमों को नाज है वतन पर मर मिटने वालों पे।
1: उठकर जरा तो देखो दुनिया का रंग क्या है, रफ्तार क्या जहाँ की, कौमों का ढंग क्या है।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम युववाणी में। इस शाम को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आज आपके साथ हूँ मैं नतांश अग्रवाल।
1: और मैं नव्य अग्रवाल। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे आज के सवाल का। आज का हमारा सवाल है, भारतीय मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है?
0: दोस्तों, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। भारतीय मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है? सही जवाब देने के लिए आपको सर्च करना है आकाशवाणी रामपुर का फेसबुक पेज और आज की अपडेट पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने अपने अपने जवाब। और सही जवाब देने वाले सभी साथियों के नाम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के एंड में। नव्या, कभी सोचा है अगर पूरी दुनिया में सब लोग एक जैसे होते, एक जैसी भाषा, एक जैसा खाना, एक जैसे कपड़े, एक जैसा म्यूजिक, तो दुनिया कितनी बोरिंग सी होती।
1: हाँ नतांश, ना अलग अलग त्योहारों का मजा होता, ना अलग संस्कृतियों को जानने की इच्छा, और शायद इसीलिए सांस्कृतिक विविधता यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी खास मानी जाती है।
0: और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है।
1: वैसे नाम थोड़ा बड़ा है नतांश, लेकिन इसका मतलब बहुत खूबसूरत है। अलग अलग संस्कृतियों को समझना, उनका सम्मान करना और आपस में बातचीत यानी कि संवाद के जरिए विकास करना।
0: सही कहा नव्या, क्योंकि दुनिया में हजारों भाषाएं, परंपराएं, डांस फॉर्म्स, खान पान और जीवन जीने के तरीके हैं, और यही चीज दुनिया को खूबसूरत बनाती है।
1: और नतांश, भारत तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, खाना बदल जाता है, पहनावा

0: बदल जाता है, लेकिन फिर भी लोग एकता में अनेकता के साथ जुड़े रहते हैं।
1: वाह, मतलब कहीं भरतनाट्यम, कहीं कथक, कहीं बिहू, कहीं गरबा, कहीं इडली सांभर तो कहीं लिट्टी चोखा। और मजेदार बात यह है कि हर संस्कृति की अपनी एक कहानी होती है।
0: बिल्कुल, और दोस्तों ये दिवस सिर्फ संस्कृति दिखाने के लिए नहीं बल्कि ये याद दिलाने के लिए है, जब लोग एक दूसरे को समझते हैं तब समाज में शांति और विकास दोनों बढ़ता है।
1: नव्या, वैसे ये दिन शुरू कैसे हुआ?
0: नतांश, ये दिन यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। यूनेस्को का मानना था कि अगर दुनिया में शांति चाहिए तो लोगों के बीच सांस्कृतिक समझ और सम्मान होना बहुत जरूरी है।
1: और सच भी है, कई बार लोग सिर्फ इसलिए एक दूसरे को गलत समझते हैं क्योंकि वो उनकी संस्कृति या परंपराओं को जानते नहीं।
0: हाँ, और हम किसी की भाषा, त्योहार या रहन सहन को समझने की कोशिश करें तो दूरियां कम होने लगती हैं।
1: और आज जब सोशल मीडिया के दौर में हमें दुनिया की हर संस्कृति देखने का मौका मिलता है, कभी कोरियन म्यूजिक ट्रेंड करता है, कभी जापानी एनीमे, तो कभी भारतीय योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं।
0: लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, दूसरी संस्कृति को अपनाना अच्छी बात है लेकिन अपनी संस्कृति को भूल जाना नहीं।
1: और यही है संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का असली मतलब, यानी अलग अलग रंग, अलग अलग पहचान, लेकिन दिल से जुड़े हुए लोग। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, फिर लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम योर वाणी में। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।

0: दोस्तों, कभी आपने सोचा है एक इंसान की सोच, एक गलत विचारधारा कितनी जिंदगियों को बदल सकती है? और यही सोच जब आतंकवाद बन जाए तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर पड़ता है।
1: साथियों, यही वजह है कि हर साल 21 मई को भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक याद है, एक चेतावनी है कि हिंसा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती।
0: और दोस्तों, इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी होती है। 21 मई 1991 को वो दिन जब एक आत्मघाती बम विस्फोट में उनकी जान चली गई थी।
1: लेकिन राजीव गांधी जी की कहानी सिर्फ उनकी मृत्यु तक सीमित नहीं है, उनकी जिंदगी भी काफी दिलचस्प और प्रेरणादायक रही है।
0: बिल्कुल, 20 अगस्त 1944 को मुंबई में उनका जन्म हुआ।
1: लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि बचपन से ही उनका राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें मशीनें, टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट काफी पसंद थे।
0: राजीव गांधी जी का स्वभाव काफी शांत और सरल माना जाता था। लोग कहते हैं कि वे टेक्नोलॉजी और भविष्य की बातें बहुत सोचते थे।
1: साथियों, उनका सफर आसान नहीं था। राजनीति में उनके सामने कई चुनौतियां और विवाद भी आए, फिर भी उन्होंने भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए।
0: और फिर आया 21 मई सन 1991 का वो दर्दनाक दिन। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनाव प्रचार के दौरान एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें उनकी जान चली गई।
1: इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। लोगों को एहसास हुआ कि आतंकवाद सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि देश के अंदर भी कितना बड़ा खतरा बन चुका है।
0: और उसी के बाद भारत सरकार ने फैसला लिया कि हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा ताकि लोग आतंकवाद के खिलाफ जागरूक हो सकें।
1: लेकिन दोस्तों, एक सवाल, आखिर आतंकवाद होता क्या है?
0: सरल भाषा में कहें, जब डर, हिंसा और हत्या के जरिए लोगों या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए।

0: तो उसे आतंकवाद कहते हैं।
1: और सबसे दुख की बात यह है कि आतंकवाद धर्म, जाति या देश नहीं देखता। इसका शिकार होते हैं आम लोग, बच्चे, जवान, परिवार, जिनका किसी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता।
0: हमने संसद हमला, मुंबई 26/11 हमला, पुलवामा हमला जैसी घटनाएं देखी हैं, जिन्होंने पूरे देश को दर्द दिया।
1: लेकिन आतंकवाद सिर्फ बम और बंदूक तक सीमित नहीं है। आज सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाना, लोगों को भड़काना, ये सभी समाज को नुकसान पहुंचाते हैं।
0: इसलिए आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ सेना या पुलिस की नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम शांति, समझदारी और एकता को बढ़ावा दें, तो नफरत कमजोर पड़ जाती है।
1: और यही संदेश हमें राजीव गांधी जी की जिंदगी से भी मिलता है कि देश को आगे बढ़ाना है तो युवाओं, शिक्षा और तकनीक पर भरोसा करना होगा, डर और हिंसा पर नहीं।
0: तो आइए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर हम ही संकल्प लें कि हम नफरत नहीं इंसानियत चुनेंगे, हिंसा नहीं संवाद चुनेंगे और डर नहीं एकता की ताकत बनेंगे।

0: साथियों, आज के हमारे सेगमेंट कुछ खास है आज में, आज के लिए बस इतना ही।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नर्म धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: दोस्तों, आज कैलेंडर पर एक बहुत ही खास दिन दर्ज है। आज है इंटरनेशनल टी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस।
3: वैसे तो हम हिंदुस्तानियों के लिए हर दिन ही चाय दिवस होता है, सुबह की शुरुआत से लेकर थके हारे शाम के सुकून तक चाय हमेशा हमारे साथ होती है।
0: लेकिन आज का ये दिन हमने चुना है एक बेहद खूबसूरत मौजू, एक बेहद खूबसूरत टॉपिक पर बात करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है प्याली में जज्बात, चाय के अनगिनत रंग और किस्से।
3: क्योंकि दोस्तों, चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक जज्बात है जो एक प्याली में सिमट जाता है। इसके रंग भी अनगिनत हैं, कभी दोस्तों की टपरी वाली चाय का रंग, कभी सर्दी की सुबह में अदरक वाली चाय का रंग, तो कभी अकेलेपन में किताबों के साथ सुकून देने का रंग।
0: और इन्हीं रंगों के साथ जुड़े हैं आपके और हमारी जिंदगी के अनगिनत किस्से। तो बस देर किस बात की है, आपकी प्याली में आज कौन सा जज्बात खुला है? इस इंटरनेशनल टी डे पर चाय के इस सफर से अपनी जुड़ी सबसे प्यारी, सबसे यादगार कहानी या किस्सा हमारे साथ कमेंट में साझा कीजिए।
3: हमें पहला कमेंट लिखा है अक्ष सक्सेना ने, कहते हैं चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि जज्बातों से भरी एक प्याली है। कभी दोस्तों की महफिल में हंसी बन जाती है तो कभी अकेलेपन में सुकून का सहारा। सुबह की ताजगी से लेकर शाम की थकान मिटाने तक चाय हर पल का साथी बनती है। कहीं अदरक वाली चाय रिश्तों की गर्माहट देती है तो कहीं कुल्हड़ की चाय पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है। बारिश की फुहारों में चाय का स्वाद और भी खास हो जाता है। हर शहर, हर घर और हर दिल में चाय के अपने अलग अलग रंग किस्से बसते हैं जो जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बना देते हैं।
0: साथियों, हमें अगला कमेंट आया है तनुजा की ओर से। वे लिखती हैं कि आज ये थीम प्याली में जज्बात, अनगिनत रंग और किस्से सुनते ही ऐसा लगता है कि ढेर सारी यादें ताज़ा हो गई हों। सच में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कभी सुबह की नींद खोलती है, कभी शाम की थकान दूर करती है और कभी अपनों के साथ बैठकर दिल की बातें करने का बहाना बन जाती है। मुझे तो आज भी याद है, घर में जब बारिश होती थी तो सब एक साथ बैठकर पकोड़े और चाय का इंतज़ार करते थे और फिर भी शुरू होता था किसी का किस्सा, कभी बचपन में का किस्सा, कभी स्कूल का किस्सा, तो कभी पुरानी शरारतों का किस्सा, कभी दोस्तों के साथ नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर घंटों बैठकर बात करना, तो कभी अकेलेपन में बालकनी में बैठकर चाय पीना। हर किसी की ज़िंदगी में चाय से जुड़ी कोई ना कोई याद ज़रूर होती है और शायद यही वजह है कि चाय की हर प्याली का रंग अलग होता है, क्योंकि हमें सिर्फ स्वाद नहीं, एहसास और यादों में भी घुली होती है।
3: इसी क्रम में हमें अगला कमेंट भेजा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। कहते हैं चाय की प्याली में डूबे कुछ ख्वाब पुराने हैं, घूट घूट में जज्बात हैं, लफ्ज़ नहीं फसाने हैं, सुकून की बात मत करो जनाब, वो शाम ही किया जो चाय के बिना गुजरे। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, हमें अगला कमेंट आया है नमिता अग्रवाल की ओर से। उन्होंने कहा है, चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि हमारी भावनाओं का हिस्सा है। कभी दोस्तों के साथ हंसी बिताती है तो कभी अकेलेपन में सुकून देती है। सुबह की पहली चाय उम्मीद जगाती है, वही बारिश में अदरक वाली चाय यादों को ताज़ा कर देती है। हर घर, हर शहर, हर रिश्ते की अपनी एक चाय की कहानी होती है। सच कहूँ तो कई रिश्ते एक कप चाय से ही शुरू होते हैं।
1: मोहब्बत और चाय, शाम के ठंडक और तुम्हारी यादों का पहरा, एक कप चाय और बस इश्क गहरा। सुकून का एहसास है चाय, फुर्सत के पल और चाय की प्याली, इसके बिना हर शाम है खाली। चाय की लत तेरी यादों का नशा है या इस चाय का खुमार, हर घूंट में बसता है तेरा ही प्यार। बारिश और चाय, बारिश की बूंदे और चाय की चुस्की, यही तो है जिंदगी की असली खुशी। ऐसा कहना है वारसे के लव सिंधौली मीरगंज बरेली से, जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख का।
0: साथियों, हमें अगला कमेंट आया है वीके आइडल जी की ओर से। उनका कहना है, प्याली में जज्बात कितना खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला विषय है। सच कहा जाए तो चाय सिर्फ स्वाद नहीं, एहसासों का एक सफर है। कभी ये अपने साथ बिताए हुए पल याद दिलाती है तो कभी अकेलेपन में सुकून का सहारा बन जाती है। हर रंग, हर खुशबू और हर घूंट अपने अंदर अनगिनत किस्से समेट रहा है। कभी दोस्ती की हंसी, कभी बारिश की यादें तो कभी किसी अपने की अधूरी बातें, सब कुछ जैसे एक प्याली में उतर आता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, पढ़कर मन को अलग ही सुकून हुआ।
1: अगला कमेंट लिखा है गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान और सिमरन खान ने। कहते हैं, चाय केवल एक पेय नहीं बल्कि भावनाओं का एक सुंदर एहसास है। सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान, एक प्याली चाय हर पल को खास बना देती है। भारत में लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। घर में मेहमान आए तो चाय, दोस्तों के साथ बातचीत हो तो चाय, और अकेलेपन में भी चाय एक साथी बन जाती है। चाय के भी कई रंग होते हैं, कहीं अदरक वाली चाय, कहीं इलायची की खुशबू, तो कहीं कुल्हड़ की मीठी, कुल्हड़ की मिट्टी की महक। हर चाय अपने साथ एक अलग कहानी और याद लेकर आती है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय का स्वाद दिल को सुकून देता है। चाय लोगों को जोड़ने का काम भी करती है, कई रिश्ते और दोस्तियां एक प्याली चाय के साथ गहरी हो जाती हैं।
0: साथियों, हमें अगला कमेंट भेजा है लाल मोहम्मद अंसारी की ओर से। वे लिखते हैं, चाय दो शब्दों का एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत सी खुशबुओं से सरोबर है, और कई व्यक्ति किसी के पास कुछ पल के लिए बैठ जाए और उसे चाय ना पूछा जाए तो सारी उम्र उसके लिए वो व्यक्ति उस बात को दोहराता रहता है। और अगर कभी किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवानी हो तो चाय के बहाने उससे बात की जा सकती है। तो खुद भी चाय पिएं और साथ वालों को भी चाय पिलाते रहें। हमें कमेंट भेजा था गरम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से, लाल मोहम्मद अंसारी और लालू मिस्त्री अंसारी की ओर से। साथियों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, हमें अगला कमेंट आया है मोहन अग्रवाल की ओर से। लिखते हैं, आज का विषय सुनते ही मुझे अपने दादाजी की याद आ गई। बचपन में हर शाम वो आंगन में बैठकर मिट्टी के कुल्हड़ के प्याले से चाय पीते थे और मैं उनके पास बैठकर उनकी कहानियां सुनता था। उस समय समझ नहीं आता था कि चाय में ऐसा क्या ही खास है, लेकिन आज महसूस होता है कि वो सिर्फ चाय नहीं, रिश्तों की मिठास थी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक कप चाय हमें कुछ पल ठहरना सिखाती है, कभी ऑफिस की थकान मिटाती है तो कभी दोस्तों के साथ गपशप का बहाना बन जाती है। सच में चाय की हर प्याली अपने साथ कोई ना कोई एहसास जरूर लेकर आती है।
1: चाय, तुम मुझे सुबह नींद से जगाती हो, अपनी महक से मेरे जिस्में ताजगी का नया एहसास भर देती हो। चाय, तुम भले ही किसी के लिए आम हो पर मेरे लिए हमेशा से खास हो। तुम मेरी उलझनों का हल हो, तुम्हारी एक चुस्की में मैं भूल जाता हूँ सारे रंजो गम। ऑफिस में जब तुम मेरे होठों से लगती हो, सारी थकान छू हो जाती है। कोई हो ना हो, बस तुम होनी चाहिए, तो फिर देर किस बात की हो, एक प्याली चाय। ऐसा लिखते हैं गंगा सिंह रावत, रामपुर रोड, हल्द्वानी से।

0: पढ़ लो।
1: साथियों हमें अगला कमेंट आया है एलेक्स कोयल जी की ओर से। लिखते हैं, प्याली में जज्बात, चाय के अनगिनत रंग और किस्से केवल एक विषय नहीं बल्कि हर भारतीय की भावनाओं से जुड़ी एक खूबसूरत अनुभूति है। चाय सिर्फ एक पाए नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास, दोस्ती की गर्माहट और यादों की खुशबू अपने साथ लेकर आती है। कभी सुबह की ताजगी बनकर तो कभी शाम की थकान मिटाकर चाय हर पल को खास बना देती है। बारिश की बूंदों के साथ अदरक वाली चाय, दोस्तों के संग नटखट वाली चाय और फिर अकेले में सोच के साथ बिताए हुए शांत पल, हर प्याली में अपने भीतर कोई ना कोई कहानी।

0: नहीं समेट कर लाती है।
1: अगला कमेंट लिखा है मोनिका संजीव अग्रवाल ने, कहती हैं आज का टॉपिक सीधे दिल को छू गया। हमारे यहाँ चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि हर जज्बात का साथी है। सुबह की पहली चाय खुद से मुलाकात कराती है तो दोस्तों के साथ टपरी वाली चाय पुरानी यादें ताज़ा करती है। जब भी उदास होती हूँ एक कप गर्म चाय सारे गम समेट लेती है। आज के इस शो ने चाय की हर चुस्की के साथ जुड़े किस्सों को दोबारा जीने का मौका दे दिया।
0: साथियों हमें अगला कमेंट आया है राजवीर सिंह यादव जी की ओर से, लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की आप सभी को आत्मीय शुभकामनाएं। आज का दिन हम जैसे सच्चे चाय प्रेमियों के लिए बेहद खास है। मैं तो चाय का इस कदर शौकीन हूँ कि कप भर कर चाय पीने में मेरे को एक सेकंड भी नहीं लगता। दिन का सबसे बड़ा सुकून है ये मेरे लिए। सच कहूँ तो चाय के उस एक प्याले के बिना मेरी जिंदगी पूरी तरह अधूरी है। मेरे लिए चाय सिर्फ चाय नहीं बल्कि जिंदगी की भागदौड़ में बीच बैठकर थोड़ा सा सुकून के पल हैं। सांस लेने का नाम है चाय। सुबह की पहली चाय मानो तो दिन का स्वागत करने की ऊर्जा देती है, तो शाम की चाय दिन भर की सारी थकान को मिटा देती है।
1: ऐसा कहना था बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान का। अगला कमेंट लिखा है नानकार रामपुर से कलन ठेकेदार और वसीम ठेकेदार ने, कहते हैं चाय सिर्फ पीने की चीज़ नहीं है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती है। हर प्याली चाय के साथ अलग अलग बातें और यादें जुड़ी रहती हैं। कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक में चाय अच्छी लगती है तो कभी थकान के समय यही सुकून देती है। सुबह की शुरुआत हो या शाम की बातचीत, चाय हर मौके को खास बना देती है। इसलिए कहा जाता है कि चाय की हर प्याली में कई रंग और किस्से छुपे होते हैं। अगला कमेंट भेजा है भाई रफत साहब ने, कहते हैं चाय का नाम सुनते ही दिल खुश हो जाता है। जाड़ों में चाय गुड़ की हो या अदरक की पीने में बहुत आनंद मिलता है, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो चाय अच्छी तो लगती है लेकिन माथे पर जो पसीना आता है वो ज़्यादा आने लगता है। चाय की कभी भी लत ना लगाएं, अधिक चाय पीने से काफ़ी नुकसान है। चाहे कम से कम मात्रा में पिएं, वैसे तो चाय बहुत खूबसूरत है। घर आए मेहमान को भी हम चाय पिलाते हैं और अच्छे से और चाय से ही बात शुरू होती है। दोस्तों इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव का, यानी कि स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल के जवाब जानने का। हमने आपसे सवाल किया था, भारतीय मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है, और इसका सही जवाब है कन्याकुमारी। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी,
1: आकाश रस्तोगी, राजवीर सिंह यादव, शाहरुख नूर अंसारी, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, धर्मेंद्र छेपा, मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, पीएस नावाकर, निर्मला नावाकर, विशाल नावाकर, राम कुमार रेवाड़, दिनेश कुमार वर्मा, हनुमंत शिंदे, गंगा सिंह रावत, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, जॉन डी कैस्ट्रो, हीरामणि वर्मा, चौधरी राजवीर सिंह, अजीत भवसार, दीपेश वर्मा, भगवत चौबे लाडला जी, विजय सिंह महोबा, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू, रानू ईशु, सपना शिवी सलोनी और पेंटर, भाई रफत साहब, बंडू पोपलवट, किशन सपकाल, अशोक सिंह, सिद्धार्थ गोंडने, लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा, मोहम्मद दाने सिद्दीकी, मोहम्मद सईद अब्बासी, उत्तम कुमार भगत, संजय ढींगिया, गजन यले दरियापुर, अजीत कसाना, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु गोलू, कुसुमबाई बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार, दिग्दर्शन गौण, कविता गौण, नबी हसन अब्बासी, अनिल बी गोडके, बिरुलाल वाक्तरिया धाकड़, बलवंत कुमार वर्मा, कुमारी अंतरेप, सुरेश जायसवाल, राजू मिगलानी, नजमल होडा जावेद, रवि कुमार राहुल, देवशंकर तामोरिया, प्रवीण चौहान, राधेश्याम पांडे, फागुराम यादव, मोहम्मद यासिन अंजन, जीशान वारसी, जगदीश धाकर नायमा, उत्तम सिंह जांगल, नितेश कुमार देवांगन, मास्टर विट्ठल सुरोशे, विनोद मोड़त, हाजी गफ्फार खान, मिजवा शमशी, जाकिर मंसूरी, सुरेश गगनेजा, अल्तफ हुजरे, शाहजी बोर्डके, विजय सुरलकर, मोहम्मद जाहिद अली, आमिर हुसैन, लाल मोहम्मद अंसारी, धीरज भाई राबड़ी, मोहम्मद हाफिज और रियासत हुसैन सिद्दीकी। आप सभी को सही जवाब देने की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आपको आज प्रोग्राम कैसा लगा बताना ना भूले हमारे इस पते पर।
0: साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या है 244901। आप हमें ईमेल द्वारा भी बता सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है patrmilaaiirrampur@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा साथियों, 9410087876।
1: दोस्तों, जैसा कि आज हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे, तो आपको बताना चाहेंगे कि हमें आपके विचार पढ़ के बहुत अच्छा लगा। किसी की बचपन की यादें ताज़ा हुई, तो किसी को टपरी के साथ दोस्तों की चाय याद आई। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि चाय की लत लगना गलत है। कोई भी चीज़ संतुलित ही ठीक रहती है, किसी भी चीज़ की लत लगाएंगे तो वो शरीर को नुकसान नहीं करेगी। तो से चाय के साथ भी यही है, अगर संतुलित वे में इसे लेंगे तो ये हमें फ़ायदा करेगी, वरना चाय के नुकसान भी काफ़ी हैं। तो इन चीज़ों को दिमाग में रख के और दोस्तों, कहते हैं ना, शिकायत मीठे से थी और बदनाम चाय हो गई। इसी शायरी के साथ इजाज़त दे दी है आज के अपने साथी नतांश अग्रवाल
0: और नव्य अग्रवाल को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाज़त। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह यूल ने आज सियोल में

0: भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है। लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत नीरज श्रीधर की आवाज में, भूल भुलैया फिल्म से।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुननवारे हमारे सभी भैया बहनों को आपके भैया पंकज
1: और दीपक की
0: राम
1: राम
0: राम। और दीपक भैया सुनाओ, क्या हाल चाल है?
1: भैया हमारे हालचाल तो ठीक हैं और हमारी उम्मीद है जो हमारे किसान साथी हैं
0: जी
1: उनके
0: भैया
1: हालचाल ठीक ठाक होंगे।
0: जी भैया। और भैया देखो, जब भी ठीक ठाक होंगे ना तभी हम सब लोग ठीक ठाक हैं।
1: हाँ देखो, हम लोग ठीक होंगे तो खेती बाड़ी है, पशुपालन है,
0: हाँ
1: वो हमारा सही हो पा भाई भैया।
0: हाँ
1: और इस समय देखो भैया गर्मी का मौसम
0: हाँ
1: है
0: भैया, गर्मी बहुत पड़ रही है।
1: और लू चल रही है भैया।
0: जी भैया
1: हाँ, जब भी हमारे किसान साथी जब घर से निकलें
0: जी
1: जैसे खेत के काम के लिए,
0: जी
1: तो
0: भैया
1: भैया सुबह 4 बजे या 5 बजे के टाइम निकलें
0: जी
1: और अपने खेती को काम समय से निपटा लें।
0: हाँ भैया, 10 बजे तक भैया देखो अपने घर पे जो है चले आवें।
1: हाँ, और भैया जब निकलें तो कुछ सावधानी और रखें, जैसे पानी को ले जानूँ
0: जी
1: और सिर पर जुआ मूछा बांध लें,
0: जी भैया
1: और अगर कोई ज़्यादा बैसु काम है तो भैया आँखन पर चश्मा जरूर
0: जी
1: लगाएं।
0: भैया। और भैया देखो, बाकी साथ साथ हमें अपने जो जानवर है हमारे उनको भैया ध्यान रखना चाहिए, है ना
1: हाँ,
0: भैया?
1: जानवर को ध्यान रखना चाहिए भैया।
0: हाँ
1: और आज हमारो जय विषय भैया खेती के साथ हमारो पशुपालन।
0: हाँ भैया
1: देखो खेती और पशुपालन एक दूसरे के हमारे पैसे पूरक माने
0: जी
1: जाते
0: भैया
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: भैया
1: देखो, फायदेमंद चीज़ है, और क्योंकि देखो साथियों, केवल खेती पर निर्भर रहने से हमारी जो है, कभी मौसम की मार पड़ जाए तो
0: जी
1: बाजार को भाव गिर जाए तो
0: जी
1: हमारी खेती से हमारी जो है आय नहीं पाती है।
0: जी
1: बाकी साथ में अगर हमारे पास पशुपालन है वो, तो
0: जी
1: भैया बादशाह हम अपना रोज़मर्रा को खर्चा चला सकते हैं
0: जी
1: और बादशाह आमदनी कर सकते हैं,
0: जी भैया
1: जैसे जो हमारे कई रास्ता खुल जाते हैं।
0: जी भैया
1: पशु से जो मिलने वाला दूध होता है भैया,
0: जी
1: गोबर है
0: बिल्कुल सही
1: और
0: बात है
1: जैविक खाद जो होता है
0: जी
1: बाको हम अपने खेत में उपयोग करके, तो बाद से जो हमारे खेत की उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल दीपक भैया, आपने सही बात करी। देखो खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं।
1: जी
0: जो खेती से निकलने वाला जो जैसे हमें भूसा है, हरो चारो है, और जो फसल के अवशेष होते हैं वे पशुओं के काम में आते हैं, है ना भैया? और वहीं अगर पशुओं का बात करें तो जो पशुओं को गोबर है वो खेतों के लिए प्राकृतिक खाद बन जाते हैं।
1: हाँ
0: तो इससे होता है कि रासायनिक जो खाद है उस पर हमारा खर्चा कम हो जाता है और वहां से मिट्टी की सेहत और अच्छी बनी रहती है भैया।
1: बिल्कुल भैया, खेती के साथ अगर पशुपालन करेंगे तो बासा जो हमारी आय की वृद्धि होती है,
0: जी भैया
1: जैसे
0: बिल्कुल
1: सुबह शाम जैसे दूध बेचना हुआ भैया,
0: हाँ
1: बासा रोज को हमारा नगद आमदनी हो जाती है,
0: जी
1: जिससे जो हम अपने बच्चन की पढ़ाई है
0: जी
1: और जैसे बासा हमारा बाजार है वो चलता रहता है।
0: हाँ। और भैया एक बात और है,
1: जी
0: पशुपालन बेरोजगारी कम करने में बहुत मदद करते हैं,
1: हाँ
0: क्योंकि जो हमारे गांव के युवा साथी हैं वे अगर आधुनिक तरीका से डेयरी है, बकरी पालन या मुर्गी पालन अगर शुरू करते हैं ना दीपक भैया, तो होत का बस वे जहाँ से शहरों में जो नौकरी ढूंढने की होती क्षमता वहाँ में थोड़ी कमी आ जाती है, वे अपनी जरूरत की चीज़ें गाँव में पूरी कर सकते हैं ना भैया।
1: हाँ
0: और सरकार भी पशुपालन के लिए कई योजनाएं चला रही है जिससे किसान भाई कम ब्याज पर ऋण लेकर अपने व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल। अब भैया आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ किसान साथियों ने हमारे गोबर गैस प्लांट लगाया
0: हाँ भैया बिल्कुल सही कही आपने। हाँ
1: और उससे जो है अपने रसोई की जो गैस है ना
0: वो
1: बाको यूज में कर लेते हैं वैसे,
0: हाँ
1: और खेतों की जो बहुत अच्छी खाद बन जाती है भाई,
0: हाँ
1: और जिससे जो है घर को खर्च कम होता है और हमारा पर्यावरण जो है बहुत अच्छा रहता है।
0: हाँ और भैया दीपक भैया एक जगह साथ साथ और है कि पशुपालन महिलाओं के लिए भी रोजगार को अच्छा साधन है।
1: जी
0: जो गांव की हमारी बहनें हैं वे घर के काम के साथ साथ पशुओं की देखभाल आसानी से कर लेती हैं, और उससे होत का भी उनसे जो दूध मिलता है पशुओं से वहाँ को बेच कर हमारी बहनें थोड़ा अपना गुजारा कर लेती हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भैया मजबूत हो जाती है।
1: देखो भैया, पशुपालन से जो है खेत में जो है मजदूरन की समस्या भी कुछ हद तक कमी आई है।
0: बिल्कुल सही बात
1: देखो
0: बताई
1: होता
0: आपने
1: है भैया, देखो पशुपालन से जो उनसे जो दूध मिलता है
0: जी
1: वो एक संपूर्ण आहार होता है,
0: जी बिल्कुल भैया
1: और बाको भैया हम जब अपने पीते हैं बाकी लेना
0: जी
1: है
0: जी
1: तो बासा हमारा जो है शरीर स्वच्छ रहता है
0: जी भैया
1: और जो हम
0: क्योंकि
1: स्वस्थ रहते हैं।
0: हाँ भैया देखो भैया, हम जब हम गांव में रह रहे हैं ना भैया, और हम गांव में रह के अगर हम पशुपालन ना करें तो बेकार है,
1: बिल्कुल भैया,
0: क्योंकि बस एक पंथ दुई काज ही जाते हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: भैया साथियों, खेती और पशुपालन को संबंध बरसों पुरानो है और यही भारत की असली ताकत है।
1: हाँ बिल्कुल भैया, देखो पशु पालन अवश्य करें खेती के साथ
0: जी
1: साथ।
0: भैया
1: और भैया आज
0: हाँ भैया, आप
1: मुस्कुरा रहे हो
0: भैया
1: आप।
0: मुस्कुरा कर रहा है ना दीपक भैया। आज हम अभी बिल्कुल जब आए अपने स्टूडियो में तो 1 कप चाय जरूर पी के आए,
1: अच्छा
0: तो वैसे आज चाय को ध्यान आएगा कि भैया आज विश्व चाय दिवस भी
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल।
0: चाय बिना चैन कहाँ रे, ये सिर्फ गानों ना है भैया, भारत की रंगों में दौड़ती हकीकत है।
1: अच्छा
0: सुबह की पहली किरण हो या शाम की थकान, दोस्तों की गपशप हो या ऑफिस की टेंशन, 1 कप चाय भैया सब संभाल लेती है।
1: हाँ बिल्कुल, दुनिया इसी प्यार को सलाम करने के लिए आज 21 मई को विश्व चाय दिवस मनाती है।
0: बिल्कुल सही कहा भैया। और एक चीज और, दीपक भैया,
1: जी
0: चाय हमारे देश की संस्कृति में गहराई से जुड़ी है।
1: जी
0: गांव के चौपालों से लेकर बड़े शहरों तक
1: हाँ
0: हर जगह चाय लोगों को एक साथ बैठने और विचार साझा करने को एक अवसर देती है।
1: देखो भैया, विश्व चाय दिवस मनाने को दे समारोह यही ना है। देखो जैसे बाकी साक्षात जैसे चाय उत्पादन से जुड़े किसान और जैसे मजदूरों के योगदान को भी सम्मान दिया जाता है।
0: बिल्कुल सही बात, सही कहा आपने। हमारे देश में लाखों किसान भैया जो है ना, वो चाय की खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं। असम है, दार्जिलिंग और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में चाय की खेती बड़े स्तर पर की जाती है, और चाय उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
1: भैया चाय उत्पादन से जुड़े मेहनत करने वाले जो किसान हैं हमारे और जैसे मजदूर हैं,
0: जी
1: उनकी स्थिति में बहुत सुधार हुआ
0: जी
1: और उन्हें उचित मूल्य और अच्छी सुविधाएं और सुरक्षित कार्य वातावरण मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि किसान खुशहाल होंगे तभी अच्छी गुणवत्ता वाली चाय लोगों तक पहुंच सकेगी।
0: जी भैया। तो और भैया, हम अपने एक चीज़ सब लोगों से जानना चाहेंगे,
1: जी
0: जैसे हम कहीं दूर जाते हैं या मतलब घूमन जाते हैं, तो हम क्यों ना अपने जो छोटे छोटे नुक्कड़ पर हमारे जो चाय के स्टॉल लगे होते हैं, हम उनसे ही चाय पी लें। क्योंकि उनसे क्या होता है, उनको स्टॉल तो छोटे होते हैं भैया,
1: हाँ
0: लेकिन उनकी चाय में एक बहुत बड़ी भावना जुड़ी होती है, और
1: बिल्कुल
0: उससे होता का हम 10 रुपये की अगर चाय पियेंगे तो उसी से उनको खर्चा चलता रहता है। तो छोटे छोटे नुक्कड़ पर हम चाय पी लें। बड़े तो बड़े बड़े होटल पर तो हम लोग जाते हैं, मतलब हमारे जब लोग पीते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे नुक्कड़ पर चाय पिए जिससे कि उनको रोजगार को साधन चलता है भैया।
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया,
0: साथियों, आज हमारे जो चर्चा का विषय हो वो खेती के साथ पशुपालन और विश्व चाय दिवस पर है। और
1: और भैया
0: जी
1: अब
0: भैया,
1: आज है महीने को तीसरा गुरुवार
0: बिल्कुल भैया, हाँ
1: और तीसरे गुरुवार को हम सुनवाते हैं आकाशवाणी गांव में।
0: जी भैया,
1: तो इसी बीच हमारे हमारे पंकज भैया गए एक गांव
0: जी भैया,
1: आकाशवाणी गांव में, तो उनने हमारे किसान साथियों से विकास कार्यन पे और खेती बाड़ी पे और पशुपालन पे बातचीत करी। आप वो सुन लेते हैं।
0: साथियों, आज हम कार्यक्रम आकाशवाणी गांव के अंतर्गत पहुंचे हैं गांव परचई में, जो ब्लॉक सेरगढ़ में पड़ते हैं, और यहां हमने अपने बहुत सारे किसान साथियों से बातचीत करी, और वहां हमने एक भैया जी से बातचीत करी। भैया का नाम है आपको?
2: अनमोल।
0: परचई गांव के निवासी हो
2: जी?
0: जाको ब्लॉक कौन सा पड़ता है?
2: सेरगढ़।
0: अनमोल भैया, मैं आपकी उम्र की बात करूं तो आपकी लगभग कितनी उम्र होगी?
2: 50 साल।
0: आप खेती बाड़ी करते हो?
2: जी हाँ।
0: अच्छा, खेती में बात करो तो इस समय आपके लगभग कितनी खेती है?
2: अभी मेरे पास 5 बीघे की खेती है।
0: 5 बीघा, तो उसमें आपने क्या कर रखो है?
2: अभी गन्ना है लगा हुआ उसमें।
0: जो आपका गांव है, हम देख रहे हैं कि इस समय बहुत साफ सुथरा गांव है आपका। हम जब पहले आपके गांव आते हैं ना भाई परचे में, तो थोड़ी सी गंदगी वगैरह रहती है आपके गांव में, सड़कों पर घूरा पड़ा रहता था, लेकिन आज देख रहे हैं हम कि आपके गांव में बहुत विकास हो गया है। आपने अपने समय से अब तक अपने गांव में क्या क्या परिवर्तन देखो है?
2: अपने समय से अब तक हमने बहुत परिवर्तन देखा है। पहले तो कच्ची नालियां थी, खड़ंजा थे
0: जी,
2: जगह जगह मिट्टी भी नहीं थी पड़ी हुई
0: जी,
2: पानी जल भराव रहता था, बीमारियां बहुत होती थी गांव में
0: जी।
2: इतना परिवर्तन हो गया, बहुत साफ सुथरा ही है
0: जी।
2: और स्वच्छ भारत मिशन के तहत
0: जी
2: हर गांव में विकास हो रहा है
0: जी। अच्छा भैया, मैं बात करूं आपके यहाँ शिक्षा की, तो आपके यहाँ लगभग कितने विद्यालय हैं?
2: हमारे यहाँ पर 2 विद्यालय हैं
0: जी, और प्राइवेट स्कूल भी है?
2: 2 प्राइवेट स्कूल हैं।
0: तो आपके यहाँ पढ़ाई का जो माध्यम है वो बढ़िया है?
2: हाँ, पढ़ाई का माध्यम बढ़िया है।
0: आप अपने बच्चे कहाँ पढ़ाते हो?
2: हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ता है।
0: अच्छा, पढ़ाई ठीक होती है भैया?
2: हाँ, पढ़ाई ठीक होती है।
0: जो वहाँ के स्टाफ है वो समय से आते हैं?
2: अरे समय से आते हैं बिल्कुल, पहले से तो बहुत परिवर्तन हो गया है, अब तो टाइम से आते हैं और पढ़ाई भी अच्छी होती है। अब तो सरकार ने इंग्लिश मीडियम बना दिया है सरकारी स्कूल, हर तरफ देखो टाइलें लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, हर सुविधा मिल रही है अब तो स्कूल में बच्चों के लिए। खाने को भी मिल रहा है, किताबें भी मिल रही है, ड्रेस भी मिल रहे है, हर चीज मिल रही है अब तो।
0: बिल्कुल सही बात बताई आपने। और भैया, अब हमारा जो आपका हम देख रहे हैं जो आंगनवाड़ी जो केंद्र है वो भी आपके विद्यालय में पास में ही है ना
2: जी?
0: तो आंगनवाड़ी केंद्र आपके समय से खुलता है भैया?
2: जी टाइम से खुलता है वो।
0: जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं और जो सहायिका बहन है वो समय से आती है?
2: हाँ समय से आती
0: तो
2: है वो।
0: आपको वहाँ पर पूरी सुविधा मिल रही है?
2: जी पूरी सुविधा मिलती है।
3: जो पोषाहार है और आपके बच्चों के लिए पोषाहार है वो समय से वितरित होता है?
2: हाँ, बच्चों के लिए मिलता है, गर्भवती महिलाएं उनको भी मिलता है ये।
3: तो भैया एक चीज और है कि आपके गांव में आशा भी होंगी?
2: जी आशा है।
3: आशा है आपके गांव में?
2: दो आशा है।
3: अच्छा, जो आशा है तो हमारी जो ब्लॉक से ANM बहन जी आती है टीकाकरण के लिए, वो समय से आती है?
2: जी वो समय से आती हैं, आशा सहयोग करते हैं उनका।
3: क्योंकि साथियों आशाओं का गांव में भी बहुत बड़ा योगदान है और वो उसी गांव की रहने वाली होती है। जो स्वास्थ्य से संबंधित जो जितनी भी बातें होती हैं वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं माताएं बहनें उनके लिए समझाती हैं और समय पर उनका टीकाकरण कराती हैं। क्योंकि साथियों जब समय पर टीकाकरण होगा तो गर्भवती बहनें ठीक रहेंगी वो। चलिए आपने हमारे साथियों को अच्छी जानकारी दी। और भैया हमारे एक भैया और हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं उनको परिचय। भैया आपको क्या नाम है?
4: फरीद हुसैन।
3: आप भी जय परिचय के निवासी हो? फरीद भाई आपकी लगभग कितनी उम्र है भैया?
4: 25 साल।
3: 25 साल। आप क्या करते हो?
4: 5 बीघे में बाग है और अच्छा। बकरी वगैरह पालते हैं।
3: इस समय आप वाक की देख रख के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हो?
4: पहले तो स्प्रे वगैरह करी थी
3: जी,
4: उसके बाद हमने जड़ में चूना वगैरह लगाया था, पन्नी लपेटी थी।
3: पन्नी लगाई। अरे भैया एक बात बताइए, जड़ों पर कुछ लोग चारों तरफ चूना लगा देते हैं और पन्नी बांध देते हैं, तो फिर भैया जाको क्या कारण है?
4: ये इसका कीड़ा चलता है पेड़ पे ना
3: जी,
4: तो पन्नी की वजह से चढ़ नहीं पाता।
3: आप कह रहे हो तो आपके बाग में कौन कौन से आम के पेड़ है?
4: इसमें बम्बई है, फजरी है
3: जी,
4: लंगड़ा है।
3: अच्छा, अगर फजरी की बात करें ना तो अब फजरी आम जो है ना बहुत कम देखने मिल रहा है। हाँ। क्योंकि फजरी आम जो अमिया होती है ना, हमने सुना भैया और हमने खाए भी है और हमारे साथियों को पता होगा कि जो फजरी अमिया होती है वो बड़ा मीठी होती है
4: जी जी।
3: उसका हाँ। आम में तो स्वाद न होते लेकिन जब अमिया खाते हैं तो सब लोग उसके अमिया खाते रहते हैं, बहुत मीठी अमिया होती है
4: जी जी। हमारे बाग में भी एक ही पेड़ है।
3: अच्छा, फजरी एक ही पेड़ है?
4: एक ही पेड़ है, लंगड़े के हैं तीन।
3: तो भैया इस समय आप बाग रखा रहे हो?
4: हाँ हाँ, बाग रखा।
3: तो बाग आप खुद रखा तो या कोई और भी व्यक्ति को रख लेता हो?
4: नहीं, हम खुद लगा लेते हैं।
3: अच्छा, जब आम तैयार हो जाता होगा तब आप उसके और रखते हो, व्यक्ति
4: भेज देते हैं।
3: तो भैया देखो इस समय तो लगभग हम मेरा मानना है कि एक डेढ़ महीने के बाद आम चालू हो जाएगा
4: जी जी, है ना? एक डेढ़ महीने में चालू हो जाएगा।
3: और खेती बाड़ी करते हो आप?
4: नहीं नहीं, खेती बाड़ी।
3: अच्छा, केवल आपका काम बाग का है? बाग लेते हो आप और बकरी पालन करते हो? अच्छा, जहाँ भैया बकरी पालन की बात करी आपने, तो फरीद भाई आपके पास कितनी बकरी है?
4: ये

0: आठ बकरी हैं।
1: अच्छा, आठ बकरी हैं। तो आप बकरी पालन करते हो या और भी पशु पालते हो?
0: नहीं, बकरी पालते हैं।
1: अच्छा, केवल बकरी पालन करते हो। तो भैया, बकरी पालन आप लगभग कब से कर रहे हो?
0: ये हो गई 4 साल है।
1: 4 सालों से आपको फायदा है बकरी पालन में?
0: हाँ, बकरी पालन में फायदा है।
1: अच्छा, अगर मैं बकरी की बात करूँ भैया, बकरी की देखरेख आप कैसे करते हो?
0: उसकी देखरेख, सफाई वगैरह।
1: अच्छा, एक बकरी लगभग भैया जब आपकी ब्याह आती है तो लगभग कितना दूध देती है वो?
0: दोनों टाइम में डेली।
1: चलिए, आपने हमारे साथियों को अच्छी जानकारी दी। और भैया, एक भैया हमारे सामने और मुस्कुरा रहे हैं, उन भैया से पूछ लेते हैं उनको परिचय। भैया, का नाम है आपको?
2: जी, नाम मेरा विजेंद्र पाल।
1: तो आप जग परिचय के निवासी हो?
2: जी, ग्राम परिचय।
1: भैया, अगर मैं आपकी उम्र की बात करूँ, कितनी उम्र होगी आपकी?
2: मेरी एज 25 साल।
1: का करते हो आप?
2: जी साहब, खेती बाड़ी काम करती
1: है। लगभग कितनी खेती है?
2: 15 बीघा।
1: अगर मैं फसलों की बात करूँ तो आप अपनी खेती में कौन कौन सी फसल करते हो?
2: स्टम सर, मक्का है हमारे पास।
1: तो आप मक्का लगभग कितने बीघा में कर रखी है आपने?
2: 5 बीघे में।
1: मक्का की बात करूँ, कब बोई थी आपने मक्का?
2: फरवरी में।
1: तो लगभग ये कितने दिनों में तैयार हो जाती है मक्का हमारी?
2: 90 दिनों में।
1: तो इस समय आपकी मक्का तैयार होगी?
2: मक्का तैयार है, डूट रही है मक्का हमारी।
1: अच्छा, अगर मैं भैया मौसम की बात करूँ तो मक्का में आपने किस वैरायटी की मक्का बोई है?
2: 1844।
1: अच्छा, क्योंकि ये हम साथी जानते हैं कि इसकी पैदावार ठीक है, इसकी क्या खासियत है, आपने क्यों बोई? जो
2: ये मक्का पैदावार में 20 से 25 क्विंटल एकड़ की निकलती है।
1: मैं अगर 20 दर की बात करूँ, जब आपने मक्का बोई तो लगभग 1 एकड़ में लगभग कितना बीज पड़ जाता है?
2: 8 किलो से 10 किलो तक पड़ता है।
1: अच्छा, 1 एकड़ में 8 से 10 किलो बीज पड़ जाता है। अच्छा, और भैया अगर मैं जैसे बोने की विधि बात करूं तो आपने किस विधि से कितनी दूरी पर बोई?
2: लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर।
1: अच्छा, लाइन से लाइन की दूरी हो 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर। अच्छा भैया, गहराई की बात करूं मैं, जो हम बीज डालते हैं लगभग कितनी गहराई पर डालो आपने?
2: 4 से 5 सेंटीमीटर से।
1: अच्छा, ये मैं बात करूं पैदावार की तो लगभग आप कह रहे हो मैं 1 एकड़ में मेरे है, लगभग 1 एकड़ में कितनी पैदावार निकल जाती है आपकी?
2: 20 से 25 क्विंटल तक।
1: अगर मैं मक्का में रोग की बात करूं तो मक्का में कौन कौन से रोग लग जाते हैं?
2: एक तो पीली पड़ जाती है पत्ती, पानी बढ़ जाता है, सड़ने लगता है, सूख जाती है मक्का।
1: अच्छा, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है मक्का को?
2: नहीं, कम होती है।
1: कम होती है, यानी ना ज़्यादा ना कम
2: चाहिए उसके लिए?
1: अच्छा, मीडियम पानी चाहिए।
2: ज़्यादा पानी में सूख जाएगी, सड़ जाएगी फिर वो।
1: अच्छा, यानी पत्ती झुलसा रोग लग जाता है?
2: पीला पड़ जाएगा पत्ता।
1: साथियों, हमारे भैया कह रहे हैं पत्ती झुलसा रोग, क्योंकि हम साथी जानते हैं जब पत्ती झुलसा रोग लग जाता है तो पत्ती पर नाव के आकार के भूरे धब्बे बन जाते हैं, किनारे जो है उसकी पीली पड़ने लगती है और बाद में जो है पत्ती वो सूख जाती है, क्योंकि ये जो होता है भैया बता रहे हैं हमारे, वो ज़्यादा नमी के कारण होता है, नमी के कारण पत्तियाँ सूख जाती हैं और पैदावार कम होती है। अच्छा भैया, एक रोग और लगता है, तना संबंध रोग लग जाता है?
2: जी,
1: इसमें जो है पौधा अचानक सूख कर गिर जाता है और जो भुंटा बनता है ना, वो भुंटा बनने के समय वो ज़्यादा रोग फैलता है, जो
2: बीमारी हो जाती है, तो तैयार हो
1: जाती है। इसके लिए आप क्या करते हो?
2: स्प्रे मारते हैं।
1: अच्छा, आपने लगभग कितनी स्प्रे मार दी होंगी अपने उसमें?
2: 5 स्प्रे मार दी।
1: तो आपने देसी खाद डालो?
2: जी, देसी खाद डाला था हमने।
1: अच्छा भैया, जब आप मक्का तोड़ रहे हैं तो एक पेड़ पर लगभग कितने भुंटे लग जाते हैं?
2: 2 से 4 भुंटे आते हैं।
1: आते हैं, और उसमें हम कुछ देखते ना कि कभी कभी भुंटा हम जब घर लाते हैं तो बाकी जब साफ करता है भुंटा तो बाहर में दाने जो है वे पीले पीले पड़े होते हैं, कुछ कीड़ा लगे हुए होते हैं, जो का कारण होता है?
2: ये सब सूख सी जाती है मक्का ये।
1: अच्छा, हाँ। तो आपकी मक्का सही है, पैदावार ठीक है?
2: मक्का बढ़िया है।
1: अच्छा अच्छा, आप मक्का तोड़ दो तो कब तोड़ते हो, कैसे पहचान करते हो कि हमें भुंटा आप तोड़ना चाहिए?
2: उसका वो चिक्कल बताता है, चिक्कल उसका।
1: अगर उस चिक्कल रहता है
2: जी,
1: और भुंटा के दाने जो है वो कठोर और रंग उसके चमकदार रह जाए, तब आप मक्का तोड़
2: तोड़ते हैं, बिकने में बढ़िया देखे जी, मार्केट भेज देते हैं
1: तुरंत
2: तुरंत।
1: अच्छा, उसको भंडारण न करते हो?
2: जी
1: हाँ, क्योंकि जब आप भंडारण उसको करते हो मतलब, तो भुंटा जब आप तोड़ दो तो उसके बाद हमें भंडारण को भैया अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए
2: जी,
1: क्योंकि बासा होगा ना कि बामन नमी ना रही, और जब नमी ना रही भुंटा में तो वह खराब ना हो। मक्का भी एक हमारे किसान साथियों के लिए बहुत अच्छी फसल है, और इससे भी हम अपना सही तरीके से अगर बोएं तो हम इससे बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए भैया, आपने हमारे किसान साथी को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथियों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष पर आधारित कार्यक्रम, और दीपक भैया,
3: हाँ,
1: अब आप मनोरंजन कराओ भैया।
3: बिल्कुल, अब भैया हमारे किसान साथी मनोरंजन के इंतजार में होंगे।
1: हाँ भैया,
3: हाँ, तो
1: लेकिन भैया उससे पहले सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी किसान साथियों ने सुनो लोकगीत। हमें उम्मीद है लोकगीत सुनकर भी भैया सही हुए होंगे अपने।
1: हाँ भैया, उनके पूरे दिन की थकान है
0: ना,
1: तो भैया उतर गई होगी, है ना भैया, और अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहे होंगे।
0: हाँ बिल्कुल। अब
1: और
0: भैया एक हम भेंटवार्ता लाएं
1: जी भैया,
0: धान से अधिक पैदावार लेने के लिए वैज्ञानिक सुझाव
1: जी,
0: जिस पर डॉक्टर हसन तनवीर से बातचीत करिए अनिल किशोर भैया ने। आप सुन लेते हैं जा भेंटवार्ता।
2: किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हसन तनवीर। आप हैं वैज्ञानिक प्रभारी अधिकारी केवीके बिलारी जनपद मुरादाबाद में हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि जो धान की फसल हमारे किसान भाई आगे आने वाले समय में लेंगे, तो धान से अधिक पैदावार लेने हेतु वैज्ञानिक सुझाव।
3: जी बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि मेरे जरिए आप लोगों ने किसान भाइयों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। और सबसे पहले किसान का उद्देश्य ये होना चाहिए कि कम लागत में
2: जी
3: ज्यादा से ज्यादा उपज लेने की कोशिश करें। तो उसके लिए सबसे पहले जो है प्रजातियों का चयन, जो इस क्षेत्र के आपके मुरादाबाद रामपुर जनपद जो मंडल है, इस मंडल के लिए जो अच्छी प्रजातियां हैं
2: जी
3: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, उसमें मोटे अनाज के लिए जो है PD22, PD24, PD26
2: जी,
3: PD28 और PD30 है।
2: बिल्कुल,
3: ये पंत धान के नाम से होती हैं। और मीडियम जो दाने की होती हैं PR126, PR130 और PR10, इसको हाइब्रिड भी कहते हैं, PR10, ये अच्छी वैरायटियां हैं। और बासमती के लिए जो है आपके PB1692, PB1847, PB1121, PB1509 और PB1718 और PB1885
2: जी,
3: ये इतनी वैरायटियां हैं जो आप इस क्षेत्र के लिए आप लगा सकते हैं। और उसमें हम ये सबसे पहले कहेंगे कि प्रजातियों का चयन सबसे इम्पोर्टेंट है
2: जी,
3: क्योंकि जिस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए प्रजातियां डेवलप की जाती हैं या बनाई जाती हैं उसी क्षेत्र में लगाना चाहिए। उससे जो है फसल का आउटकम मैक्सिमम जो उसको यील्ड मिलती है वो ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं।
2: बिल्कुल सही बात कही है डॉक्टर साहब आपने। देखिए प्रजातियों का चयन बहुत ही अहम है
3: जी।
2: और अब बात आती है कि हमारे किसान भाई आगे आने वाले समय में नर्सरी डालें, तो नर्सरी डालने से पहले जरूरी है कि बीज उपचार जरूर
3: जी जी बिल्कुल।
2: तो बीज उपचार में क्या क्या सावधानी बरतें और कैसे कैसे करें?
3: तो मैं किसान भाइयों से ये, कोई भी फसल करें, धान ही नहीं कोई भी फसल करें, तो उसके लिए सबसे पहले आप बीज का उपचार, और धान की फसल में बीज का उपचार कैसे करेंगे ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ
2: जी।
3: कि आप स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन का एक पैकेट आता है 6 ग्राम का
2: जी,
3: उसको 40 लीटर या 60 लीटर पानी में उसको घोल लें और उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से कार्बेंडाजिम मिला लें और रात भर भीगने दें बीज को, और बीज को भीगने के बाद निकाल लें। निकालने के बाद
2: सुबह को निकाल लें
3: जी। निकाल के उसके बाद पानी निकल जाने दें, फिर उसमें ट्राइकोडर्मा डाल के
2: अच्छा।
3: और वो जो ये आपके जूट वाला बोरा नहीं होता
2: जी, जी।
3: इसमें फैला के अगर उसमें जमाव कर लें तो और अच्छा, और अगर नर्सरी डाल लें तो उसमें जो है मल्चिंग कर लें, मल्चिंग यानी ऊपर से किसी चीज से ढक दें, बिछाव कर दें, ये पुआल वाल से धान पुआल से भी ढक सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जमाव अच्छा होगा और ट्राइकोडर्मा, ये जो 3 चीजों से जो उपचार किया इससे बहुत सारी बीज जनित बीमारियां और जमीन से जनित बीमारियों से काफी हद तक बचाव हो जाएगा,
2: नियंत्रण हो जाएगा
3: जी।
2: तो
3: जी।
2: इस तरह से हमारे किसान भाई शुरुआती दौर में अगर ये काम कर
3: ये काम कर लें तो काफी कुछ उनको जो है फायदा होगा।
2: बिल्कुल
3: जी।
2: तो बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं आने वाले समय में। देखा जाता है कि जब हमारे किसान भाइयों को खेत में धान की फसल खड़ी होती है तब वो करते हैं ट्रीटमेंट, तो उस समय बहुत सारा खर्चा
3: जी। और इसमें जो नर्सरी डालते हैं उसमें क्या होता है कि जब 12-13 दिन की नर्सरी हो जाती है तो उसमें कभी कभी कुछ किसान भाइयों में हल्का हल्का सा सफेद से पत्तियों में सफेदी सी धारी सी दिखाई देने लगती है, तो उसमें क्या होता है कि आयरन की कमी हो जाती है। तो उसमें क्या करेंगे, 20% वाला फेरस सल्फेट लेंगे 40 ग्राम
2: अच्छा,
3: और 200 ग्राम यूरिया
2: जी, जी।
3: ये जो 16 लीटर वाली टंकी आती है, जो किसान भाई, मैं थोड़ा सा किसान भाइयों के ही मतलब से बता दे रहा हूँ इसलिए ताकि उनको आसानी रहे।
2: बिल्कुल।
3: तो ये 16 लीटर वाली टंकी में घोल के, खाली फेरस सल्फेट अकेले नहीं घोलेंगे, यूरिया के साथ 200 ग्राम यूरिया 40 ग्राम फेरस सल्फेट इसको मिला के और उसमें स्प्रे कर देंगे तो उससे इसका बचाव हो जाएगा। और 17-18 दिन की जब पौध होती है तो उसमें कभी कभी किसान भाइयों के जिंक की कमी, ऊपर जो है गहरे भूरे रंग की पत्तियां हो जाती है, झुलसी जाती
2: है नर्सरी में
3: अच्छा। तो जिंक सल्फेट उसमें 33% वाला अगर 50 ग्राम ले लेंगे और 200 ग्राम यूरिया वही 16 लीटर वाली टंकी में घोल के उसका स्प्रे कर देंगे तो उससे जो है इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
2: बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात हम आपसे डॉक्टर साहब यहीं पर और जानना चाहेंगे, जैसे खरपतवार आ जाते हैं।
3: हाँ, हाँ, नर्सरी में
2: जी,
3: नर्सरी में खरपतवार तो, हाथ से ही निकालें,
2: हाथ से
3: बहुत ही। बड़ा एरिया नहीं रहता है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि हाथ से निकलवाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। हर वक्त दवा का इस्तेमाल ना करें।
2: जी जी।
3: और मल्चिंग जो कर देते हैं, जो ऊपर से ढक देते हैं, उससे भी खरपतवार काफी हद तक नियंत्रित हो जाता है।
2: अच्छा
3: जी,
2: सही बात है डॉक्टर साहब। तो इस तरह से हमारे किसान भाई नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन रोपाई के समय हमारे किसान भाइयों को क्या क्या करना चाहिए?
3: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम अपनी जो नर्सरी है वो जो तैयार हो रही है
2: जी जी,
3: उसका समय देखना है 25 से 30 दिन मैक्सिमम रहता है, 25 दिन से ऊपर पौध को ना जाना, और मई के अंत में
2: जी,
3: या जून के पहले सप्ताह 15 जून तक भी लगा सकते हैं।
2: अच्छा,
3: जो नॉर्मल वैरायटी है
2: जी जी,
3: जो मोटे में वो मीडियम में, लेकिन अच्छा, बासमती की और थोड़ा बाद में भी लगाई जा सकती
2: अच्छा,
3: है और लगाना चाहिए बाद में, उसके फायदे हैं अभी मैं अच्छा, बताता हूँ आपको आगे। तो ये जब आप खेत में जो है नर्सरी को ले जा रहे हैं, मतलब रोपण के लिए, रोपाई के लिए, तो उसमें क्या करेंगे, कंधेर करते हैं किसान भाई, कंधेर करने के बाद उसमें एनपीके उसी वक्त डाल दें, 120 60 40 60 और 60

0: का रेशियो है
1: जी जी
0: जो खाद का है।
1: अच्छा
0: ठीक है, ये पर हेक्टेयर है, मतलब एक हेक्टेयर के लिए, तो उसमें जो है आप आधी मात्रा नाइट्रोजन की
1: जी जी
0: और पूरी पूरी मात्रा जो है पोटास और फास्फोरस की, ये पूरी जो है उसी में कंधेड़ में ही डलवा दें
1: जी जी।
0: और जो बाकी आधी मात्रा जो नत्रजन की बच रही है उसमें क्या करेंगे आप कि पहला जो है 20 से 25 दिन पे या 30 से 35 दिन पे भी दे सकते हैं, और दूसरी जो डोज देंगे आप कल्ले निकलते वक्त जरूर दिलवाएं।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि कल्ले निकलते वक्त अवश्य जो है उसमें जो है यूरिया का डालना अति आवश्यक है, और उसी में जब आप जब 2-3 दिन 4 दिन की पौध हो जाती है तो उसमें 3 लीटर के हिसाब से ब्यूटाक्लोर
1: जी जी
0: ब्यूटाक्लोर डलवा दें जब पानी लगा रहे उसमें।
1: अच्छा,
0: तो उससे खरपतवार का भी नियंत्रण हो जाता है।
1: बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, ये जो है हमारे किसान भाई जब धान की रोपाई करें उसके बाद उनको तुरंत करनी है,
0: तुरंत करनी। और जिंक सल्फेट जो है जब कंधेड़ की शुरुआत हो
1: जी,
0: तो जिंक सल्फेट उसमें जिंक सल्फेट डलवा दें तो उससे बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट उसको जो है जैसे जिंक सल्फेट जब मिल जाता है तो खैरा रोग की बीमारी से बचाव हो जाता है। तो उसमें अगर 33% वाला है तो वो 15 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं, और अगर वो नहीं मिलता है 21% वाला है तो उसको जो है आप कर लीजिए करीब 22 से 25 किलो।
1: अच्छा,
0: वो देवड़ी हो जाएगी उसकी
1: जी,
0: क्योंकि 33 है उधर 21% है तो जो है 1 हेक्टेयर में डाल सकते हैं।
1: अच्छा
0: ठीक है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हम पिछले 2 वर्ष से ये देखते चले आ रहे हैं कि किसान भाइयों के धानों में कीट लग जाते
0: हैं। मैं अभी उसको मैं ये बताना चाह रहा था, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया
1: जी,
0: कि जैसे कीट जो है क्या होता है नर्सरी में
1: जी जी
0: नर्सरी से ही लगना शुरू हो जा रहे हैं, जो अर्ली शूट बोरर है
1: जी
0: जो पत्ती तना भेदक है वो शुरू में लग जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे किसान भाई अगर नर्सरी में भी लगता है
1: जी,
0: तो कार्टाप पाउडर एक आता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: कार्टाप पाउडर
1: 50 SP।
0: हाँ हाँ 50 SP
1: जी जी,
0: उसको जो है क्या करेंगे कि 2 ग्राम प्रति लीटर, क्योंकि आप नर्सरी का तो एरिया पूरे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते
1: जी,
0: लेकिन
1: जी,
0: अगर आप खेत में जाएंगे तो 1 हेक्टेयर अगर एरिया है तो उसमें 1 किलोग्राम 500 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं। ठीक
1: अच्छा,
0: है, वैसे आप मोटा मोटा ये जान लीजिए कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के और उसका स्प्रे करवा देंगे और 15 दिन के अंतराल पे करा देंगे तो आपकी शूट अर्ली शूट बोरर से और दूसरे और कीड़ों से भी बचाव हो जाए।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई है डॉक्टर साहब, इस तरह से हमारे किसान भाई जो है अपने धान की फसल को बचा सकते हैं।
0: हाँ, और ये कीट जो है आपका इतना खतरनाक होता है कि नर्सरी अवस्था में भी आता है, वनस्पति अवस्था में आता है और प्रजनन अवस्था में भी आता है, पौधे की प्रजनन अवस्था यानी जब बीज बनना शुरू हो जाता है उसमें, उस वक्त भी आ जाता है और काट देता है नीचे से तो पूरा पौधा सूख जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत और आती है हमारे किसान भाइयों के, जब किसान भाई यूरिया देते हैं देखा जाता है आजकल यूरिया बहुत ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं।
0: हाँ, बहुत ज्यादा।
1: अब सरकार का जोर यह है कि हमारे किसान भाई यूरिया को सीमित मात्रा में।
0: हाँ, ऐसा है, इसमें भी विभिन्न प्रकार की रिसर्चों से जो हम लोगों के वैज्ञानिक करते रहते हैं
1: जी,
0: कई जगह उसके इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं
1: जी,
0: तो जो रेकमेंडेड डोज है हर क्षेत्र के लिए
1: जी, जी,
0: वो रेकमेंडेड डोज के ही अकॉर्डिंगली दें। और सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच करा लें।
1: बिल्कुल,
0: मिट्टी की जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आए उसके हिसाब से ही किसान भाई, मैं बार बार कहता हूं कि किसान भाई अपने खेत में उसकी जो है क्या कहते हैं यूरिया की NPK की और पोटाश की मात्रा को संतुलित तरीके से दें, ये नहीं कि अधाधुंध दें, उससे क्या है उनके खेत भी बंजर हो जाएंगे आने वाले दिनों में। और सड़ी हुई गोबर की खाद यानी FYM जिसको कहते हैं और वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल अपने खेत में अवश्य करें। जैसे मैं बार बार ये कहता हूं कि जैसे आपके 1 हेक्टेयर में
1: जी
0: जो FYM है फार्म यार्ड मैन्योर, उसी को सड़ी हुई गोबर की खाद भी कहते हैं, तो वो आप 30 टन के हिसाब से भी डाल सकते हैं 1 हेक्टेयर में, यानी 2 टन यहाँ के हिसाब से है 2-2.5 टन बीघे के हिसाब से भी कर सकते हैं, तो उसमें उनको फायदा होगा। फायदा होगा तो उससे आपकी जो है क्या कहते हैं जीवाश्म बढ़ेगा और नत्रजन भी बढ़ेगी और फास्फोरस भी बढ़ेगी पोटाश भी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा कि आपको आगे चल के 2-4 साल में बहुत कम मात्रा इनकी देनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, तो इस तरह से हमारे किसान भाई अपनी फसलों को उर्वरक प्रबंधन भी कर सकते हैं। और बात आपने कही थी कीट की रोकथाम के बारे में भी, आपने बता दिया कि 3 स्टेज पर वो अटैक करता है। तो इन तीनों अवस्थाओं में हमारे किसान भाई नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जब धान की बाल निकलती है तो उस समय गंदी कीट का प्रकोप हो जाता है।
0: गंदी कीट का प्रकोप होता है तो उस वक्त जो है उसमें भी आप जो है 0.5 ml एक दवा है थाई में थॉक्सोन
1: जी जी,
0: उसको आप 0.5 ml यानी 0.5 ml प्रति लीटर यानी 8 ml 16 लीटर वाली टंकी में घोल के उसका स्प्रे कर सकते हैं।
1: अच्छा, एक टंकी में 8 ml दवा डाल लें।
0: हाँ,
1: उसका और जितनी टंकी लगे
0: उस हिसाब से। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है किसान भाइयों के लिए। अगर उनको एक हेक्टेयर में बता देते हैं तो वो बेचारे परेशान हो रहे हैं कि साहब हम कैसे करें।
1: जी जी,
0: तो इसलिए मैं बहुत आसान तरीके से उनको बता दे रहा हूँ कि किसान भाइयों जो है आप जिस तरह से हम रिकमेंडेड डोज बता रहे हैं उसी तरह से आप दीजिए, तो आपको काफी हद तक जो है बचा। और जब गंधी बग की शुरुआत हो तभी लगा दें इसको, और 15 दिन के अंतराल पे दे देंगे, दोबारा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं।
1: अच्छा, यहीं पर डॉक्टर साहब एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई धान उगाते हैं उसमें बीमारी लग जाती है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो झुलसा रोग लग जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि आज फसल सही है और 24 घंटे बाद पता लगा
0: पूरी झुलसा लग। लेकिन मैं उसके लिए आपको बताऊं, जो आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन से जो आपने सीड ट्रीटमेंट, मैं इसीलिए शुरू में ही मैंने सीड ट्रीटमेंट सबसे पहले लिया। सीड ट्रीटमेंट कर देंगे तो इनसे इन जो दो तीन बीमारियां जो मेजर है, ब्लास्ट है और झुलसा रोग, इनसे जो है और ब्राउन स्पॉट, इनसे काफी हद तक बचाव हो जाएगा। और अच्छा, नहीं होता अगर मान लो खड़ी फसल में भी आता है
1: जी जी,
0: तो जैसे टिलरिंग स्टेज पे सबसे ज्यादा तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें झुलसा रोग के लिए।
1: अच्छा,
0: और 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे कर सकते हैं।
1: तो इस तरह से
0: बिल्कुल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। और अगर ब्लास्ट आता है तो टेबुकोना शुरुआत हो तभी कर दें, टेबुकोनाजोल से 50% वाले से उसका स्प्रे कर सकते।
1: तो इस तरह से हमारे किसान भाई बीमारी से भी बचा सकते हैं। और आपने बहुत अच्छा तरीका बताया कि जब हमारे किसान भाई नर्सरी में पौधे डालते हैं तो उसी समय बीज उपचार
0: कर लें,
1: तो बीज उपचार से हम जो है काफी हद तक बीमारियों को बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल, बीमारियों को पूरी तौर से बचा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे किसान भाइयों के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे जरूर लाभान्वित होंगे। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और दीपक भैया
3: जी,
2: देखो भैया अब सीजन जो आ रहा हमारा वो धान को तो है ही भैया।
3: हाँ,
2: है ना। और हमारे किसान साथी धान की जो नर्सरी है
3: कुछ समय बाद भैया डालेंगे।
2: तो भैया इसी से संबंधित हमने अपने किसान साथियों को सुनवाई एक भेंट वार्ता, जाको विषय हो धान से अधिक पैदावार लेने हेतु वैज्ञानिक सुझाव क्या हैं। इस विषय पर जो जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हसन तनवीर जी, और आपसे बातचीत कर जानकारी जुटा रहे थे हमारे भैया अनिल। तो भैया हम उम्मीद करते हैं कि धान से संबंधित ये बातें हमारे किसान साथियों ने गौर से सुनी होगी और बाकू पर पूर्ण लाभ लेंगे।
3: देखो भैया, अगर हम नर्सरी से ही अगर किसी चीज को अगर ट्रीटमेंट कर रहे ना जैसे फसल को, तो भैया आगे के लिए हमें कोई बीमारी बामन ना लगे।
2: जी भैया,
3: तो भैया
2: आज हमारे किसान साथियों को आप कृषि संकेत में क्या जानकारी लेकर आए भैया?
3: कृषि संकेत में भैया लाए फसलों में कीट प्रबंधन।
2: अच्छा भैया,
3: देखो भैया कीट जो हमारी फसलों में लगता है वो काफी नुकसान पहुंचाता है, और वैसे जो हमारा उत्पादन घट जाता है। और आजकल जो हम देख रहे हैं भैया, जिससे जो है बाको नियंत्रण करने के लिए हम जैविक तौर पर या यांत्रिक तौर पर या रासायनिक को उपयोग करके बाको उपयोग में लाते हैं।
2: जी भैया, भैया अगर हम बात करें सांस्कृतिक उपाय में ना, तो ये जो तरीका है वो कीटों के प्रकोप को शुरू होने से पहले बहुत कम जैसा हम कर सकते हैं। देखो जाके लिए हम समय पर बुवाई कर लें और फसल चक्र अपना लें।
3: बिल्कुल भैया, और देखो जैसे इस समय गर्मी चल रही है
2: जी भैया,
3: तो हम गहरी जुताई कर लें, ताकि जो है बाकी जो नीचे के अंडा होते हैं प्यूपा वे बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे।
2: जी भैया,
3: और खेत में जो है साफ सफाई अवश्य रखें।
2: हाँ, और संतुलित उर्वरक को जो है वो प्रयोग करें। भैया बात करें भैया हम भौतिक उपाय ना दीपक भैया, तो संक्रमित जो पौधे होते हैं ना वो या पत्तियां होती हैं बाको हम हटा दें।
3: हाँ,
2: है ना। और हाथ से जो कीट पकड़कर बाको जो भी है वो को नष्ट कर दे।
3: हाँ भैया, आजकल जो है हम देख रहे हैं लाइट ट्रैप को प्रयोग करे जा रहे हो भैया।
2: हाँ भैया,
3: और फेरोमैन ट्रैप लगा रहे हैं हमारे कुछ किसान साथी, जिससे वो चिपचिपे होता भैया वहाँ पर जो है वो जो हमारे थ्रिप्स माइट वगैरह वैसी होती है वह चिपक जाती है
2: जी।
3: और तो भैया जैविक तौर पर नियंत्रण कर सकते हैं। जैविक
2: तौर भैया
3: देखो बापक के लिए जो है हम ट्राइकोडर्मा परजीवी आता है
2: जी,
3: या बबेरिया बेशियाना एक फपूंद नाशक आती है
2: जी,
3: इन चीजों को ले सकते हैं। और कुछ कीटनाशक हमारे नीम के आ रहे हैं
2: जी,
3: जैसे नीम आधारित जैविक कीट आ रहा हुआ है बाको प्रयोग कर सकते हैं
2: जी। और देखो भैया ना, और बात करें हम रासायनिक नियंत्रण की, देखो भैया जाको उपयोग तो हमें कम करना चाहिए, लेकिन जब कीट प्रकोप बहुत ज्यादा हानि पहुंचा दे तब हम जाको प्रयोग कर सकते हैं।
3: हाँ,
2: जाके लिए हम सही दवा और सही मात्रा जरूर चुन लें।
3: बिल्कुल। और भैया अपने आपको सुरक्षा बहुत अवश्य रखें, जैसे अलग अलग दवाई को जो है अलग अलग तरीका से करें, जैसे एक दवा आज हमने लगा दी, बस दवाई को दूसरी बार में ना लगावें।
2: और भैया देखो जब दवाई लगाते जावे ना हम भैया हाँ। तो भैया जो सुरक्षा उपकरण है वे जरूर पहने।
3: बिल्कुल भैया दवाइयाँ जो होती हैं देखो कीट वाली वासे जो है कीट को तो नुकसान पहुँचते ही, अगर हमने बाकूबू कर लो तो हमको नुकसान हो सकता है।
2: हाँ, तो भैया जो तो भैया हमारे आज कृषि संकेत में फसलों में कीट प्रबंधन के बारे में बात
3: जी।
2: और भैया देखो जो कल के जो कार्यक्रम है ना भैया हाँ। जो जानकारी दी जाएगी वो जो चर्चा को बिसर आए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और कार्यक्रम कृषि संख्या समाधान भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी आपको पशुओं में बांझपन समस्या कारण व उनको निवारण जब ऐसा पर जो जानकारी देंगे वो देंगे डॉक्टर मनोज कुमार और उनसे बातचीत करेंगे हमारे जसमेंद्र भैया। लोकगीत सुनाया जाएगा आपको और कृषि संकेत में जो जानकारी दी जाएगी वो फसल पूर्व मिट्टी और खाद प्रबंधन मौसम की जानकारी दी जाएगी और जो प्रोग्राम कल को लेकर हमारे भैया उपस्थित होंगे वो होंगे प्रवीण भैया और हेमपल भैया। और देखो भैया अब जो घड़ी की सुई है ना वो हमें इजाज़त न दे रही
3: तो भैया भैया चलते चलते कल के मौसम को जानकारी देने अपने किसान साथियों को। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता की बात करें 35% और हवा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा चलन की उम्मीद है।
2: तो भैया अब अपने भैया पंकज
3: और दीपक को दो कार्यक्रम से विदा। राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं विविधा कार्यक्रम में प्रमोद प्रियांशु से परिचर्चा। विषय है सोशल मीडिया नए आयाम और स्रोत।
1: तो नमस्कार, परिचर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिस विषय को लेकर हम आपके बीच में हैं, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया एक ऐसा विषय है जो हर किसी के लिए बेहद खास है। जवान हो या बूढ़ा, महिला हो या पुरुष, हर कोई आजकल रील्स का दीवाना है, यूट्यूब कंटेंट का। और कहीं ना कहीं हम अब बहुत अधिक समय मोबाइल पर बिताते हैं और मोबाइल के साथ साथ विशेष रूप से सोशल मीडिया पर बिताते हैं। जैसे जैसे सोशल मीडिया का उदय हुआ, उससे जुड़े जॉब्स, उससे जुड़े कारोबार व्यवसाय भी बढ़ चले और जो लोग इस फील्ड में कार्य करते हैं उनको मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने का। इसी संबंध में हमने देखा कि जैसे जैसे भारत में IT की क्रांति आई, विशेष रूप से 2015-16 के बाद से, जब से 4G और 5G आया है, डेटा बहुत सस्ता हुआ है, लोगों ने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया और उसमें भी एक प्रोफेशनल के रूप में कार्य करना शुरू किया। हम देखते हैं कि बहुत से इवेंट आजकल लाइव कवरेज के माध्यम से, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने सुनने को मिलते हैं। इसके पीछे एक पूरी टीम रहती है, उनका कार्य रहता है, सेटअप रहता है, कैसे वो कार्य करते हैं, क्या कुछ चीज़ें वो आजमाते हैं, किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में जानकारी आप सब तक साझा करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज में हैं बरेली से आए प्रमोद जी और प्रियांशु जी, आप तीनों का ही कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रमोद जी, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ये लाइव स्ट्रीमिंग का कार्य कब से शुरू किया है?
2: मान के चलिए 2020 से। इससे पहले मैं फोटोग्राफी 94 से कर रहा हूँ।
1: आप पहले फोटोग्राफी क्या करते थे?
2: मेरा फोटोग्राफी का ही पुराना काम है और आज भी मैं कर ही रहा हूँ उसको भी जी। लेकिन फोटोग्राफी के साथ साथ इसी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, क्योंकि अब लाइव का टाइम है। पहले हम वीडियो रिकॉर्डिंग किया करते थे फिर कस्टमर को देते थे। अब जैसे जैसे सोशल मीडिया डेवलप हुआ, इंटरनेट की सुविधाएं होनी शुरू हो गई, तब 2020 से फिर हम इस क्षेत्र में लगातार ही काम कर रहे हैं और हल्के हल्के ये सारा डेवलप होता चला जा रहा है।
1: हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक प्रोग्राम हों या धार्मिक प्रोग्राम हों, उनकी रिकॉर्डिंग्स, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग हमें सजीव देखने को मिलती है, यूट्यूब हो या अब तो TV चैनल्स के माध्यम से भी हम सजीव देखते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि आप फोटोग्राफी के क्षेत्र से पहले से ही जुड़े हुए थे, तो तकनीक में जो बदलाव आपने महसूस किया उसको कैसे अडॉप्ट किया, क्या कुछ कोई चैलेंज भी आपके सामने आया सीखने में, या आसानी से आप ढल गए नई चीज़ों के अनुसार?
2: देखिए, थोड़ा बहुत चैलेंज तो आते ही हैं और अपने आप को इसमें घुसना होता है, अपडेट करना होता है, समझना होता है। और अपने गुरु और उस्ताद के माध्यम से पहले हमने इस फोटोग्राफी में कदम रखा, उन्होंने ही हमें उंगली पकड़ के चलाया, फिर धीरे धीरे नए उस्ताद मिले, नए गुरु मिले, उनसे सीखा। और साथ ही साथ अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जैसे जैसे बदलाव आते हैं, हमारी नई नई कंपनियां आती हैं, वो भी हमें वर्कशॉप के माध्यम से ट्रेनिंग देती हैं और काफी कुछ अब हमारे लिए ये सोशल मीडिया भी हमें सिखाने का काम कर रहा है
1: जी।
2: तो यूट्यूब के माध्यम से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए नए सॉफ्टवेयर, नई नई टेक्नोलॉजी जो आती है वो इसमें धीरे धीरे हमें सीखने को मिलता जाता है। और
1: जी, आपने फोटोग्राफी की बात की, उसी क्षेत्र में स्टिल फोटोग्राफी बेहद फेमस है आजकल, हर कोई चाहता है कि स्टिल फोटोग्राफी भी साथ साथ कराए। तो इस विषय में बताइए कि कैसे कार्य होता है, क्या इसके लिए भी कुछ अलग से सीखना पड़ता है, या ये केवल और केवल एक आर्ट का क्षेत्र है, अपने टैलेंट का क्षेत्र है?
2: आर्ट तो है ही है, शौक का क्षेत्र भी है और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को आपको सीखना तो पड़ेगा। केवल शौक से काम नहीं चलेगा, अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो उसको समय समय पर सीखना पड़ेगा। और मैंने स्टिल फोटोग्राफी से ही शुरुआत करी थी 94 में, उसके बाद धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ना शुरू किया। वीडियो में पहले जो कैमरे आते थे और उनसे अब कम से कम 5 times जनरेशन का चेंज आया है,
1: बिल्कुल आया,
2: मैंने ये देखा है। तो आज बहुत कुछ चेंज आया है और पहले जब हम किया करते थे एक नेगेटिव पे शूट किया करते थे और आज डिजिटल के माध्यम से सीधी सीधी कैमरे में एक मेमोरी कार्ड पे क्लिक हो रहा है
1: जी।
2: और डेटा सेव हो रहा है, पहले से सुरक्षित भी हुआ है, इजी भी हुआ है, कस्टमर के लिए बहुत आसानी हुई है और सभी को सुविधाजनक रिजल्ट आने शुरू हो गए
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल ये भी देखने में आता है कि जो ग्रूम साइड है या ब्राइड साइड है उनके फैमिली मेंबर्स भी, उनके दोस्त भी, वो चाहते हैं रील्स बने या कुछ ऐसा मूवी इस तरह की बने जो यादगार हो। नए नए तरह के ट्रेंड्स चलते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, हर कोई उसको फॉलो करना चाहता है, तो आपके सामने भी क्या इस तरह की डिमांड्स आती हैं?
2: खूब आती हैं
1: जी,
2: आए दिन आती हैं, क्योंकि अब जो शादियां हो रही हैं लो बजट की कम और हाई बजट की ज्यादा हैं, तो उनमें हमें बड़ी टीम के साथ काम करना पड़ता है
1: जी,
2: बहुत ही प्रोफेशनल लोगों के साथ, अच्छी टीम के साथ, और कस्टमर को भी बहुत कुछ बताते हुए कि आपको इस तरह से अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको ऐसे ऐसे सुविधाएं आपको भी देनी पड़ेंगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब बातों में कस्टमर समझता है और हमें उसका रिजल्ट भी मिलता है, सपोर्ट भी करता है कस्टमर।
1: जी जी जी, हमारी इस परिचर्चा में एक युवा साथी भी हमारे साथ हैं, प्रियांशु। और प्रियांशु, आपसे खासकर मैं जानना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, गैजेट्स भी उतने हाई फाई होते जा रहे हैं, महंगे भी होते जा रहे हैं, और उनमें अलग अलग तरह की सुविधाएं हैं, अलग अलग तरह के वो फंक्शन इस तरह से हैं कि अच्छे से अच्छा डेटा, अच्छे से अच्छी स्ट्रीमिंग देखने को सुनने को मिलती है। तो आप बताइए कि अगर आप जैसे युवा इस फील्ड में जुड़ रहे हैं, स्ट्रीमिंग में अपना करियर बना रहे हैं, आप तो फैमिली के साथ जुड़े हैं, बहुत से लोग इसको एक स्टार्टअप के रूप में भी देखते हैं या टीम के रूप में भी देखते हैं, जो अलग अलग लोग इकट्ठे होते हैं और एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। क्या अनुभव आपके रहे हैं अब तक, कहाँ कहाँ आपने काम किया, कितने समय से आप अपने फैमिली के साथ जुड़े हैं?
3: मैं अपने पापा के साथ ही काम करता हूँ बेसिकली, और इससे मुझे जुड़े हुए लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं, जिसमें मैंने भागवत कथाएं या अलग इवेंट, भजन संध्या वगैरह, शादी भी लाइव करी हैं और ऐसे कई कार्यक्रम लाइव करे हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि देखिए, एक तो अब आजकल होता ये भी है कि कोई भी व्यक्ति केवल एक सोशल मीडिया पर उसकी प्रेजेंस नहीं है, वो यूट्यूब भी लगातार रन करता है, चैनल्स भी अब लगभग सभी बनाते हैं, और इंस्टाग्राम पेज भी सबके होते हैं, फेसबुक भी है, और जहाँ कहीं बड़ा इवेंट होता है तो वहाँ ट्विटर और इन सब चीज़ों का भी जिक्र होता है। तो कैसे मैनेज किया जाता है, क्या कुछ प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: जो लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग करते हैं उसमें तो सबसे बड़ी नीड है हमें एक हाई स्पीड इंटरनेट की।
1: जी जी,
2: हाई स्पीड इंटरनेट जहाँ मिलता है वहाँ ये सब आसान हो जाता है, जहाँ सुविधाएं आज नहीं है जिन क्षेत्रों में भी, वहाँ ये चीज आज भी मुश्किल है, लेकिन शहरों में लगभग 5G इंटरनेट है तो वहाँ ये सारी चीजें हो पाती है। यूट्यूब और फेसबुक पे फिलहाल हम लोग अभी कर रहे हैं, आगे हमारी कोशिश है इंस्टाग्राम और ट्विटर की तरफ भी बढ़ने की।
1: जी जी,
2: बराबर इस क्षेत्र में, क्योंकि पहले जो डिफिकल्टीज आती थी उनको समय समय रहते अपडेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, काफी हद तक सुधार है और अच्छा आउटपुट अब हमें मिलने लगा है, और साथ ही साथ इसमें काफी क्षेत्र में प्रसार भी आया है। लोगों को जब से ये समझ आया कि हर हाथ में अब मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से वो जहां भी है, जिस क्षेत्र में भी है, उस क्षेत्र में बैठे उस कार्यक्रम का वो आनंद ले रहा है, उस चीज को समझ रहा है
1: जी,
2: तो बड़ी आसानी हमें इस चीज को करने में हुई है और इसका काफी नेटवर्क अब दिखाई देता है।
1: जी बिल्कुल, और एक चीज इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि लोग एल्बम्स बनवाते हैं और साथ साथ वीडियो भी बनवाते हैं, उसके लिए शायद थोड़ा वेट करना पड़ता है, और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आपको तुरंत वो चीज देखने को मिलती
2: है, जहां बैठा है बस
1: वही वो देख,
2: बहुत छोटा सा वेरिएशन आता है टाइमिंग का, मेरे ख्याल से मेरा अनुमान है 30 सेकंड का, 30 सेकंड बाद वो अपने मोबाइल पे देख रहा होता
1: है। जी जी, और वो भी अच्छी क्वालिटी में,
2: अच्छी क्वालिटी में।
1: जी जी, तो प्रमोद जी ये बताइए कि क्वालिटी की बात हो रही है तो क्या इंटरनेट स्पीड या किस प्रकार के गैजेट हम यूज कर रहे हैं, क्या सॉफ्टवेयर

0: महंगे गैजेट वो होते हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग में भी क्या अच्छे और खराब गैजेट या मीडियोकर गैजेट या बहुत टॉप क्लास गैजेट, इनसे कोई फर्क पड़ता है?
1: जी पड़ता है।
0: जी, तो क्योंकि आपको लैपटॉप की भी जरूरत होती होगी चीज़ों को कंबाइन करने के लिए, फिर
1: जी
0: स्विचर का उपयोग करने के लिए, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को जो थोड़े अनभिज्ञ हैं लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, उनको थोड़ा आसान शब्दों में बताइए कि आखिरकार ये पूरा प्रोसेस होता क्या है?
1: लाइव स्ट्रीमिंग हम कह सकते हैं कि इस चीज को तुरंत प्रसारित होना
0: जी
1: हैंड टू हैंड, कुछ ही सेकंड का ब्रेक होता है, बाकी सब चीज एज इट इज। कोई एक गाना यहाँ से कोई गा रहा है, वो उसको पूरी दुनिया में कह सकते हैं और नहीं कह सकते हैं, कुछ रीजंस में तो होता ही है,
0: जी
1: जहाँ
0: जी
1: वैन है वहाँ अलग बात है, वरना ज्यादातर टेरिटरीज में वो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम
0: जी
1: से
0: जहां जहां तक उनकी रीच है
1: हाँ
0: वहां
1: रीच
0: वहां तक
1: है, वहाँ
0: वो
1: तक वो चीज़ पहुँचती है। और जरूरी नहीं है, इंडिया के बाहर भी लोग उसको देख
0: सुनते
1: पाते
0: हैं।
1: हैं। कई शादियां ऐसी होती हैं जिनके परिवार के लोग बाहर रहते हैं और उनकी अपेक्षा रहती है कि हम शादी में शामिल भले ही ना हो पाए, लेकिन शादी को देखें हम,
0: जी
1: तो वो उस टाइम में वहीं से बैठ करके जिस देश में है वो वहीं से उस चीज को देखते हैं। और रही बात कैमरों की, तो इनमें भी कई तरह की क्वालिटीज के कैमरे आते हैं, उन्हीं से उनका आउटपुट डिपेंड करता है।
0: यानी कि यदि
1: आउटपुट
0: कोई
1: से
0: कोई आदमी या कोई भी यूजर अपने फोन से लाइव
1: जी
0: स्ट्रीमिंग करना चाहे और आप अपने टेक्निकल सेटअप के हेल्प से करेंगे, तो उसकी क्वालिटी में फर्क होगा?
1: फर्क होगा, बिल्कुल
0: जी
1: होगा।
0: जी हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ है आपने लाइव स्ट्रीमिंग की बात की, तो क्या कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी समय के साथ बदल रही है और अब लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी मल्टी कैम से कराते हैं कि एक स्टेज पर हो, एक पब्लिक को दिखाए कैमरा या एक ओवरऑल एक्टिविटी दिखाए, ड्रोन का भी इसमें
1: जी
0: उपयोग
1: जी
0: करते हैं, तो इन चीज़ों में भी क्या कॉस्ट इफेक्टिव होता है या
1: जी
0: इसमें
1: जी
0: भी खर्च बहुत बढ़ जाता है, और कितना संभव है मल्टी कैम सेटअप से कार्य करना, स्ट्रीम करना?
1: मल्टी कैम का ट्रेंड है,
0: जी
1: जहाँ लिमिटेड बजट में आदमी काम चाहता है तो उसको तो सिंगल कैमरे के माध्यम से भी हम लोग कर देते हैं, लेकिन बड़े इवेंट्स को मल्टी कैम से ही होता है,
0: जी
1: क्योंकि दो या तीन कैमरों का प्रयोग या इससे भी ऊपर, तो उनका सारा सेटअप बनाया जाता है और बनाने के बाद उसी से फिर उस कार्यक्रम का टेलीकास्ट किया जाता है। और कोई ड्रोन का यूज चाहता है तो ड्रोन भी यूज होता है,
0: तो
1: और
0: क्या हम
1: ड्रोन
0: ड्रोन को भी, क्योंकि वो तो दूरी ज्यादा हो जाती है, तो
1: जी
0: क्या उसको भी हम लाइव स्ट्रीमिंग से जोड़ सकते हैं?
1: लाइव स्ट्रीम में उसका डेटा लगा दिया जाता है,
0: जी
1: उसका बहुत सारा उसमें उसको मिलता है
0: हो
1: देखने।
0: जाता
1: हाँ
0: है।
1: जी
0: जी, जो युवा इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, आपको उनकी क्या राय होगी, क्या कुछ वो कर सकते हैं, शुरुआत में कितना बजट लगता है और किस तरह से वो चीज़ों को देखें, कितनी तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत है, क्या केवल अनुभव के आधार पर ही इस फील्ड में जुड़ा जा सकता है या कोई ट्रेनिंग भी विशेष करनी पड़ती है?
1: ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं इस तरह के, वो इस तरह की ट्रेनिंग कराते हैं, और हम तो क्योंकि हम पहले से ही इस लाइन में थे तो कैमरों को हमें अलग से नहीं समझना पड़ा,
0: जी
1: और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को तो समझना पड़ा, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे बहुत बड़े सहयोगी रहे हमारे बच्चे।
0: जी
1: हमारे पहले नंबर प्रियांशु और इनसे छोटे लव हैं, कुश हैं, तीन बेटे हैं
0: जी
1: मेरे। ये बच्चे हमसे ज़्यादा समझ रखते हैं और बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बच्चों के अंदर एक सीखने की क्षमता हमसे ज़्यादा होती है।
0: जी
1: हम अपने क्षेत्र में तो पारंगत हो सकते हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी को लेकर के बच्चे ज़्यादा अवेयर रहते हैं,
0: जी
1: बच्चों के अंदर कैप्चरिंग पावर ज़्यादा है,
0: जी
1: तो ये इन लोगों के माध्यम से हमें बड़ी मदद मिली और इन सबको अब बेहतर से कर पा रहे हैं। नए बच्चों के लिए आपने पूछा, तो नए युवाओं के लिए बहुत सारे माध्यम हैं और बहुत स्कोप है इसका, बशर्ते कि सही लाइन में आगे बढ़ें।
0: जी जी बिल्कुल। प्रियांशु, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे अपने अनुभव अभी तक के, क्या कुछ आपने सीखा या और भी अपने साथियों से आपकी बात होती होगी, बताइए।
1: मैंने इस लाइन में बहुत कुछ सीखा है और मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस भी रहा है, मुझे
0: जी
1: आगे बहुत चीज़ें सीखनी भी हैं इससे। और
0: तो प्रियांशु जी, ये बताइए कि क्या आप इसको एक करियर के रूप में देख रहे हैं या केवल अपने फैमिली की हेल्प इस समय हो जाए कि आप, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जानते ही हैं, युवा हैं आप, तो सहायता आपके परिवार के बाकी मेंबर्स की हो जाती है, आपके फादर की हो जाती है, साथी संगियों की हो जाती है, केवल इसलिए कर रहे हैं या आप भी इसमें करियर बनाना चाहते
1: नहीं,
0: हैं?
1: करियर तो बनाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं सीख भी उस लिए रहा हूँ
0: जी,
1: और बाकी तो मेरी पढ़ाई साथ साथ में कर रहा हूँ।
0: तो श्रोताओं हमारे बीच में थे, बरेली से आए और लाइव स्ट्रीमिंग के क्षेत्र में पारंगत प्रमोद जी। प्रियांशु ने अपने अनुभव हमसे साझा किए और बताया क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहता है लाइव स्ट्रीमिंग के संबंध में और क्या कुछ भविष्य में और योजनाएं इसमें हैं, उसके बारे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

अभी आप सुन रहे थे विविधा कार्यक्रम में प्रमोद प्रियांशु से परिचर्चा। विषय था सोशल मीडिया, नए आयाम और स्रोत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। ये समय है कार्यक्रम विवरण का।

आज शाम हमारे केंद्र से आप सुन सकेंगे 7:31 पर सुगम संगीत कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल फरमाइशी पर आधारित गीत गाता चल। रात्रि 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सबरस। रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम नाटक। 10:30 पर कार्यक्रम होगा गीतांजलि। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल सवेरे 6:05 पर। 6:25 पर कल सवेरे आप सुनिएगा गांधी चर्चा। 6:35 पर कार्यक्रम होगा स्वास्थ्य संदेश। 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान की भाग संख्या 305। सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अमृत कलश। 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। 8:45 पर कार्यक्रम होगा 102.9 मॉर्निंग हिट्स। पर आप सुन सकेंगे उर्दू प्रोग्राम। 10:10 पर होगा कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। 10:30 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल सवेरे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा। कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। 4 अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया आज अंतिम दिन है। प्रदेश में अब तक 46,93,783 लोगों ने स्वगणना में हिस्सा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लगभग 2,96,000 लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़, जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में कल से जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि एक अच्छी पहल है।
3: मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन, पठन पाठ की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनकी छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियां श्री राज्यपाल महोदया ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है। और एक समान बच्चे दिखें, अलग अलग देखते उनको लग जाए कि ये इस विद्यालय के भी अच्छी बात हो सके। शिक्षा में इस प्रकार के सुधार कार्यक्रम किए गए हैं वर्तमान काल में, तो मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश अब शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। और ये एक अच्छा वो है कि सबके साथ सामूहिक स्वीकृति के आधार अलग अलग ड्रेस कोड हो तो ये ज्यादा बेहतर।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण स्तर से लेकर जनपदों में खेल के मैदान और स्टेडियम का निर्माण करा रही है। श्री योगी ने कहा कि देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
4: ये युवा ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पांचवें चरण की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आगामी चरण में हर जनपद में निवेश हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित है। बांदा बीते चार दिनों से लगातार देश का सबसे गर्म जनपद बना हुआ है। कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसामान्य को हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और गर्मी से होने वाली अन्य समस्याओं से बचाने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें। सभी जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। फतेहपुर के अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि हीटवेव के मद्देनजर नगर पालिका प्रशासन ने शहर के चौराहों और बाजारों में वाटर स्प्रिंकल लगवाए हैं।
5: हीट वेव को देखते हुए एडवाइजरी जो है सरकार ने जारी की है। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा जो है हमने 22 स्थानों पे अस्थायी हमने प्याऊ लगवाए हैं और इसके अलावा शहर में हमारे 14 वाटर कूलर लगे हुए हैं जिससे शीतल पेयजल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा जो हीट वेव का अलर्ट आ रहा है और मौसम जितना गर्म है इसको देखते हुए हम लोग स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं। जो भी हमारे तिराहे चौराहे हैं या मार्केट की एरिया है उस एरिया में हम स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़काव करा रहे हैं जिससे वातावरण में थोड़ी सी नमी उत्पन्न होती है और लोगों को राहत मिलती है।
0: प्रदेश के 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आज लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। करीब 8000 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में लगभग 366,700 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा को पारदर्शी और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे भी गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची में कानपुर, मेरठ और भुवनेश्वर को भी शामिल किया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अनुसार नए केंद्रों के लिए लगभग 23,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अनुकूल, सुलभ और कुशल बनाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है उनके लिए NTA 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव पृथुल कुमार आज एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर, दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों केंद्रों से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन। प्रदेश के 46,93,000 लोगों ने लिया हिस्सा। कल से शुरू होगी मकानों की गणना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। 4 अन्य सदस्यों को भी मिली नियुक्ति। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड, विद्यार्थियों के बीच समानता को मिलेगा बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश भर में हीट वेव का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
7: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में गजलें। कलाकार हैं जुनेद अख्तर, तबले पर हैं मोहम्मद उस्मान और सिंथेसाइजर पर हैं गुलवेज़।

इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कलाकार थे जुनेद अख्तर, तबले पर थे मोहम्मद उस्मान और सिंथेसाइजर पर थे गुलवेज। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है ईमेल फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल कार्यक्रम सुनने वालों को एक ज़रूरी संदेश। कल से ये कार्यक्रम पहले की तरह व्हाट्सएप आधारित ही रहेगा। आप अपनी फरमाइशें हमें कल से व्हाट्सएप पर ही भेजिएगा। आज हम आपकी फरमाइशें ईमेल के माध्यम से ले रहे हैं। कार्यक्रम गीत गाता चल में हमारे पास पहली फरमाइश आई है। खुर्जा उत्तर प्रदेश से फरमाइश करने वाले हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है। ज़िला अमरोहा, नई बस्ती, पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फ़हीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। और साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है। गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या। और साथ ही साथ इस गीत की हमें फरमाइश लिखकर भेजी है। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, आपा डिंगिया। आनंद वांडे, रमेश वांडे, शुभम, साक्षी, खुशी, समस्त वांडे परिवार, वांडी खामगांव से। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन।

Era Nur. रेशमा नगरी माफ कीजिएगा, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन, शमीम अख्तर अंसारी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, कुमकुम सुरलकर। प्रेम सिंह जौंडा, मंजीत कौर जौंडा, करणवीर करण, दीपिंदर कुलदीप सिंह एमक, दमन और अभिजीत। ये आया है हमारे पास भटिंडा पंजाब से। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, अजीत कसाना, लदावली मुरादाबाद से। तो आइए साथियों, सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज़ में जहर फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल अपने दोस्त रिजवान के साथ। कार्यक्रम में हमारे पास अगली फरमाइश आई है, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दोलापुर, उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है। वार्ड नंबर 1, पोफाली, ज़िला यवतलाम से जयराम, दिशांत कुमार और अर्पित जी, गांव खावरी अव्वल से चौधरी राजीव सिंह और चौधरी अव्याना कंचव, और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है राज पैलेस मऊनाथ भजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकपुर मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू। साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है अमरावती महाराष्ट्र से सैयद भाई, आसिफा परवीन, अल्फिया, मोहम्मद सैफ, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी खान, बिट्टू भैया और हिना कौसर। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार दूदी, पुष्पेंद्र कुमार, नूर महल महसूल सीतमगढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलहत जहां नाज, फरहत जहां, रिफत जहां, नुजहत जहां नाज, शाजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, मोहल्ला मज़ार चांद शामिया रामपुर से मोहम्मद रमज़ान, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली, रायना चांदनी, अनमता, रहीमा, आशू, वर्णिक खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रेया घोषाल और ए आर रहमान की आवाज़ में युवराज फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम गीत गाताचल में हमारे पास अगली फरमाइश आई है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया। और साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान और प्रसिद्ध कॉलोनी से शाहिद भाई, आसिफा परवीन, अल्फिया सदफ। तो आइए साथियों सुनते हैं हंगामा फिल्म से शान और साधना सरगम की आवाज़ में आप सभी की पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल अपने दोस्त रिजवान के साथ। आपको बताता चलूं कि कल से ये कार्यक्रम व्हाट्सएप आधारित ही रहेगा और हमारे पास आज कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंग मूणत, चेतन नहटा और साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुन्ना। ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से जिला मुरादाबाद मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल सीमा, मानवी तानवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शाइना शर्मा, निवान शर्मा। तो आइए साथियों सुनते हैं वो लम्हे फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम में हमारे पास अगली फरमाइश आई है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, कव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, अनारकरी बाजार जगराव से, और साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है विजय मोहिबिया, कविता मोहिबिया, सोनू मोनू, सपना रानू, शिवी सालोनी और पेंटर बाबू। ईमेल आया है हमें शिवपुर कॉलोनी से, शीतल चौक खंडवा से विशाल सिंह, विवेक सिंह, और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी और असद अंसारी। डुमराव से अस्मा अंसारी, आमना परवीन अंसारी, लड्डू अंसारी, और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक डिंगरा, अनुश्री डिंगरा, प्रमिला, देवश्री डिंगरा मेरठ कैंट से, सुरेश डोम, संदीप डोम और आशु डोम। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम, चंदनगर से सुरेश डोम, छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अलकबीर। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी, बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी। ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दूला अंसारी। इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर। तो आइए साथियों सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में उमराव जान फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल अपने दोस्त रिजवान के साथ। कार्यक्रम में हमारे पास अगली फरमाइश आई है वीरम गान से, प्रियंका शर्मा, अजीता शर्मा और करुणा शर्मा, और साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है गौरैया जालंधर से, संदीप जाधव, भरत जाधव और प्रभा जाधव, बुलंदशहर से संगीता कुमार, वाणी कुमार, राधिका कुमारी। दिल्ली से जफर मौज़म शेख, फलक फातमा, बेबी अलिशबा शेख, गंज डोडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, मुंबई सिटी से मोहम्मद सलीम और निगहत परवीन, कपासहेड़ा दिल्ली से फिरोज़ खान, अहमद मेगा, इकबाल मोगा, राजकोट से प्रेमा रानी जाटव, डॉली, सुरेश डोकर, गुजरात से प्रवीण राज सोनी, श्वेता सोनी, चमनपुर मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली, दिल्ली से रेशमा अंसारी,

निशा, शकील अंसारी डुमराव से, आसमा परवीन और वली भाई अंसारी। कुड़ी सेक्टर 5, सूर्य नगर, जोधपुर, राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश। तो आइए साथियों, सुनते हैं तौसीफ अख्तर की आवाज़ में तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गाता चल से रिजवान को दीजिए अनुमति। आपको बताता चलूं कि इस कार्यक्रम में आप कल से फरमाइशें व्हाट्सएप पर ही भेजिएगा।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गाता चल अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने वाले हैं। अब आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत ने 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी, आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
4: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

निशा स्कीम के टेलीलॉन है बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉन के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताह तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुजमार्क कजल्स फेड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य

0: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खातिरखा सप्लाई मौजूद है। मरकज ने इबोला से मुतासिर मुल्कों से आने वाले और वहां से गुजरकर आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। भारत अफ्रीका फोरम समिट मुलतवी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल गर्मी की सख्त सूरत हाल से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शराकतदार के तौर पर देख रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे पर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का दौरा इस बात का मजहर है कि भारत आलमी मंजरनामे पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान 57 अहम माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का वादा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी तौहीन-आमेज बयान के लिए उनकी नुक्ताचीनी की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत और अमरीका फितरी शराकतदार के तौर पर काम कर रहे हैं और कई शोबों में एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी इख्तिरात, इंतहाई दकीक नौयत के दिफा, डिजिटल डाटा मराकज, क्वांटम कंप्यूटिंग और तिब्बी आलात शामिल हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सालाना लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक्तसादी मफादात के सबब मुस्तहकम हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत आलमी कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद फ्रेमवर्क मुहैया करता है और इसमें आला पैमाना, सलाहियत और मार्केट के मौके शामिल हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के सिलसिले में MSME के रोल को उजागर किया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने फील्ड अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक आला सतह की सिक्योरिटी के जायजे से मुतालिक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में आग लगने के कई वाकयात की इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि इसमें समाज दुश्मन अनासर शामिल थे। वजारत ने बताया कि इन वाकयात को इंतहाई संजीदगी से लिया गया है और रेलवे की तहफुजाती फोर्स पूरी सरगर्मी के साथ इसकी छानबीन कर रही है। टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में CCTV कवरेज को वसत देने और सिक्योरिटी कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। हुकूमत ने आज एक बार फिर यकीन दिलाया है कि भारत में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की भरपूर सप्लाई है और रिफाइनरीज मांग पूरा करने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत का इस्तेमाल कर रही है। LPG की पैदावार में इजाफा हुआ है और रिफाइनरीज में रोजाना तकरीबन 46 से 47 हजार टन LPG तैयार की जा रही है। नई दिल्ली में मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बैन वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सप्लाई मुस्तहकम है और सभी पेट्रोल पंपों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: रसोई के मकसद के लिए LPG की सप्लाई मुस्तहकम है और पिछले 3 दिन में 1,34,00,000 घरेलू LPG सिलेंडर फराहम किए गए हैं। सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल ने मुतासिर मुल्कों से आने वाले या वहां से गुजरकर आने वाले मुसाफिरों के लिए इबोला बीमारी के मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक वो मुसाफिर जिन्होंने ज्यादा खतरे वाले मुल्कों, जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान शामिल हैं, इनका सफर किया है और जिन्हें बुखार, सरदर्द, आसाब में जकड़न, बगैर किसी वजह के खून बहने और कह आने और निगलने में परेशानी का सामना है, तो उनसे जोर देकर कहा जाता है कि वो फौरन तिब्बी अमले से रुजू करें। एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने कहा है कि तस्दीक

0: आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लोकगीत। कलाकार हैं ओमकार, उनके साथी हैं मदनलाल, कृष्णपाल, जगदीश और गोकरणलाल।
1: आर चावला जला कान की बारा।

காயம் இருக்கு காவன பதோக்குலாக ராமச்சரியா के भगत रहाय गोलिए लगे की होय जाय आज तदौनी हाला कनकी पंचायत ना हमारी बात अचोत मोहरिय को पाई जामा कुटा पैर बनारस क्यार पगिया बानी दरजवा देखिए चुदबाय पागल बेटा काय आ गजबर की ना लग रहा ना कोई औना इन पाए

अपना बाप नहीं पपिया नहीं पिपियों करके दया सुनाए न पद्मा बोला न लागी पपिया तेरो बुरो हो जाए पपिया मिलन पैदा हो पाई तब ना बोली दई सुनाए पंख उड़ाए हाँ कुकती है कर यहाँ हो चार ताव लगाए जाऊँ आग तादर पद्मा बोला न लागी पपिया

प्यार बुझा जाए यार। ताज ने पपिया बोला लागो गोदन सुन ले खाना लगाए। ये अपनी ये बोली है मैं बोल खाए ना कुछ खाओ ना जाओ उधार। इतनी बात तुम्हें पदमाना है गुस्सा कर दे मैं चाय नहीं है गुले अरे पदमाना है और पपिया पाए दाइए चलाए। गुल्ला ला को पपिया गिरो करो डाकाए तुम हो आए गो हाय पदमा का हो और पपिया का हो लाओ उठाए। अंजू माई चाटाए और पुचकाराए और पीटी पाए हाथ फिराए। आज तो पच्ची है मोर का मिल आए जो तो बताए यही जगाए। दौड़ा पाई बोला मेरा जिया हूँ मदराई जाए। अब कित के पहने या मैं हे रहता हूँ बाबा ये परे तुम्हारे चले आए। कुत्ता जिन पपिया बोला लागो गोदन सुन ले कान लगाए। अपनी ये बोली है मैं बोल जाए जा हम तुम्हारे दे आए बतलाए। एक दिन बोले कर सरता माई मारो गौ मलारे राय। एक दिन बोले कर लंका पाए दर का अंदर जे दे मारवाए। एक दिन बोले हतनापुर।

चंदा गुलाम के आए तुम कहो जेवा देते हाय कई हमारी है जो तुम मान अब हम हाल दे कि हम रिये और रिये तुम हो जाओ सब जान जाल दौर हो लौट कर रहा ले आए महोबे पारा सा बतिया हर रही ये लूट कर रहा ले आए महोबे पारा सा बतिया हाल आया ताजे लला खाना बोला लला

धनुआ धनुआ कल करो धनुआ से कैसुनाय ओ जंदिया ढलाई का लाए आबो इज्जत मावे किरायदार ओ घोड़ा बढ़ाए दो समुआ नाय समुए गोला गहो समियाय दादन चौड़ा बोलन लगाया दादू।

दयाल कर परनिया को भूल आए जाम तुम्हारे दे बतलाए वही कटारिया दिल्ली जय इज्जत माटी हमें मिल जाए जन कटारिया को ले आ बोले जाए धर्म से ले ले रा अड़ गए सैयदा।

पांच के बनवा कौना माराई ना बाजे के बूढ़े पालक कौना माराई पहले ना डाल अपने मन के कर ले दिल के मेट ले अरमान जागत देखिया हा चौड़ा लाए गुस्सा गलिया दे माई जान बाला हलाई लो हा चौड़ा लाए दुई पोरल पाए रहो गुमान कटुआ हा चमकाए बोरी चमकाए।

0: अरे बेटी जोया
1: जी अब्बू जान,
0: जरा इधर आइए बेटी।
1: अभी आई अब्बू।
0: बात सुनिए।
1: जी कहिए
0: बेटी। आप हर वक्त पढ़ती रहती हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी खेला भी करो, दोस्तों में भी जाया करो, मिला करो उनसे। अम्मी भैया भाभी के पास भी बैठा करो।
1: हमें डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई भी मन से करनी पड़ेगी। और रही अम्मी भैया और भाभी की बात, तो आप तो जानते हैं अब्बू कि कोई भी हमसे ठीक से बात नहीं करता है।
0: अरे बेटा वो
1: बस बस एक आप ही हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं। सच कहें तो अम्मी और अब्बू दोनों का प्यार हमें आपने ही तो दिया है अब्बू, वरना इतनी बड़ी हवेली में

0: ऐसी बातें ना करें अबूजान, मैं भी बुला कर लाती हूँ। आदाब आंटी।
1: हाँ
0: जल्दी चलिए, जल्दी चलिए आंटी, अबूजान की तबीयत बहुत खराब हो रही है।
1: क्या?
0: अच्छा अच्छा चलो चलो चलो चलो जल्दी से। अबू आज आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, आप हौसला रखिएगा, मैं बाबर को फोन करती हूँ अभी।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, कैंसर कभी ठीक नहीं होता सुनहरा।
0: कैसी बात कर रही हो आप?
2: बहुत बहुत देर हो चुकी है, ऐसा लगता है जैसे जैसे जैसे बदन में आग की भट्टी जल रही है सुनहरा। तुम मेरी बात गौर से सुनो सुनहरा।
0: बोलो बोलो
2: सुनो।
0: ये
2: देखो, फैजपुर वाली 20 बीघा जमीन का बैनामा मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। ये कागज तुम संभाल कर रख लो। दो लाख रुपए की FD जोया के नाम की है। इसे अच्छा अच्छा डॉक्टर बनाना सुनहरा, अच्छा डॉक्टर बनाना। तुमने बहुत साथ दिया है मेरा सुनहरा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें तुम्हारा असल मुकाम ना दिला सका सुनहरा।
0: आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे शौहर हैं, मेरे सरताज हैं, मेरी जागीर तो आप हैं। आपके बिना यह जागीर मेरे किसी काम की नहीं। बस बस आप सलामत रहे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरी जिंदगी के नाखुदा हैं, जिसने मेरी कश्ती को गुनाहों के मझधार से निकाल कर नेकी और अच्छाई के साहिल तक पहुंचाया है। वरना ये जिंदगी तो कब की मौजे हवादिश में कहीं गुम हो चुकी होती।
2: जज्बा से काम ना लो सुनहरा, हकीकत में जीना सीखो। पैसे के बिना जिंदगी एक आजाब सी लगती है सुनहरा।
0: अरे देखो तो, बोलते क्यों नहीं मेरे खुदा। अबूजान मेरा आखिरी सहारा भी तूने छीन लिया क्या? अबूजान मेरे अबूजान, मुझे तन्हा छोड़कर मत जाइए मेरे अबूजान।
3: क्या हुआ अबूजान को?
0: भाईजान अबूजान अब नहीं रहे, सबको छोड़कर चले गए हैं।
3: चुप हो जाइए सब लोग, अल्लाह की शायद यही मर्जी थी।
4: बेटे अफरोज, तुम्हारे अब्बू जान को गुजरे 15 दिन गुजर गए, पर ये हुस्नारा बेगम हवेली से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कल तुम इनसे बात करना।

0: मैं तो बात करना पसंद नहीं करती हूँ, कहीं इनकी नजर हमारी जायदाद पर तो नहीं।
1: ठीक है अम्मी, मैं कल बात करूंगा। हुस्नारा बेगम।
0: हाँ।
1: अब्बू जान के इंतकाल को 16 दिन हो गए।
0: तो
1: तब से तुम यही हो। तुम्हारे यहाँ रहने से हमारी इज्जत और हवेली की बदनामी हो सकती है। हम चाहते हैं कि अब तुम अपने घर चली जाओ। 10-20 हजार रुपए चाहो तो ले जाओ, वो भी इसलिए कि तुम हमारी सौतेली माँ हो। और फिर कभी हवेली मत आना, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, समझी?
2: अफरोज, तमीज से बात करो, मैं आपकी माँ जैसी हूँ। मैंने सोचा था कि 40 दिन यही रहूंगी, आप अच्छी तरह जानते हो मैं अपनी मर्जी से कभी हवेली नहीं आई, तुम्हारे अब्बू के बुलाने पर ही आती थी, उनका हुक्म मानना मेरा फर्ज था। वो तुम्हारी माँ की तरह मेरे भी शौहर थे, तुम्हारी माँ तो उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखती थी, इसीलिए हवेली आती थी, वरना मेरी भी कोठी है, समझे?
1: तुम्हारी कोठी नहीं, कोठा है कोठा, यही फर्क है। यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं। और रही तमीज की बात, तो अब हमें एक तवायफ तमीज सिखाएगी?
0: बेटे, इसके मुंह मत लगो, 10-20 हजार रुपए इसके मुंह पे मारो, ये चली जाएगी।
2: बेगम, आप 10-20 हजार की बात करती हो? खान साहब से मैंने निकाह किया था, इसलिए खान साहब की जायदाद में मेरा आधा हिस्सा है, ये आधी हवेली भी आप लोगों से खड़े खड़े खाली करा सकती हूँ, समझे?

0: इस तरह मुझे बेइज्जत कर रही हैं? शर्म आनी चाहिए आपको।
1: तो क्या आंटी, आप मेरी माँ हैं, आज तक आपने बताया क्यों नहीं?
0: हाँ बेटी, आज बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी तुझे।
2: ओह, तो तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। 20 बीघा जमीन की खातिर अब्बू जान से निकाह किया था। तुम अपने मकसद में अपनी चालबाजियों से कामयाब हो ही गई। अपने जमीर को बेचकर ये साबित कर ही दिया कि तुम एक तवायफ हो। मालो दौलत ही हर तवायफ का ईमान होता है। यही औकात थी तुम्हारी?
0: खामोश अफरोज मियां, आप हमें हमारी औकात बता रहे हो। आप जैसे रईस ज़ादे सुबह शाम हमारी दहलीज पर नाक रगड़ते और खुशियों की भीख मांगते नजर आते हैं। रही मालो दौलत की बात, तो रोजाना ये दौलत हमारे फर्श पर हमारे पांव के नीचे नजर आती है। आप जमीर की बात करते हो, हम अपना फन बेचते हैं अफरोज मियां, जमीर नहीं। आप जैसे रही जादों का क्या जमीर है? जरा अपनी हवेली के कालीन उठाकर तो देखिए, तब पता चलेगा इनके नीचे गुनाहों की इतनी दलदल है कि आप जैसे लोग इस दलदल में गले तक धंसे हुए नजर आते हो। और रही 20 बीघा जमीन की बात, तो यह लो कागजात, मैं थूकती हूँ इस पर भी। चलो चलो बेटी।
2: जोया नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, वो यहीं रहेगी।
1: अम्मी, मैं आपके पास ही रहूंगी। आज तक आपने मुझे अपने से दूर रखा है, आज मुझे अपने साथ ले चलिए।
0: हाँ बेटी,
1: मैं तरस गई हूँ आपके प्यार के लिए। अब इस हवेली में नहीं रहूंगी, काफी बेइज्जती सहली, अब नहीं।
0: तो चलो चलो बेटी यहाँ से। आओ, आज से यही तुम्हारा घर है बेटी। यहाँ तुम्हारे आराम की हर चीज मौजूद है।
1: पर अम्मी, ये सब माजरा क्या है, मेरी समझ में नहीं आया।
0: आज ये सब तुम्हें बताना बहुत जरूरी समझती हूँ मैं। कहानी बहुत लंबी है, पर मुख्तसर सुनाती हूँ तुम्हें। मैं बेहद गरीब खानदान से थी। मैं किसी लड़के के साथ नहीं, अमीर बनने का ख्वाब लेकर घर से भागी थी। मुझे याद है वो ट्रेन जिसने ना जाने कौन से शहर मुझे छोड़ा था। शायद वो ट्रेन का आखिरी स्टेशन था। दो वक्त की भूखी प्यासी मैं जब स्टेशन से निकल कर शहर की तरफ भागी, मुझे चक्कर आ रहे थे। तभी मैं एक कार से टकरा गई, और जब होश आया तो खुद को शानदार कोठी में पाया। मेरे पास दो लोग बैठे थे, वो मियां बीबी थे। उन्होंने मेरे बारे में जानने की बहुत कोशिश की, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे घर पहुंचाने को भी कहा, पर मैंने कहा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बोले ठीक है, तो तुम यहीं रहो, ये हमारा नौकर है नसीर, किसी चीज की जरूरत हो तो इससे कह देना। वो दोनों बड़े ही नेक इंसान थे। फिर एक दिन बीबी जी ने मुझसे कहा, बेटी इतनी बड़ी जिंदगी तन्हा कैसे गुजारोगी, ये नसीर भी अकेला है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा निकाह इस लड़के से हम करवा दें। मैंने भी हाँ कर दी, मेरा निकाह नसीर से हो गया। 3 महीने बाद नसीर ने मुझसे कहा, चलो चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, तुम्हें देखकर सब लोग बहुत खुश होंगे। मैंने साहब से छुट्टी ले ली है। हम दोनों रात भर ट्रेन में सफर करते रहे। सुबह को नसीर मुझे इस बाजारे हुस्न में दिलावर नाम के गुंडे के हाथ बेचकर कहीं गायब हो गया। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। दिलावर के कोठे पर तुम्हारे अब्बू का आना जाना था। एक रोज उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। उन्होंने दिलावर से कहा, इस लड़की से कुछ न कहना, तुम्हारे अब्बू बड़े रसूख वाले थे, बड़े बड़े अफसरों और नेताओं से उनके ताल्लुकात थे। दिलावर डर गया। एक रोज तुम्हारे अब्बू ने मुझे निकाह की पेशकश की, जिसे मैंने कबूल कर लिया, और आज मैं इस बाजार की मलिका हूँ। दिलावर जैसे गुंडे मेरे पीछे दुम हिलाते घूमते हैं। बेटी, यह तो थी मेरी मुख्तसर कहानी। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या करना है, कहाँ एडमिशन लेना चाहती हो तुम?
1: अम्मी, मुझे डॉक्टर ही बनना है, बीबीआर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है।
0: हाँ, काफी दूर जगह है। खैर।

0: मैं दिलावर को बोल दूंगी, वह सुबह गाड़ी लेकर तैयार रहेगा, मेरे साथ चलना।
1: ठीक है अम्मी।
0: लो बेटी, आ गया तुम्हारा कॉलेज, खूब मेहनत से पढ़ना।
1: जी अम्मी।
0: और हाँ, अपना ख्याल भी रखना।
1: जरूर।
0: किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फोन करना, दिलावर लेकर आ जाएगा। अच्छा अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज अम्मी।
2: हेलो, मेरा नाम रुखसार है।
1: हेलो, मेरा नाम जोया है, आइए बैठिए।
2: कई रोज हो गए तुम्हें कॉलेज आए हुए, मैं देख रही हूँ या तो तुम पढ़ने में मशगूल रहती हो या फिर तन्हा रहती हो, न जाने किन ख्यालों में गुमसुम सी रहती हो।
1: नहीं रुखसार, ऐसी बात नहीं है, आदमी को हमेशा अपने टारगेट को सामने रखकर सोचना चाहिए, तो वो कभी भी अपनी मंजिल से भटक नहीं सकता। बस इसी तरह सोचती हूँ।
2: अच्छा मैं जरा लाइब्रेरी जा रही हूँ, एक बुक लानी है।
1: ओके।
3: हेलो, मेरा नाम वामिक है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप हमेशा तन्हा नजर आती हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है शायद?
1: मैं जोया, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और रही दोस्ती की बात, तो दोस्त तो बहुत ही सोच समझ कर बनाना चाहिए। इस दौरे हाजिर में हर तरफ खुदगर्जी मतलब परस्ती का बाजार गर्म है।
3: वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? माशाल्लाह आप इतनी हसीन हो कि सारी उम्र आपके साथ गुजार सकता हूँ।
1: शुक्रिया। अच्छा चलती हूँ, खुदा हाफिज।
3: अरे आज फिर आप अकेली हैं?
1: अकेली कहाँ हूँ, आप जो आ गए हैं, बैठिए।
3: शुक्रिया, नवाजिश। वैसे जोया, आपके फादर का क्या बिजनेस है?
1: मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है, हम जहानाबाद से हैं।
3: अच्छा।
1: और मेरे फादर एक टैक्सी ड्राइवर हैं।
3: जरा मुझे लाइब्रेरी जाना है। अच्छा फिर मिलते हैं, ठीक है, खुदा हाफिज।
2: अरे जोया देखो तो सही।
1: क्या?
2: ये कार में वामिक ही है ना, लगता है इसने शादी कर ली, तभी तो ये लड़के वामिक को विश कर रहे हैं।
1: हाँ जानती हूँ जोया, तुम्हारे दिल पर चोट लगी है। रुखसार ये अच्छा ही हुआ, झूठे एतवार का टूटना ही अच्छा है, शायद वो ये समझ बैठा कि ये गरीब लोग हैं, मोहब्बत के सिवा क्या दे सकते हैं, ऐसे लोग दौलत के पुजारी होते हैं। रुखसार वो केमिस्ट्री की बुक नहीं मिल रही है, जरा हेल्प करो यार।
4: वो मेरे पास है, आप ले लें, मैं बाद में पढ़ लूंगा।
1: नहीं नहीं आप पढ़िए, मैं कल देख लूंगी, कोई बात नहीं।
4: नहीं ये लीजिए।
1: शुक्रिया।
4: नवाजिश लगता है बहुत लगन है आपको, काफी मेहनत से पढ़ती हैं आप, ऐसे लोग ही मंजिलों की ऊंचाइयों को छूते हैं। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम जोया है, और आप?
4: जी मुझे अरवाज खान कहते हैं।
1: आप भी मेहनत और लगन से पढ़ते हैं?
4: अगर सच पूछो तो आज मैं पढ़ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको देखने आया हूँ। वजह यह है कि कल यहीं आपको देखा था, ना जाने ऐसा क्या लगा जैसे इस वीरान दिल की जमीन पर चाहतों के कितने गुलाब खिल गए हैं। ना जाने कौन सी कशिश है आप में, इसे इजहार मोहब्बत समझें या मेरा पागलपन, फैसला आप पर छोड़ता हूँ।
1: अरबाज साहब ये जिंदगी के फैसले हैं, बहुत ही सोच समझ कर किए जाते हैं। मोहब्बत के पौधे को दिल की जमीन पर बोकर इसमें यकीन की खाद डाली जाती है और खूनी दिल से इसे सींचा जाता है, तब कहीं जाकर ये पौधा परवान चढ़ता है।
4: अरे अरे आप तो इमोशनल हो गई, मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं अहले वफा हूँ, पर वक्त आने पर ये साबित कर दूंगा। बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे फादर का कनाडा में होटल है, मैं यहीं अपने शहर में अपना एक अस्पताल खोलना चाहता हूँ और मुझे आपका सहारा चाहिए।
1: डरती हूँ मेरी हकीकत सुनकर कहीं आपका ये खुमार उतर न जाए, फिर भी आज आपको बता रही हूँ कि मैं बरौरगंज की रहने वाली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक माँ के सिवा। जानते हैं आप मेरी माँ कौन है?
4: कौन है?
1: एक तवायफ है, तवायफ।
4: खामोश, खामोश हो जाइए जोया, अपनी औलाद के लिए कोई माँ तवायफ नहीं होती, वो सिर्फ माँ होती है। माँ, मैं सिर्फ जोया को जानता हूँ और कुछ भी नहीं, मुझे हमेशा आपका इंतजार रहेगा।
5: रुखसार, रुखसार उठो, जल्दी उठो रुखसार, जल्दी उठो रुखसार, आज मैं यतीम हो गई रुखसार।
2: क्या हुआ जोया?
5: मैं अकेली रह गई, आज मेरे सर से मेरी माँ का साया भी उठ गया।
2: क्या क्या
5: मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता।
2: हाँ, हाँ संभालो अपने आप को जोया।
5: अभी अभी फोन आया है,
2: अरे
5: कि अम्मी का इंतकाल हो गया। अभी निकलना है मुझे। दिलावर अंकल, दिलावर अंकल ये क्या हो गया, क्या हुआ था अम्मी को, अब मैं अकेली रह गई, क्या करूं मैं, क्या करूं।
6: तुम्हारी माँ को रात 2 बजे हार्ट अटैक हुआ था।
5: क्या अम्मी?
6: पर तुम फिक्र मत करो
5: अम्मी,
6: मैं हूँ, वैसे भी सबको ये दुनिया छोड़कर जाना है एक दिन।
5: दिलावर अंकल, आज 15 दिन हो गए हैं अम्मी के इंतकाल को, 10वां भी हो गया, मेरी पढ़ाई जरूरी है, मैंने बैग तैयार कर लिया है, आप मुझे सुबह कॉलेज छोड़ाएंगे?
6: कैसा कॉलेज? अब तुम कहीं नहीं जाओगी।
5: क्या?
6: यहीं रहोगी, यहीं।
5: नहीं।
6: जो तुम्हारी माँ क्या करती थी वही सब कुछ तुम्हें भी करना है, समझी?
5: नहीं, कभी नहीं।
6: और वैसे भी उनके मरने के बाद धंधा भी चौपट हो गया है, और फिर तुम्हारी माँ ने मुझसे काफी कर्ज लिया था।
5: क्या?
6: तुम्हारी पढ़ाई के लिए। वो कौन देगा, तुम्हारा बाप?
5: ये आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा आखिरी साल है। और रही बात कर्ज की, तो झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी पढ़ाई के लिए अब्बू जान ने मुझे पैसे दिए थे और वही पैसे खर्च हुए हैं आज तक। आप भले ही मुझे ना पहुँचाए, मुझे सुबह हर हाल में जाना है, मैं खुद ही चली जाऊंगी।
6: मैं भी देखता हूँ तो कैसे जाएगी।
5: क्या
6: शबो?
5: नहीं,
6: इसकी निगरानी रखो, इसका खाना पीना सब बंद कर दो।
5: नहीं, ऐसा
6: और ये कमरे से बाहर ना निकले, फिर भी ये ना माने तो हंटर से इसकी खार उधेड़ देना, समझे?
5: प्लीज।
6: और इसका फोन भी छीन लो।
5: मत करो ऐसा प्लीज।
4: अरे रुखसार।
2: हाँ बोलो।
4: जोया को पूरा 1 महीना हो गया, फोन वगैरह भी नहीं किया, मैंने सोचा तुम्हें शायद कुछ पता हो।
2: अरबाज साहब, लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे तो उसने कभी अपने शहर का नाम तक नहीं बताया।
4: मुझे मालूम है।
2: अच्छा,
4: बरौरगंज, मैं वहीं तलाश करूंगा।
2: हाँ।
4: यही बाजार हुस्न है, जोया को यहीं कहीं होना चाहिए, आज नहीं तो कल सही।
5: अरबाज,
4: अरे ये आवाज़ तो जोया की है, ऊपर कहीं से आई है। अरे जोया, तुम?
5: मैं अभी आई।
4: ये क्या, ये फेंका है जोया ने, क्या लिखा है इस पर्चे में, जरा देख तो नहीं?
5: अरबाज, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी निगरानी की जा रही है, मैं कैद में हूँ, आप इस वक्त यहाँ से चले जाओ और रात को 2 बजे गली के पहले मोड़ पर मिलना, तभी तुम्हारे साथ चलूंगी।
4: 2 बज चुके हैं, जोया अभी तक नहीं आई, शायद यही है। हाँ, भागती हुई आ रही है, यही है जोया।
5: चलो जोया। चलो जल्दी निकलो। हाँ, चलो यहाँ से अरबाज,
4: चलो
5: जल्दी,
4: चलो जल्दी,
5: भागो,
4: जल्दी चलो।
6: ए, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? रुको, रुको वरना गोली मार दूंगा। रुको सोया, मैंने तुझे देख लिया है, रुक जा, रुक जा वरना।
5: अरबाज, ये क्या हो गया अरबाज? आप ठीक तो है?
4: हाँ,
5: ठीक तो है?
4: हाँ मैं ठीक हूँ।
6: तू क्या समझती है, दिलावर के जाल से आजाद हो जाएगी? ये कल का छोकरा दिलावर को बेवकूफ बना देगा। चल उठ, चल,
4: इसके बाल छोड़ दे, चल, इसे जाने दे, चल।
6: भले ही मुझे गोली मार दे मेरे सीने में, इसे जाने दे।
4: अरे मैं कहता हूँ जाने दे दिलावर।
6: अच्छा तो तू आशिक है इसका? तेरा खात्मा तो बहुत जरूरी है बच्चे।
5: अरे क्या आपने दिलावर को गोली मार दी?

0: और नहीं।
1: हाँ, नहीं, मैंने ही अपने रिवॉल्वर से गोली मारी है इसके। मैं जोया पूरी तैयारी से आया था। शायद मेरा पांव बेकार हो चुका है जोया। गोली ने बस जल्दी से मुझे सड़क तक ले चलो।
0: हाँ, मैं भी ले चलती हूँ।
1: वहाँ
0: आप घबराइए मत।
1: वहाँ डॉक्टर मेरा दोस्त कार लिए खड़ा है।
0: चलो
1: जल्दी।
0: चलिए।
1: खून काफी बह चुका है। चलो सोया।
0: चलिए। हर बस अब ठीक है ना?
2: जोया।
0: हाँ।
2: ऐसा करो, इसे जल्दी से गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा दो।
0: मैं अभी लेटाती हूँ।
2: और ठीक है जोया, और तुम फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं हूँ ना। चलो क्लिनिक चलते हैं।
0: चलिए जल्दी चलिए।
2: अरबाज अरबाज अरबाज लगता है बेहोश हो गया है।
0: अरबाज जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए प्लीज।
2: जोया मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, अरबाज की टांग काटनी ही पड़ेगी।
0: क्या?
2: और जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, गोली का असर ऊपर चढ़ रहा है, खतरा हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, खुदा के वास्ते इनकी जान बचा लीजिए प्लीज।
2: ठीक है, तुम फिक्र मत करो जोया, अरबाज मेरा भी दोस्त है।
0: अरबाज।
1: जोया।
0: अरबाज।
1: देखो ये मेरी कटी हुई टांग आपको हमेशा मेरे अहले वफा होने का एहसास दिलाती रहेगी।
0: नहीं अरबाज, नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आगे आगे कुछ मत कहिए। मैं तमाम उम्र आपके साथ गुजार दूंगी एक साई की तरह।
1: जोया
0: चलो, मैं आपका ख्वाब पूरा करूंगी, हम साथ रहकर अपना अस्पताल खोलेंगे।
1: जोया
0: अरबाज।
1: जोया
0: अरबाज।
3: अभी आप सुन रहे थे नाटक अहले वफा, लिखन था अंजुम रशीद का, प्रस्तुति थी असीम सक्सेना की।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि। गीतांजलि कार्यक्रम में रिजवान का प्यार भरा नमस्कार।

गीतांजलि कार्यक्रम में हमारे पास पहली फरमाइश आई है। दौलत बाग मुरादाबाद से फरमाइश करने वाले हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुन निशा बेगम, अकरम सैफी, आबाद खान। ज़िला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुदरी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, अनिल पोहरकर, महेंद्र पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर, सुजाता पोहरकर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। फटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। तो आइए साथियों सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ताल फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

हमारे पास अगली फरमाइश आई है, पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिहारा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन बहारुन्निसा असलम हुसैन एडवोकेट, डॉक्टर महमूद हसन बीबीपुर से मकसूद हुसैन नाजिम अली, जातुका किशनपुर से आलम दिलका शबाना नाज रिजवान राही इमरान राजा आलम शेख शबाना आलम चांदी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर मोहम्मद वकील राही फिरोज़ आलम नाज परवीन। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा और निवान शर्मा। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां अली का डबवाली से बसंत सिंह चंद राजकुमार सुनीता कुलदीप गांधी सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम आयशा खान हादिया खान आसमा सालिया शुएब खान साइमा खान पोतरा मुश्तबा खान आफिया खान रऊफ भाई शाहिद भाई गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोज़ी परवीन बिट्टू भैया साजदा रानी हिना कौसर और इन सभी ने इस गीत को सुनना चाहा है। तो आइए साथियों सुनते हैं केके की आवाज़ में रकीब फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम में हमारे पास अगली फरमाइश आई है लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे ललिता नारायण खर्चे गणेश कार्तिक खर्चे संजना परी खर्चे मालती स्वाति प्रयाग चौधरी पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी आलम अंसारी सैयद मुख्तार अंसारी असद अंसारी मेन रोड तिल्हारा से

काश पहर कर, नर्मदा पहर कर, कुमारी सुजाता पहर कर। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमन, वैष्णवी डोमन, चंचल डोमन, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवसारे। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहड़कर, राही श्रीमती सरिता गौहड़कर, प्रिंस एकांश गौहड़कर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गौहड़कर, प्रणीता गौहड़कर, अर्जुन गौहड़कर। आकारा हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गौहड़कर, सुमित गौहड़कर, कुमारी धोनी गौहड़कर परी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी। मीरासराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका गजभैये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभैये। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु। तो आइए साथियों सुनते हैं तुलसी कुमार और केके की आवाज़ में रेडी फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

हमारे पास अगले गीत की फरमाइश आई है, राजद्वारा रोड मीठे कुए रामपुर से, आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित रस्तोगी, अभय, रिया और आरुष। जसपुर उत्तराखंड से रियाज सत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, समरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर। इंदिरा विहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां। राजनंदा गांव से याकूब आसमा, यूसुफ, इमरान, इरफान। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और अदीबा। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूणत। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। जिला मुरादाबाद संभल रोड से अतर सिंह सैनी, मुन्नी, पवित्रा, अजय सैनी, आंचल, विक्की, छवि, आकांक्षा, आकाश, आयुष, आयुषी सैनी, दक्ष, रुद्र, हीरावती देवी सैनी। तो आइए साथियों सुनते हैं उदित नारायण और हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज़ में स्वदेश फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।